मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 18, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: संसार में एहन के अछि जकरा ऐहिक सुखक कामना नहीं हो। संसारक समस्त क्रिया व्यापार सुखे के लेल संचालित होइ छ। मानवीय संबंधों यह उत्सथिक आ स्वजन परिजनादिक जे शब्दावली अछि तकरो सुखे के लालसा परिभाषित करै छ। मुदा मनुष्यक उत्कर्ष त तखन सिद्ध होइ छ जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दै छ। अनका सुखी देखबाक हेतु अपन समस्त मनोरथक बलि दऽ दै छ। प्राचीन भारत में भेला राजा शर्याति, हुनक कन्याक नाव छलनि सुकन्या, यथा नाम तथा गुण। सुकन्या अतुलित रूप वैभव आ गुण सँ संपन्न छलीह। राजा शर्याति हुनका योग्य वरक अन्वेषण में दिन राति एक केने छलाह। तखनहि च्यवन ऋषिक दृष्टि सुकन्या पर पड़ल। ओ सुकन्या पर अनुरक्त भऽ गेलाह। राजा शर्यातिक समक्ष सुकन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव राखलनि। राजा शर्याति गाछ पर सँ खसलाह। कहाँ सुंदरता में अप्सरों के लज्जित के निहारी, गुणक खैनी, ऐश्वर्य में पालिता कोमलांगी सुकन्या, आ कहाँ रुक्ष जटा सँ युक्त क्षीणकाय कुरूप आ दरिद्र च्यवन। शर्याति प्रस्ताव के स्वीकार नहीं कर सकला। ऋषि क्रुद्ध भ गेला। शर्यातिक राज्य में अशांति उत्पन्न कऽ देलनि। अनावृष्टि, भूचाल आ महामारी सँ प्रजा त्राहि त्राहि कऽ उठल। शर्यातिक आगा दुइयेटा विकल्प छल, ऋषिकें सुकन्या दान कऽ देब वा अपना प्रजाकें अपने सोझा में मरित देखब। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ भऽ गेलाह। मुदा सुकन्या च्यवन के वरण करबाक निश्चय कयलनि। व्यक्तिगत दुख सँ प्रजाक दुख नमहर छल। प्रजाक सुख शांतिक लेल ओ स्त्री सुलभ समस्त आकांक्षाक बलि दऽ देलनि। ऋषिकें अंगीकार कय सुकन्या प्रजाकें आसन्न सर्वनाश सँ बचा लेलनि। व्यक्तिगत सुखक बलि दऽ कऽ सर्वे भवन्तु सुखिनः के सार्थक कयलनि।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है मिहिर कुमार झा की वार्ता, फूलों की संरक्षित खेती।
2: सुखी देखो किसान भाई नमस्कार। आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा। किसान भाई लोकनि आजुक कृषि चर्चा में अपना सब गप करब फूलक संरक्षित खेती पर। किसान भाई लोकनि अपना सब जनै छी जे फूल प्रकृतक सबसे सुंदर रचना अछि, जे अपन रंग जे अपन बिरंग फूल आ ओहि फूलक रंग बिरंगा मनमोहक सुगंध के भगवान के बड़ प्रियगर लगै छै। संगे संग फूलक सुगंध जे प्रकृति प्रदत्त छै ओकर प्राय सब

0: मानव के चित्त के मोह ले छे, ओकर सुगंध मानव के मन के प्रफुल्लित क आनंद क देत अछि। एहन जे प्राकृतिक अनमोल उपहार जे फूलक रूप में अपना सब के राष्ट्रीय फूल जकरा अपना सब कहे छे कमल के, इस तरहक अनेको फूल प्रकृति देलक है। किसान भाई ओ सचमुच प्रकृति के उपहार प्रणम अछि। किसान भाई लोकन एतबे नहीं, फूलक सुंदरता, ओकर कोमलता, रमणीयता साहित्य के लेल एगोट अवर्णीय तथ्य सेहो कहि सकैत छी। देखू न, किनको सुंदरता का बखान करब तो हठात मुँह से निकलि जाय छे जे ई फूले जका सुंदर अछि। ओते कोमलता का गप उठत तो कहल जाय छे जे कोमल त ई फूल जका लगै छै। जँ रमणीयता का चर्च होयत तो हठात मुँह से निकलि जाय छे जे वाह, ई बगीचा कतेक रमणीय छै। किसान भाई लोकनि, फूलक भावना के प्रतीक साहित्य सेहो छै। जना गुलाब प्रेमक प्रतीक मानल जाय छै, तऽ औरो फूल सबके दोस्ती के सम्मानक संदेश कही तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं। अपना सब एहिठाम किसान भाई लोकनि ई देखल जाय छै जे कोनो धार्मिक पूजा पाठ हो वा उत्सव वा घर के वा कार्यालय के उत्सव के अवसर पर ओकर शोभा बढ़बै के लिए फूल से ओकरा सजायल जाय छै। ओकरा जना अखन सौन चलि रहल अछि ओहिमे महादेव के मंदिर सबके कतेक रंग बिरंगक फूल से सजायल जाइत अछि। एहि तरह किसान भाई लोकनि, फूल का खगता अपना सब एहिठाम बारहो मास रहैत छै। एकर बाजार मांग सब दिन रहैत छै। अवसर विशेष पर तऽ फूलक मांग एतेक बढ़ि जाइत अछि जे देखू न, जे किसान भाई लोकनि अखन तऽ सौन मास जे चलि रहल अछि ओहिमे फूल कतेक महग भेटैत अछि। सोमवारिक दिन तऽ फूलक आओर खगता ततेक बढ़ि जाइत अछि जे फूल भेटैत नहि रहैत अछि। एहि तरह किसान भाई लोकनि अपना सबके चिक्कन आमदनी के लेल फूलक संरक्षित खेती कऽ अपना सब नीक आमदनी कऽ सकैत छी। किसान भाई लोकनि, फूलक संरक्षित एक गोट आधुनिक खेती के रूप में वैज्ञानिक तकनीक के माध्यमे एकरा पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर तापमान, नमी आ रोशनी के नियंत्रित कऽ नीक गुणवत्ता वाला फूल उगा सकैत छी। नीक गुणवत्ता वाला फूल में जना जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन और गुलदाउदी, गेंदा, ऐ सब तरह मुख फूल के फसल अपना सब उगा सकैत छी आधुनिक खेती कऽ कऽ। ई सब मौसम में सब दिन एकर उत्पादन होइत रहै छै। ऐ सब तरह फूल के जो नीक उत्पादन हो तो जाहिर छे किसान भाई लोकन जे नीक आमदनी हो। किसान भाई लोकन अपना सब जे परंपरागत फूलक खेती करे छलौ ओहि अनुरूप आप जो फूलक संरक्षित खेती करे छी एकर मुख्य लाभ जे नीक आमदनी होइ छे। ऐ तरह आमदनी जो नीक होयत तो एकर ऐ पर कनी आधुनिक खेती पर ध्यान देव पड़त। जना मौसम से सुरक्षा, फूलक गाछ के जतेक धूप, आंधी, पाला, मूसलाधार बरखा सनक प्रकृति से संरक्षित करैत अछि एहि तरहक खेती। बेमौसम पैदावार, किसान भाई लोकनि जखन खुला खेत में फूलक पैदावार नहीं होइत रहत तो पॉली हाउस के अंदर तापमान नियंत्रित कऽ नीक आ उच्च गुणवत्ता वाला फूल उगा सकैत छी। अधिक मुनाफा जे छै एक तरहक पॉली हाउस में भऽ सकैत छै। देखियौ किसान भाई लोकनि, नीक गुणवत्ता आ उच्च कट फ्लावर के आपूर्ति के कारण बाजार में ऐ सब फूलक दाम बेसी रहित छै। जाय से किसान भाई लोकनि एक ऐ तरह फूल के दाम बेसी रहला से बेसी कंचा अपना सब के प्राप्त होइत अछि तऽ नीक आमदनी सेहो होइत अछि। आ देखियौ किसान भाई लोकनि, कीट नियंत्रण जे छै सेहो ऐ फूल पर कम कीट मकोड़ा के बेसी प्रकोप नहि होइ छै। तऽ किसान भाई लोकनि परंपरागत तौर तरीका से जे फूलक खेती कयल जाइत छल ओहि में कीटक प्रकोप बेसी होइ छल, परंतु फूलक संरक्षित खेती में कीट आ बीमारी के खतरा नहि के बराबर होइ छै। किएक तऽ संरचना में जे छै से जाल के आवरण लागल रहै छै जैसे कीट सभक प्रकोप कम होइ छै। किसान भाई लोकनि, फूल संरक्षित खेती के लेल आवश्यक सावधानी राखऽ पड़ैत छै। फूलक संरक्षित खेती के लिए स्थानक चुनाव बेसी महत्व छै। जना पाली हाउस सदिखन उच्चगर आ ढलान वाला जगह पर बनेबाक चाही। सिंचाई प्रबंधन में ट्रिप सिंचाई के उपयोग करक चाही। जखन फूलक गाछ में फूलक कली आबे के समय हो तो नीक जका ओहिमे नमी बनल रहे एले ट्रिप सिंचाई करब परम आवश्यक छै। मृदा परीक्षण, फूलक संरक्षित खेती के लेल माटिक जांच आवश्यक छै। किएक तऽ माटिक जांच जे छै ओकर मान जे छै पीएच 6.0 से 6.5 के बीच रहक चाही। अखन एतबे, आब आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: 810 किलोहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल IDs जारी किया है। इसके

0: माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के श्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर मनीष कुमार धीरज की भेंटवार्ता, दुर्घटना में घायल होने पर क्या करें। भेंट करता है संजय कुमार।

0: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे दुर्घटना के बाद जख्मी होने की हालत में क्या किया जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। कहते हैं कि दुर्घटनाएं कह कर नहीं आती है, थोड़ी सी भी अगर असावधानी हुई तो दुर्घटना का शिकार हम हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों की गलतियों की वजह से भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बड़ा ही अहम समय होता है जिस समय दुर्घटना हो जाती है, उस समय से लेकर और हॉस्पिटल तक पहुँचने तक का जो समय है, ये क्या करें दुर्घटना होने के बाद?
1: सर्वप्रथम दुर्घटना होने के बाद यदि आप अकेले हैं, आजकल मोबाइल फोन सबके पास रहता है, अपने निकटतम संबंधियों को सूचित करें, मदद के लिए गुहार लगाएं और पुलिस को फोन कर सकते हैं तो अवश्य फोन करें ताकि आप तक मदद पहुंच सके और आप यथाशीघ्र हॉस्पिटल पहुंचने का यथासंभव प्रयास करें।
0: कई तरह की चोटें होती हैं, शरीर पर चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड पर चोट हो सकती है, लेकिन सबसे जो गंभीर और सांघातक है वो है मस्तिष्क पर लगने वाली चोट। अगर इस तरह की चोट आ जाए तो क्या करना चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान परिस्थिति में जब टू व्हीलर पर हेलमेट पहन करके बैठने की स्थिति देखने में नहीं आती है, मस्तिष्क में यदि चोट है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको चोट लगने के बाद बेहोशी आई हो, यदि चोट लगने की बाद तुरंत बाद की घटनाओं का स्मरण नहीं रहा हो, यदि आपको बार बार उल्टी आ रही हो अथवा नाक या कान से खून बहा हो, मिर्गी का दौरा आ गया हो, तो उस स्थिति में सीटी स्कैन मस्तिष्क का कराना अनिवार्य है और सीटी स्कैन में जो भी निकलता है उसके अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए।
0: कई बार जब मस्तिष्क की बात होती है और डॉक्टर जब सुझाव देते हैं कि भाई तत्काल ऑपरेशन किया जाना जरूरी है तो लोग घबरा जाते हैं, और आज भी ये मान्यता है कि मस्तिष्क बड़ा ही जटिल तंत्र है और उसमें ऑपरेशन पता नहीं।
1: नहीं, आज की चिकित्सा जगत में, आज की चिकित्सा शास्त्र में यह अवधारणा बहुत ही गलत है और हम लोगों ने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि मस्तिष्क पर यदि समय रहते हम यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है, आम तौर पर यदि ब्रेन में हेमरेज है और उसके थक्के की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक है या मस्तिष्क में जो खिसकाव है अपनी जगह से 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो मरीज किसी भी स्थिति में हो, होश में हो या बेहोश हो या सिर्फ सिर में दर्द की ही शिकायत कर रहा हो, उसे ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति काफ़ी तेज़ी से बिगड़ सकती है। और ऐसे में ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ऑपरेशन यथाशीघ्र करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है।
0: कई बार दुर्घटना घटने के बाद रीढ़ की हड्डी में या फिर गर्दन में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, कई बार गर्दन की हड्डी टूट तक जाती है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः जो मरीज होगा वो बेहोश होगा। आम जन जो आसपास इकट्ठा होते हैं उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि उसे कैसे हैंडल करना है।
1: सबसे पहले ट्रॉमा विक्टिम को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इस तरह से हैंडल करना चाहिए कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, यह मान के चलना चाहिए। और गर्दन और कंधा और कमर ये एक सीध में रखने का प्रयास करना चाहिए। हम

0: चीज को चाहे कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस में उठा रहे हैं अथवा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, सिर, गर्दन, कंधे और कमर ये सब एक साथ एक सीध में होने चाहिए, यह अनिवार्य है। तब तक जब तक यह प्रूव नहीं हो जाए कि मरीज को रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है।
1: जैसा कि आपने कहा, नाक और कान से कई बार खून निकलने लगता है, उस कंडीशन में कभी कभी मुंह से भी खून आता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए?
0: उस कंडीशन में सबसे पहले तो मरीज को करवट कर देना चाहिए, और गर्दन और कंधा सीध में रहे तो एक तकिया उसके सिर के नीचे रख देना चाहिए ताकि वो जो खून है वो बाहर गिरे, वो सांस की नली में कहीं ना चला जाए, और यथाशीघ्र हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में कई बार हम लोग नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक दो बूंद नाक में डालने से रक्त स्नाव बंद हो जाता है।
1: जी, दुर्घटना के बाद जख्मी होने की हालत में क्या किया जा सकता है, इस विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार धीराज, आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए पहले सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश वंदना।

संवेद स्वर में अभी आप देश वंदना सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति वंदना।

अभियाप संवेद स्वर में ये गणपति वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति वंदना।

अभी आप हरिहरन के स्वर में ये वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

अभी आप अनुपमा देशपांडे के स्वर में यह भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति वंदना।

हरिहरन के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी मालिनी नाम बियार। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर। सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवाड़ी। दिन के 11 बजे हेलो जिंदगी का प्रसारण होगा। सखी बहिन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12 बजे। दिन के 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मैथिली नाटक नवीना। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। और दोपहर 1:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। रोजगार समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनवाएंगे रोजगार समाचार। दोपहर 2:30 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। विद्यापति गीत आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे। संध्या 5 बजे गैर फिल्मी गजल या गीत आप सुनेंगे। फिल्मी गजल और गीत आप सुनेंगे संध्या 5:40 पर। विद्यापति गीत का प्रसारण होगा संध्या 6:10 पर। संध्या 6:30 पर हम आपको सुनाएंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर। संध्या 7 बजे किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:50 पर। खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली केंद्र से रिले रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवा न सिर्फ सशक्त बने बल्कि अपने दायित्वों के प्रति भी कृतज्ञ संकल्प हो। विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे अमरेंद्र कुमार अमर, जिला युवा अधिकारी माय भारत दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर होगा 0627222481। दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें, आज ही रविवार 9 अगस्त दिन के 11 बजे।

0: राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिद जान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का

0: ना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनीवेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोतागण के आशुतोष कुमार झा दिस से स्वागत आ नमस्कार। संगही संगीता जी अहू के रवि दिन के नमस्कार।
1: आशुतोष जी स्नेह भरा नमस्कार आपको और सभी सुधी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार आज के इस सुंदर सी प्रातःकालीन वेला के।
0: रवि दिन का एहि दुआरे कहलौं जे अहां सब घर के संग संग बाहर के संपूर्ण काज देखै छी मुदा आय कनी फुर्सत त है
1: कि कुछ तो आज जरूर होगा कि हमारे श्रोता इस वक्त हमारी इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं।
0: पहले किया ने अहां सुविचार के संग कार्यक्रम का शुरुआत करी तकर बाद
1: तो हम पहले आज का ये सुविचार ले लेते हैं। आशुतोष जी शांतिपूर्ण तरीकों और सत्य के आग्रह से किसी भी दमनकारी सत्ता को झुकाया जा सकता है और यह सुविचार है महात्मा गांधी का।
0: बहुत नीक अहाँ ये गप कहलौं और गांधी जी के विचार एखुनको समय में ओतबे प्रासंगिक है।
1: और आज यह विचार मैंने जानकर शामिल किया क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, ऐतिहासिक है और हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इतिहास को।
0: निश्चित रूप से उन्हीं जहन गांधी जी के अपना सब गप करे छी और जे अपना सब सुविचार लेलों ओहिमे बड नीक एकटा गूढ़ रहस्य अछि जे सत्य अहिंसा आ शांतिपूर्ण संघर्ष में ओ शक्ति अछि जे पैघ से पैघ अन्याय के सामने जे छे से इंसान के मनुख के मजबूती से ठाड़ हेबाक साहस देत अछि।
1: ताहि दुआरे अपना ही बड़ा कहितो छी
0: जे सतक जीत जे छे से देरी से भ सके छे मुदा जीत है,
1: जीत सुनिश्चित है। और यह इतना ही बड़ा सत्य है कि जिससे ब्रिटिश सत्ता झुक गई तो आज का ये दिन बहुत खास है,
0: बहुत खास।
1: 1942 में 8 अगस्त की आधी रात को यानी 12 बजे भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक स्लोगन जिसे महात्मा गांधी के प्रसिद्ध कथन के नाम से जाना जाता है,
0: ठीक है कह लो,
1: करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो
0: छोड़ो।
1: और यही वजह है कि 9 अगस्त आज ही के दिन से संपूर्ण भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया,
0: ठीक है कह लो।
1: 1925 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी में रोककर सरकारी खजाना लूटा था जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता
0: ठीक
1: है
0: कॉलो।
1: और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर नागासाकी शहर पर फैटमैन नाम का परमाणु बम भी गिराया जिससे भारी तबाही हुई।
0: बहुत बड़ी।
1: आज के दिन को विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं आदिवासी दिवस। तो आज

0: का दिन बहुत खास है,
1: बहुत
0: ऐतिहासिक
1: खास अछि और सांस्कृतिक रूप से, मानवीय रूप से, संवेदनात्मक रूप से देखियो तो बहुत खास छे। और अपना सब पहले हो चर्चा करे छे जे इतिहास अपना सब को ओ सीख देत अछि जे कुनू एहन गलती अपना सब फेर नहीं दोहराबी जे अपना सब को ओहन विभीषिका देखो पड़ा।
0: यानी सकारात्मक विचार को, सकारात्मक पहलुओं को अवश्य दोहराएं, परंतु नकारात्मक पहलुओं को पुनः न दोहराएं, ताकि जो इतिहास कहीं से भी कलंकित हुआ, हम उस कलंकित इतिहास की पुनरावृत्ति
1: कखनो नहीं दोहराबी। और संग ही अपन समाजक जे विविधता है ओकरा स्वीकार करी और ओहिए में निखार छे न। अपना सब गीत नाद का माध्यम से जे मिथिला का जे सांस्कृतिक एकटा धरोहर रहल अछि गीत नाद।
0: और आज अभी तो सावन चल रहा है,
1: सावन।
0: तो सावन तो बाबा की महिमा से
1: ठीक है कहलो
0: जाना जाता है, तो हम लेते हैं मैथिली सुगम संगीत का आनंद। और हमारे श्रोताओं को भी इस वक्त इंतजार है मैथिली सुगम संगीत का,
1: तो सुनल जाए।

0: शिव हो उतरव पार कौन बेरी
1: कौन बेरी।
0: ठीक है, शारदा सिन्हा की आवाज में प्रस्तुत इतनी सुंदर प्रस्तुति हम लोग अभी कार्यक्रम में शामिल किया आशुतोष जी, कि हमारे जितने भी शिव भक्त होंगे और जितने भी श्रोता होंगे मंत्रमुग्ध हो गए होंगे।
1: बोदायटा बात हम कहो सुनकर जे कोन विधि उतरब एकर उपाय अपना सबके समक्ष जे भगवान छथि जे ऊपर वाला छथि वो बहुत विधि से पहले राख चुकल छथि न।
0: और अपना
1: कर्म तो अपना सबके संगे आए छी, मुदा जे अपना सबके मस्तिष्क भेटल हँ, जे अपना सबके जीह भेटल हँ, मुँह भेटल हँ, आँखि भेटल हँ, कम से कम नीक बोली निकाली, नीक सोची और नीक काज करी।
0: तो आशुतोष जी, इस वक्त जो हमारे कार्यक्रम में अच्छी चीजें हैं कार्यक्रम के लिए वो है हालचाल, तो हम शामिल करते हैं आशुतोष जी से हालचाल।
2: सामाजिक आ सांस्कृतिक गतिविधि का हलचल हालचालक संग हम छी आशुतोष कुमार झा। श्रोतागण, पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री बजला पुनौरा धाम बनत आस्था का पैघ केंद्र। 2028 तक बनत भव्य जानकी मंदिर, पुनौरा धाम के भेटत नव पहचान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है जे 31 दिसंबर 2028 तक मंदिर के निर्माण पूर्ण क माँ जानकी के भव्य मंदिर में स्थापित क दिल जाय। पुनौरा धाम माँ जानकी के जन्मभूमि हेबाक कारणे बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। ई पवित्र धाम का समग्र विकास आ राज्य सरकार का प्राथमिकता है। पुनौरा धाम का विकास से श्रद्धालु का नीक सुविधा उपलब्ध हेतन, एकरा संग ही धार्मिक आ आध्यात्मिक पर्यटन का नव गति सेहो भेटत। डिस्प्ले पर देखात ब्लड बैंक में खूनक उपलब्धता। श्रोतागण, बिहार में लगभग 47 सरकारी और करीब 75 निजी ब्लड बैंक है। एही ब्लड बैंक में खूनक उपलब्धता के जानकारी डिस्प्ले से मरीज के परिजन के भेटतन। स्वास्थ्य विभाग के

0: समीक्षा बैसार के बाद आम लोकसभा के परेशानी से मुक्ति दिएवाक लेल ई निर्णय लेल गेल हँ। वर्तमान में ब्लड बैंक में खून के मौजूदगी के जानकारी आम लोग के नहीं भेट पावत है। हुनका सेंटर पर जाकर ई पूछ पड़ित है जे संबंधित ब्लड बैंक में है या नहीं। ऐ दौरान कई एक बेर ब्लड बैंक में हंगामा के स्थिति से हो बन जात है। डिस्प्ले के बाद हंगामा के स्थिति पर अंकुश लाग पाओत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 6 शिक्षक का नाम। श्रोतागण, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से 6 उत्कृष्ट शिक्षकगण और प्रधानाध्यापकगण का नाम राज्य स्तर से अनुशंसित कैल गेल हँ। राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के बाद आब यही शिक्षक सबका नजर राष्ट्रीय स्तर का अंतिम चयन पर है। चयनित शिक्षक सबका केंद्र सरकार का राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण देव पड़त। अमे ओ शिक्षा के क्षेत्र में कैल गेल अपन नवाचार उपलब्धि सब और विद्यालय में कैल गेल उल्लेखनीय का सबका जानकारी देता। किसान सबका उपज के बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराओ जात ई कहना छन सचिव का। श्रोतागण, सहकारिता विभाग का सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह कहलन जे किसान का PVCS जुड़वाक लेल पूरा स्वतंत्रता है। हरेक किसान एही भरोसा के संग अपन तरकारी बाजार में लौका आबत जे हुनकर उपजा के बिक्री सुनिश्चित है। पटना के DNS क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में शनि दिन आयोजित बेजफेट के समीक्षा में सचिव कहलन जे किसान का हुनकर उपज के लिए नीक बाजार उपलब्ध कराने विभाग के प्राथमिकता में है। सचिव अधिकारी सभा के समस्या सेहो सुनलन। कैरियर प्लानिंग के लौक भेल विशेष सत्र के सफल आयोजन। काल विश्वविद्यालय वाणिज्य और प्रशासन विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का ऐतिहासिक सभागार में AI के एही विशेष दौर में कैरियर प्लानिंग में जॉब आ प्रोफेशन के लेल उचित विकल्प का चयन और पहुँच के लेल गुणात्मक साधन आ तकनीक के बारे में मुख्य वक्ता और अभिप्रेरक डॉक्टर राखी कुमारी झा के द्वारा अपन वक्तव्य MBS और MCOM के विद्यार्थी के बीच साझा कैल गेल, जखन कि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आशीष कुमार झा के द्वारा दिल गेल। श्रोतागण, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोषांग तत्वाधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन विषय पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। श्रोतागण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के सौजन्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग तत्वाधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन विषय पर 8-14 अगस्त 2026 के बीच 7 दिवसीय आवासीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी उद्घाटन कलन। श्रोतागण, आकाशवाणी दरभंगा से अखन अपना सब सुन रहल छी ई हाल चाल।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: दरभंगा ग्रामीण बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 207 और 223 का निरीक्षण कयल गेल। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर संचालित विभिन्न गतिविधि और सेवा के विस्तृत समीक्षा कयल गेल। विशेष रूप से पोषण ट्रैकर पर लाभुक सभक प्रविष्टि और उपस्थिति, केंद्र का नियमित और गुणवत्तापूर्ण संचालन, पूरक पोषाहार का गुणवत्ता और वितरण, केंद्र परिसर का साफ सफाई, संग ही आंगनवाड़ी सेविका द्वारा केंद्र का संचालन के स्थिति का जायजा सेहो लेल गेल। बहादुरपुर बुनियादी केंद्र में 18 दिव्यांग जन के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में कल बहादुरपुर स्थित बुनियाद केंद्र में 18 दिव्यांग जन के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कयल गेल। एहि अवसर पर सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण दरभंगा आशीष अमन और बहादुरपुर का प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बहादुरपुर प्रखंड का 18 पात्र और जरूरतमंद दिव्यांगजन के मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान कयल गेलैन। 15 अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लेल छात्र छात्रा का ऑडिशन आयोजित। 15 अगस्त 2026 के अवसर पर आयोजित हुआवला सांस्कृतिक कार्यक्रम के तैयारी के क्रम में कल प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी लहरियासराय दरभंगा में विभिन्न विद्यालय सभा के प्रशिक्षण केंद्र से आओल छात्र छात्रा सभा का ऑडिशन आयोजित कयल गेल। ऑडिशन के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन, जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी सह प्रभारी जिला खेल पदाधिकारी चंदन कुमार, संग ही जिला शिक्षा विभाग का संभाग प्रभारी सुनील कुमार उपस्थित रहते। श्रोतागण, ICDS के योजना का प्रगति का DM का अध्यक्षता में भेल समीक्षा। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार का अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में समेकित बाल विकास सेवा का अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना सब और कार्यक्रम का प्रगति के समीक्षात्मक बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में जिलाधिकारी सबसे पहले आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत बल के संबंध में जानकारी ललैन। तो श्रोतागण, एखन अपना सब सुन रहल छलौं आकाशवाणी दरभंगा से ई हाल चाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब मौसम की जानकारी भी शामिल कर लेते हैं आशुतोष जी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विभाग के अनुसार 5 से 9 अगस्त 2026 के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिले में 5 से 7 अगस्त के दौरान मेघा गर्जन एवं वज्रपात की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में भी पूर्वानुमानित अवधि के दौरान ऐसी मौसम परिस्थितियाँ बन सकती हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तो ये थी मौसम की संक्षिप्त जानकारी। और कार्यक्रम में हम पुनः स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का। और हमारे कार्यक्रम में तो विविध सौपान है,
4: ठीक है, कॉलम है।
3: हम बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं,
4: बहुत राज,
3: खासकर चर्चा। और हर दिन कुछ खास होता है, तो चर्चा जब होती है तो हम हमेशा कुछ समसामयिक चर्चा को शामिल कर लेते हैं,
4: ताकि अपना सब से बातचीत कर सकी और उनकर बात को बुझ सकी।
3: हाँ, अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा करते हैं चर्चा के द्वारा, और उनसे भी हमें समय समय पर उनके पत्रों के द्वारा अक्सर जानकारी मिलती रहती
4: है। नहीं, अपना सबके जो संस्कृति रहा है वही शास्त्र जे शास्त्रार्थ रहल हाँ, जे गप सब रहल हाँ, दलान पर बैसबाक, संग गप करबाक, ये एकटा प्राचीन

0: परम्परा रहल बच्चा जे छथि से अहाँके बुजुर्ग लगमे जे हुनकर दादा होइ छलखिन ई नहि छलै जे कोनो अपना सब जे एखन कहै छियै जेनरेशन गैप ओहि समयमे अहाँके हर आदमीके संबंधित एकटा ओहन व्यक्ति भेट जाइ छलखिन चाहे ओ कक्का होथिन चचा होथिन बाबा होथिन छोटका बाबा होथिन ततेक संबंध रहै अपना सबके जो बच्चाके सिखबाक अवसर ढेर भेट जाइ।
1: आशुतोष जी बहुत अच्छी बात अपने कही कि ये वो दौर था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जिसे आपने कहा दलान यानी घर का बाहरी जो हमारा स्थल था उस पे बैठते थे और वहां से जनशक्ति को प्रेरणा मिलती थी।
0: निश्चित रूप से
1: क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया वह किसी एक की लड़ाई नहीं थी, वो जनशक्ति की लड़ाई थी।
0: बहुत
1: जिसमें देश के करोड़ों आम लोगों की जनशक्ति एकता का जो समागम था वो देखा गया। हर वर्ग सम्मिलित रहा, फिर चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, किसान मजदूर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, इन सभी के बीच अटूट एकता और अथक कोशिशों का परिणाम ही था हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम, जिसके आगे बादशाह औपनिवेशिक देशों का बादशाह देश इंग्लैंड की सरकार को झुकना पड़ा।
0: क्या नाने हुए थे यह जनशक्ति जखन धीरे धीरे एक विशाल जन आंदोलन में बदल गेल तो अंततः ई भारत का स्वतंत्रता का रास्ता पर सेहो लौक गेल। और अहाँ बड़ा नीक गप कहलौं जे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष केवल किछु महान नेता का आंदोलन नहीं छल बल्कि करोड़ों जे अपना सभक भारतीय बंधु छी हुनकर एकजुट जनशक्ति के परिणाम छल। किसान मजदूर युवा महिला आ आम जन सत्य अहिंसा और त्याग के रास्ता पर चल के और संगहि अहाँ देखबे केलहुँ हँ जे कोनो ओ रास्ता जैसे अपना सबके स्वतंत्रता भेट सकै छलथि ओकरा लेल ओ प्रयास केलथि।
1: एक तरह से कहा जाए तो जन आंदोलन की शुरुआत ने ही उस सत्ता को डगमगा दिया और जिसके कारण उसको हारना पड़ा, क्योंकि इस समाज में जब न्याय की मांग होने लगी, समानता और अधिकारों की प्राप्ति के लिए जब एकजुटता बड़े सामूहिक स्तर पर देखा गया तो यहाँ से अन्याय के खिलाफ एकजुट होने में भारतीय लोगों को बहुत बड़ा बल मिला और इससे ब्रिटिश सत्ता चौंक गई भारत की इस एकजुटता को देखकर।
0: और सबसे पैघ गप ई छल जे देखियो बिना कोनो हथियार के एकता साहस और ये सत्य जे अछि ओकर शक्ति से पैघ जे अछि कोनो हथियार
1: नहि होइत अछि। कहा जाए तो लोकतांत्रिक अधिकार की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई है।
0: निश्चित
1: हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र। तो लोगों का जो ये तंत्र है वह लोगों की जनशक्ति का ही परिणाम।
0: निश्चित रूप से जे अहाँ कहलौं हँ जे अपना सबके स्वतंत्रता जे अपना सब आबैवला 15 अगस्त का मनायब तो निश्चित रूप से ई संघर्ष से भेटल
1: जनशक्ति के
0: प्रेरणा अछि। आ ओहिना नहि भेटल हँ जे बहुतो आदमी के देखै छियनि जे बस मोटरसाइकिल पर झंडा लगा लेलथि और घर पर केवल झंडा लगेलखिन, ओहिसे
1: नहि।
0: हरेक घर हरेक बाट पर तिरंगा के सम्मान भेटबाक चाहिए,
1: जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं। यह तिरंगा का मान जो है वह हमारा स्वाभिमान
0: निश्चित
1: है हमारे देश के प्रति, क्योंकि आज यही वो वजह है जिसने हमें दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों के बीच जगह दिया जिसको पहले भारत की इस एकजुटता का अनुमान नहीं था।
0: निश्चित रूप से और संग ही संग जखन अपना सब ओ तिरंगा फहराइत देखै छी तो एकटा अपना सबको ओ रोमांच आब जाइत अछि जे
1: ठार
0: भ जाइ छै एखनो धरि।
1: फिल्म ने हमेशा उसे दर्शाया है कि कैसे एकजुटता बनी है। जब हम बॉर्डर पर देखते हैं उस एकजुटता को, जब हम बॉर्डर पर देखते हैं अपने जवानों के लड़ाई को, तो पूरा देश रोमांचित हो जाता है।
0: निश्चित
1: हमारी सामूहिक शक्ति को स्वाभिमान होता है।
0: और बड़ानी कहाँ कहलों हाँ, एकरा में संगीत अपना सबका बड़ बेसी योगदान देला।
1: फिल्म और संगीत दोनों ने अहम भूमिका निभाई है। तो

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी

डावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

0: तो देखिए आशुतोष जी,
1: बहुत रोमांच और निश्चित रूप से जेहन गप जेहन दिन ओहन हाँ। गीत न हाँ। और संगीता जी, आप समय भ रहा है जे अपना सब सुनी गत सप्ताहक प्रमुख गतिविधि।
0: धन्यवाद आशुतोष जी, संगीता जी के याद दिलाने के लिए। निश्चित, और आज सच में रविवार है, हम रविवार को हर रविवार को शामिल करते हैं गत सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां। पेपर लीक से जुड़े संशोधित कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी गत शनिवार यानी 1 अगस्त को मिली। अब यह कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे पेपर लीक के मामले में आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकें और दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा दिला सकें। नए कानून में 15 तरह की अवैध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करना, OMR सीट से छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट तैयार करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना आदि शामिल है। 2024 का यह मूल कानून उस समय लाया गया जब सरकार ने पेपर लीक के कई विवादों पर सामना कर रही थी। गत शनिवार को ईरान के द्वारा कुवैत पर ड्रोन हमले के पश्चात मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े हमले की योजना बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी करने का संकेत दिया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गत शनिवार का दिन भारत के लिए काफ़ी शुभ रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2024 के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों को खूब चमक मिली। 10 मुक्केबाजी ने में मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच चुके थे, जिनमें से 2 ने स्वर्ण 1 ने चांदी जीती थी। एथलीट खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किए। पैरा गोला फेंक एथलीट सुमन राणा ने शनिवार को स्वर्ण पदक और उनके साथ ही शुभम जुयाल ने रजत जीता। त्रिकूट स्पर्धा में प्रवीण चित्रावेल ने चांदी और सेल्वा प्रभूति स्मरण ने कांस्य पदक जीता। पैरा एथलीटों ने 7 स्वर्ण पदक में 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य के साथ पैरा एथलीटों को अपना अभियान दिया। इसके अलावा तीन दोहरे पदक पैरा एथलीटों ने महिला व पुरुष शॉट पर 100 मीटर दौड़ में 3 स्पर्धाओं में जीता। गत शनिवार को राष्ट्रहित के लिए समर्पित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को विदेशी नीति में उनके अहम योगदान के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। पुणे में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित नए राष्ट्रवाद की नींव रखी और आज अजीत डोभाल ने जमीनी स्तर पर कई रणनीतिक विचारों को लागू करने

मदद की और भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए, अभियान क्षमता बढ़ाने के लिए और देश की रक्षा प्रणाली को नए सिरे से सुधारने के लिए अहम भूमिका निभाई है। गत सप्ताह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक पास हुआ। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार कर उसे पारित करना भी शामिल हुआ। इसके अलावा

0: पास हुआ। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार कर उसे पारित करना भी शामिल हुआ। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा प्रस्तावित की गई और इसे लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया गया। शोभा ओहतकर, जो राज्य सरकार की 1990 बैच की रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थीं, को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। गत सप्ताह सामान्य प्रशासन ने गत शनिवार को यह अधिसूचना जारी की। बेगूसराय बहुचर्चित आर्म्स एक्ट मामले में एडीजे 2 सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 90,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा बेगूसराय भेजने का आदेश दिया। विकास योजना 2047 की अधिसूचना जारी हुई। बिहार सरकार ने बिहार के विकसित और सुनियोजित बिहार के विजन को साकार करने की दिशा में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की महत्वपूर्ण पहल के लिए जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई, हटाई और 60 दिनों तक मांगे आपत्ति सुझाव। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फैसला गत मंगलवार को घोषित हुआ, जिसमें भाजपा के गढ़ बांकीपुर में भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 19,324 मतों से जनसुराज के सूत्रधार सह प्रत्याशी ने विजय हासिल की। पहली बार इस सीट से हारी भाजपा और राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी समेत 23 की जमानत जब्त हुई। संसद ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 33 से बढ़ाकर 38 की। मुख्य न्यायाधीश के समेत विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करना है, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। लोकसभा में क्रमशः मंगलवार एवं राज्यसभा में क्रमशः बुधवार को इसे पारित किया। देश के धारा 370 के निरस्त होने के 10 साल पूरे हुए और इसे जश्न की तरह मनाया गया। और अब ग्लासगो में बेटियों ने ऊंचा रखा तिरंगा का मान। कुल स्वर्ण पदकों में 61% महिला खिलाड़ियों ने जीता। भारत की बेटियों ने भारोत्तोलक मीराबाई चानू मुक्केबाज तथा प्रियांत सीतम जूडो खिलाड़ी अस्मिता ने भी अपनी बड़ी सेंध लगाई। इसके अलावा शॉटपुट और मुक्केबाजी में भी भारतीय बेटियों ने लगातार 24 साल की तालिका में शीर्ष 5 में कायम रही। और अब इसी के साथ
1: एक कार्यक्रम संबंधी सूचना से हो है। श्रोतागण, विकसित भारत के निर्माण के लिए ई जरूरी है जे अपना सभक युवा न केवल सशक्त बनत बल्कि अपन दायित्व सभक प्रति कृत संकल्प से हो। विकसित भारत का लक्ष्य और युवा सभक दायित्व, यह है आकाशवाणी दरभंगा का फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगला अंकक विषय। विशेषज्ञ हता अमरेंद्र कुमार अमर, जिला युवा अधिकारी माय भारत दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल अपना सभक फोन नंबर है 0627222481। एक और नंबर है 9430029353। समय मुन राखी रवि दिन 9 अगस्त दिन का 11 बजे।
0: और अमरनाथ जी, एक और जो इस सप्ताह से जुड़ी खबर है वह है कि अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष लगभग श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख हुई और अब यह यात्रा छड़ी मुबारक दिवस के दिन यानी 28 अगस्त को समाप्त हो जाएगी।
1: अच्छा, देखियो सावन का ई समाद न बाबा से जुड़ल और बहुत सुंदर। अपना सब एकटा गप करे छी,
0: अब सावन की चर्चा आपने छेड़ दी तो भाई अब सावन का गीत सुनने का मन हो गया और हमारे श्रोताओं को भी सावन का गीत सुनने का गीत।

0: सबके किछु कहि रहल अछि।
1: धीरे धीरे टिक टिक करती हुई ये जो घड़ी की सुई है वो हमें कह रही है कि हम अब कार्यक्रम से अपने श्रोताओं से विदा लें, परंतु चलते चलते भी कुछ बातें रह जाती हैं।
0: निश्चित निश्चित बहुत रास एहन बात मन में रह जात अछि
1: जे अपना कार्यक्रम की भी कुछ चीजें शेष रह जाती है।
0: ठीक है कहलहुँ हम, मुदा एकटा गप हम कहब जे एखुनको समय अपना सब जे युवा सब के संबंध में गप केलहुँ हँ तऽ हम ई कहबनि जे खेल केवल मनोरंजन वा प्रतियोगिता तक सीमित आब नहीं रह गेल हँ, बल्कि युवा के कैरियर आ रोजगार के लिए नवका अवसर सेहो लोक आबि गेल।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि खेल प्रबंधन, कोचिंग, डेटा एनालिटिक्स, खेल विज्ञान इत्यादि कई चीजें हैं जिसमें बहुत अवसर है और अब खिलाड़ियों को इससे बहुत सम्मान मिलने लगा है।
0: तो अब समय
1: समय को देखते हुए अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और विराम तब तक के लिए देंगे यानी अगले कार्यक्रम तक के लिए। तो हम अगले कार्यक्रम तक के लिए लें इजाजत, यहीं नमस्कार
0: मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। अभी आप हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीर।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
2: प्रदूषण कम करने का लक्ष्य पूरा करना जो है
3: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो

0: फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुदुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुदुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
4: उड़ीसा में एक बार

0: फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे News on AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाज आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। यह फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुक्काम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सियानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के आईआईटी दिल्ली के 57वें सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि नौजवान बाख्तियार होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इंकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बायस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातन कुशारी ने 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: EMI भी 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू, प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए आज से पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। और डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% छूट देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है, क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

0: एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रेरणा का यह अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस साल तिरंगे के उत्सव में नई पहलें शुरू की जा रही हैं।
1: इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, नगर निकायों और पंचायत स्तर पर भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि सभी नगर निकायों के अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज से भावनात्मक रूप से जोड़ना और अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत कल राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं करेंगे। तिरंगा यात्रा जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक जाएगी। इसमें राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि आज से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान तिरंगा यात्रा, सेल्फी विथ तिरंगा, तिरंगा थीम पर आधारित प्रकाश सज्जा, वंदे मातरम का सामूहिक गान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड को 4000 तिरंगा उपलब्ध कराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पुस्तकालय की समीक्षा बैठक में कहा कि इसके लिए देश भर के प्रमुख पुस्तकालयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उनकी विशेषताओं के आधार पर बिहार विधानमंडल पुस्तकालय को समृद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव की अध्यक्षता में एक टीम प्रमुख पुस्तकालयों का दौरा कर अध्ययन करेगी। अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में पुस्तकालयों का स्वरूप अत्यंत समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत होना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी करेंगे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उप संवर्ग और शोध तथा प्रशिक्षण उप संवर्ग के सभी पदाधिकारी और डायट के प्राचार्य भी शामिल होंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक स्थानांतरण, स्मार्ट क्लास, ई शिक्षा कोष, व्यवसायिक शिक्षा, डिजिटल नवाचार, AI के बेहतर इस्तेमाल समेत अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा सहयोग के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने का प्रयास होगा।
2: शिष्टाचार मुलाकात की और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा है, PPE मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्र

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा पटना से होकर गुजर रही है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और बक्सर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के सिसवन में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर कल देर रात पटना और आसपास के कुछ भागों में भी तेज बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्री जत्थे को रवाना नहीं किया गया। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी मेल पर विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। पटना जीपीओ के चीफ पोस्टमास्टर राजदेव प्रसाद ने बताया कि 12 अगस्त से इनलैंड स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए लिफाफे के ऊपर राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि एक ग्राहक इस योजना के तहत एक बार में अधिकतम 5 स्पीड पोस्ट राखी मेल ही बुक करा सकेंगे। मध्य पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दानापुर और भागलपुर के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का परिचालन पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, क्यूल और सुल्तानगंज के रास्ते किया जाएगा। इसमें कुल 16 कोच होंगे। ये ट्रेन आज और कल दोपहर 3:30 पर दानापुर से रवाना होगी। वहीं रेलवे आज से 17 अगस्त के बीच दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया के बीच भी अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। और अब खेल की खबरें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में बिहार के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। सीनियर वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक और महिला वर्ग में श्वेता कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 5वें राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता में जमुई के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 7 पदक जीते हैं। अंडर 14 बालिका वर्ग में गोपालगंज की सौम्या कुमारी और अंडर 14 बालक वर्ग में जमुई के हरिओम कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। पटना में खेली जा रही द्वितीय बिहार राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर पटना की श्रीजा ने महिला एकल वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पटना के रणवीर सिंह ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जगह पक्की की है। मोतिहारी में खेली जा रही 36वीं राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नवादा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन अलग अलग कैटेगरी में जिले के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई कर लगभग 278 लीटर विदेशी शराब और बियर जब्त किया है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मधुबनी जिले के औसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान एक मैजिक सवारी वाहन से 41 किलो गांजा जब्त किया है। भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राकेश रंजन को डाक से मिले पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। शेखपुरा जिले के बरबीघा में मिशन थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्यार्थियों के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।

0: आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 18 जिले मानव तस्करी में अति संवेदनशील, तस्करों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका में वीजा प्रकरण पर लिखा है, नौकरी जाने पर कामगार को परिवार समेत तुरंत छोड़ना होगा अमेरिका। दैनिक भास्कर मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, बिहार में 35% कम बारिश, 13 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। प्रभात खबर ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लिखा है, जो सीखेगा वो जीतेगा, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। राष्ट्रीय सागर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से लिखा है, बिहार के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिल रही है नई पहचान। आज अखबार लिखता है, 16 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराई तो गैस सब्सिडी बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू, प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए आज से पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। और डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% छूट देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

सामीन, अभी आप अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में बेकल उत्साही के इस कलाम को समाप्त फरमा रहे थे। और मोहब्बत कहते हैं कि कायनात की तख्लीक का, गर्दिश का महवर है। हर एतबार से मोहब्बत ज़रूरी एक शय है जिसके ज़रिए से इस कायनात की तख्लीक हुई है। लिहाजा मोहब्बत हम तमाम इंसानों के सरिश्त में दाखिल है और इसके बगैर किसी भी इंसान के किसी भी तरह के फिक्र से आज़ादी मुमकिन नहीं होती है। मोहब्बत वतन से होती है, मोहब्बत वालदैन से होती है, मोहब्बत औलाद से होती है, मोहब्बत माल व ज़र से होती है, मोहब्बत दुनिया से होती है। गर्ज ये कि हर एक चीज़ से मोहब्बत होती है, उसमें फौकियत की बात आती है। अगर हम इस मुनासबत से देखें तो सबसे जो बेहतरीन मोहब्बत का जज्बा है वो हुब्बुल वतनी है, यानी अपनी वतन से मोहब्बत, मातरे वतन से मोहब्बत। यकीनन हम जिस मुल्क में, जिस खित्ते में रहते हैं, उससे फितरी तौर पे जहां हम पैदा होते हैं तो उससे हमारी मोहब्बत का हो जाना लाजमी है और हम इस मोहब्बत को मरते वक्त तक कायम रखते हैं। हम तमाम लोग इस बात से भी आगाह हैं कि एक ज़माना जो इससे कबल हम तमाम लोगों के, बुज़ुर्गों के ऊपर से गुज़रा है, वो था अंग्रेज़ी हुकूमत की ग़ुलामी का दौर। यकीनन उस ज़माने के कर्ब को बयान करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कर्बनाक था, लेकिन उस ज़माने में भी वो ही इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था जिसके ज़रिए से वो तमाम लोग एक जा हो करके इस हुकूमत से आज़ादी के लिए कोशा रहे और जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, और सबसे अहम कि न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी कीमती जानों की भी अजीम कुर्बानियां दीं, जिसके समरे में आज हम अपने वतन में सांस ले रहे हैं आज़ादाना तौर पर। ये बहुत ही अहम है कि ज़िंदगी आज़ाद गुजरे और ग़ुलामी का किसी के ऊपर भी कभी साया ना हो। लिहाजा हम इस बात से

एक बार फिर से इस चीज को दोहराएंगे कि वतन की मोहब्बत सबसे अव्वलीन शर्त है, और जिस जगह हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उससे मोहब्बत करना लाजमी शय है। आइए सामीन, इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम आपको ये एक गजल सुनवाएं। लीजिए, मुलायजा फरमाएं।

0: सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब के इस कलाम को आपने अभी समाप्त किया और अब लीजिए हाजिर खिदमत है सेहतनामा।
1: सामिन, मौसम, सेहत और खाने पीने के दरमियाँ एक वाबस्तगी है। जैसा कि आपको बखूबी पता है और हम ये बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छी सेहत का राज सही खाने पीने और अच्छी तर्ज ज़िंदगी पर मौकूफ़ है, पर हम अक्सर अपनी काहिली कहिए या कोताही इस पे अमल नहीं करते। और दूसरी बात यह भी है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनका खाना पीना

0: बदलते मौसम के साथ कैसा होना चाहिए। सामईन, आज के सेहतनामा में हम इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं। हमने इसके लिए मशहूर माहिर गजाइत यानी डाइटिशियन डॉक्टर सैयद मुमताज़ करीम को मदु किया है। मुमताज़ करीम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: डॉक्टर साहब। मौसम की तब्दीलियों का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और उसके एतबार से हमारा खान पान क्या होना चाहिए?
1: हर मौसम में हमारा जो गज़ा रहता है वो बदल जाता है। अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में हमें ऐसी गज़ा लेना चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे सब्ज़ियाँ फल, क्योंकि सब्ज़ियाँ और फल में पानी की मात्रा तो ज़्यादा रहता है। अगर हम जाड़े की बात करते हैं तो जाड़े के मौसम में गर्म मुआज़ी गज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सूप हो गया, दालें हो गई, दूध हो गया, मेवा, अखरोट, बादाम, इन सब चीज़ों का अपने गज़ा में शामिल करें। बरसात की अगर हम बात करते हैं तो बारिश के मौसम में ख़ास तौर पर हल्की और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, जैसे सर्दी के मौसम में खाने पीने में किस तरह की चीज़ें हमें लेनी चाहिए जिससे हमारी सेहत सही रहे? चूँकि सर्दी में लाइफस्टाइल थोड़ी हमारी बदल जाती है, रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, तो उसके हिसाब से आप किस तरह की गजाइत लेनी चाहिए हमें सर्दियों के मौसम?
1: सर्दियों में जो गज़ा हमें लेना चाहिए, और सर्दियों में बहुत सारे फल और सब्जियां आपको बाज़ार में मिलते हैं, जैसे सब्जियां में हरी सब्जियां, बहुत सारे साग, क्योंकि सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जिसमें आप साग देखेंगे, उसमें पालक वो साग हो, लाल साग हो, चना का साग हो, तो सागों का इस्तेमाल अपने गज़ा में ज़्यादा करना चाहिए। और उन सागों का सूप आप सर्दियों में ज़्यादा लें, क्योंकि सूप लेने से थोड़ा गर्मी जिस्म में आ जाती है तो ठंड कम लगता है। तो ऐसे ही गज़ा को शामिल करें जो जिस्म को हीट दे, जिस्म को गर्मी दे। और ख़ास कर करके जाड़े के मौसम में अभी बाज़ार में गाजर बहुत सारे आते हैं, तो अपने गज़ा में गाजर को शामिल करें, उसका आप सलाद बनाएं, या फिर उसका ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसका हलवा बना करके अपने गज़ा में शामिल करें। और उस हलवे को सुबह के नाश्ते में आप ज़रूर लें। अगर सुबह के नाश्ते में अगर आप एक रोटी के साथ अगर आप हलवा ले रहे हैं तो आपके जिस्म को, एक तो गाजर जो रहता है उसमें बीटा कैरोटीन रहता है और आइस के लिए काफी अच्छा रहता है
0: जी। और भी चीजें जैसे जाड़े में, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बदलती है, लोग अक्सर देर से उठते हैं, सवेरे सोते हैं,
1: अक्सर क्या होता है कि जाड़े में लेट से सोते भी हैं और लेट से उठते भी हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल है ठीक है, अगर आप लेट से सोए हैं तो मैं उठने का जो वक्त आप उठ जाइए, उठ कर करके आप पे कम से कम बिस्तर, जब तक आप बिस्तर के अंदर रहेंगे तो आपको जारा जारा आप करेंगे, आपको एक ठंड ऐसा फीलिंग होगा, जैसे आप बिस्तर से बाहर आ जाएंगे खुद आपको एक अच्छा फीलिंग होगा। और उसमें आपने ड्राई फ्रूट का, जिसको हम लोग बोलते हैं तुरी, तुरी आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट रहता है और ड्राई फ्रूट को मिक्स कर करके बनाते हैं और उसको चाय की तरह वो पीते हैं, तो आप एक कप तुरी बना करके सुबह में अगर आप पी लेते हैं तो दिन भर आपको बहुत अच्छा फील, यानी चाय को स्किप कर दें। अक्सर लोग क्या होता है, यहाँ चला आ जा रहा है भाई सुबह उठे तो चाय पी ली, नहीं, चाय को स्किप कीजिए और ड्राई फ्रूट का अखरोट, बादाम, पिस्ता,
0: हरेरा
1: बोलते हैं, तो उसको आप सुबह में बनाएं और बना करके तो चाय की तरह आप उसको लें।
0: हाँ, तो ये एक अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है चाय का।
1: हाँ, चाय का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और फिर अगर चाय पीने की ख्वाहिश है तो नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते के बाद आप चाय लीजिए, कोई इशू नहीं, मगर अर्ली मॉर्निंग उठे, उठने के साथ जो चाय का जो चला रहा है हम लोगों का एक जमाने से, उसको जारे में तो कट कर दीजिए
0: जी। वो खाली पेट चाय पीने, वेट टी का जो एक
1: मॉर्निंग टी का जो चल रहा है, तो मॉर्निंग टी को स्किप कर करके आप हरारा जिसे बोले, जिसको हम तुवरी भी बोल रहे हैं, आप उसे अपने गजा में शामिल करें।
0: तो ये काफी अच्छी सलाह है आपकी। और एक डाइटिशियन के तौर पे अगर देखें तो जैसे जाड़े के जस्ट बाद गर्मी शुरू होती है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है, तो उस मौसम के लिए किस तरह के खाने पीने की आदत तो लोगों में आनी चाहिए, क्या खाएं पिएं?
1: गर्मी में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पानी, क्योंकि जिस्म से पानी निकलता है जिसको पसीना हम बोलते हैं, तो खाने से ज्यादा पानी का वाटर इंटेक करें, जिस्म में पानी की कमी ना हो, और खास करके फलों का सेवन ज़्यादा करें, यानी फल ज़्यादा लें, जो सीजनल फल है, जो बाज़ार में सीजनल फल आपके आसपास नहीं मिलता है उस फल को लें। ये क्या करता है कि हमारे जिस्म की जो पानी है उस पानी को पूरा करता है। ऐसा नहीं है पानी पीने के लिए बोल रहे तो आप पानी पीजिए, आप लिक्विड में कुछ भी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही का छाछ होता है, छाछ पी सकते हैं, उसके बाद आप दाल पी सकते हैं, वो भी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, सूप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, इस तरह से लिक्विड जो लेना है तो वो आपने

0: की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यानी जो हमारे गजा को चाहिए वो सारा चीज इसमें है
1: जी।
0: और ये आपका नेचुरल सोर्स प्रोटीन हो गया, कुछ भी नहीं इसमें मिला हुआ है। अगर ये आप ज्यादा भी लेते हैं तो इसमें जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, ना एक्स्ट्रा चीनी इसमें डाला हुआ है।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल है ये कि जो खातीन है उनको किस तरह की गजा लेनी चाहिए?
0: देखिए, खवातीन और बच्चियां दोनों अलग अलग हुए। बच्चियां जो हो गई जो स्कूल में जो पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं, उन्हें हम टीनेजर बोलते हैं, जिनका एज ग्रुप 13 से 19 इयर्स होता है। और ये एज ग्रुप जो है, ये उनके ग्रोथ के लिए उन्हें प्रोटीन रिच डाइट तो लेना ही है, साथ में उन्हें कैल्शियम और आयरन रिच भी लेना है। और लड़कियों में खासकर इस एज में रमावारी स्टार्ट होता है, तो इस वजह से उनकी अपने गजा में प्रोटीन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट होना बहुत जरूरी है। और बाजार में मिलने वाले, खुले मिलने वाले प्रोडक्ट से उन्हें परहेज करना चाहिए। और खासकर जो स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ती हैं, उन्हें तो नाश्ता करके ही अपने स्कूल कॉलेज को जाना चाहिए।
1: और किस तरह की खातीन जो
0: देखिए खवातीन अभी एक देखा जा रहा है, हमारी जो खवातीन हैं उन्हें हमला होने में यानी प्रेग्नेंट होने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है
1: जी।
0: इसका सबसे बड़ी वजह है उनका लाइफ स्टाइल। और ये भी हम लोग देखते हैं कि आज जो खवातीन हैं वो प्रोटीन रिच डाइट तो लेती हैं, मगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स हो गया विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, सी, जिंक, आयोडीन, आयरन, जो ट्रेस एलिमेंट है, वैसा डाइट को वो लेती ही नहीं, क्योंकि वो जो मिलता है वो आपको फल में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, सीजनल फल सब्जी ड्राई फ्रूट में मिलता है। आप देखेंगे अक्सर जो खवातीन हैं, जो लड़कियां जो कॉलेज स्कूल लाइफ में जो पढ़ती हैं, वो बाजार में मिलने वाला हर चीज़ उन्हें पसंद है, अगर उनके पेरेंट्स ने अगर उसे बना दिया है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें फ्लेवर नहीं रहता है। अब बाजार में तो जो मिल रहा है उसमें फ्लेवर डाल करके मिल रहा है, इसलिए उनको टेस्टी लगता है।
1: जो भी खाने पीने की चीजें, तेल का ज्यादा इस्तेमाल हाँ, लोग करते हैं,
0: इसी वजह से उन्हें आफ्टर मैरिज या शादी हो जाती है तो उन्हें कंसीव होने में परेशानी हो रही है। तो मैं तो ये कहूंगा जो हमारी खवातीन हैं वो अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लें, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और आज जो कुछ लड़कियां को आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा वो तनाव में रहती हैं, और तनाव की वजह से भी आफ्टर मैरिज जो प्लान वो करते हैं उसमें उनको डिफिकल्टीज होता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो गजा जो लिया वो प्रॉपर तरीके से तो गजा लिया नहीं है, जो डाइट उन्होंने लिया है वो वक्त पे तो लिया नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, खाने की ख्वाहिश हुआ बाजार गए, बाजार से जा करके ले आए। तो ऐसी खवातीनों से मैं ये कहूँगा कि अपने डाइट को वो वक्त पे लें, और वक्त के साथ साथ वो फिजिकल एक्टिविटी करें।
1: ये भी है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो आपकी सेहत पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है
0: जी।
1: एक सवाल है डॉक्टर साहब के, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए किस तरह की गजा होनी चाहिए, वो किस तरह की गजा लें अलग अलग मौसम में?
0: देखिए, बढ़ती उम्र में गजा भी बदल जाता है, जो हमारे बुजुर्ग हों वो लेडी हों या जेंट्स हों तो गजा भी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उनकी हड्डी और जो मसल जो होती है वो कमजोर होने लगता है, और आंखों की रोशनी कम होने लगती है। दिन ब दिन उनका क्या होता है, जिस्म में क्या होता है, कमजोरी जैसा उनको फीलिंग होता है। अगर खवातीन की बात करें तो खवातीन 50 वर्षों के बाद उन्हें मेनोपोज का स्टेज आ जाता है, और इस स्टेज के आने के बाद उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत बढ़ने लगती है, यानी हड्डी कमजोर होने लगती है। तो मैं बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा, जो अपने जो गजा जो आप लेते हैं वो हल्का और आसानी से पसने वाला वो गजा ले, क्योंकि इस एज में क्या होता है, इम्यूनिटी आपका वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है,
1: और फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाती है।
0: इसलिए वो हल्का और आसानी से पचने वाला गजा लें, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला गजा हो। जैसे अगर खवातीन की हम बात करें तो वो डेयरी प्रोडक्ट लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अनाज लें, फाइबर का यूज ज्यादा करें। फाइबर मीन्स हो गया कि रेशा वाला फल, रेशा वाला सब्जी, अनाज अगर लें तो वो मैदे से बना हुआ चीज को ना लें, आटे से बना हुआ चीज लें। अगर मैदे वाला चीज ले रहे हैं तो उसमें आटा मिला दें वो, अगर आटा वो मिला देते हैं मैदे वाले चीज में तो उसमें फाइबर हो जाता है, तो फिर एक गजा सही हो जाता है। नहीं, आप जो बना रहे हैं उससे आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होने में डिफिकल्ट नहीं होगा, और कंस्टिपेशन नहीं रहेगा। अभी बुजुर्गों में हम ये देख रहे हैं उन्हें कंस्टिपेशन का बहुत ज्यादा शिकायत है, तो मैं बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गजा में मल्टीग्रेन, जिसको आप बता रहे हैं अभी मोटा अनाज हम बोलते हैं,
1: अभी मिलेट्स की भी बातें खूब हो

0: हो रही है। हमारे मुल्क में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसी से अगर हम जोड़ दें तो मिलेट्स कितना फ़ायदेमंद है हमारी गजा के लिए और इसे किस तरह से लोग लें, हर उम्र के लोगों के लिए इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करें।
1: देखिए, मिलेट्स इम्यूनिटी को हमारा बूस्ट करता, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, यानी प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फैट भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा चीज़ मिलेट्स में है। और मिलेट्स भी रागी, बाजरा, जौ, कुटकी, मक्की, ये सारे मिलेट्स हैं। मिलेट का लेने का तरीका, डायरेक्ट आप मिलेट नहीं लेना, अगर आपको रागी का रोटी खाना है, अगर रागी की रोटी पसंद नहीं है तो आप सिर्फ रागी का रोटी नहीं बनाइए, आप क्या कीजिए, आटे में रागी को मिक्स कर दीजिए, आटे में बाजरा को मिक्स कर दीजिए, आटे में जौ को मिक्स कर दीजिए, आटे में कुटकी को मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद उसको रोटी बना के खाइए, पराठा बना के खाइए, यानी ये बनाने का जो तरीका है ना उसको चेंज कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मिलेट तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी जो भी आपके जिस्म को चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर है। और मिलेट्स को हमेशा बदल बदल कर लें, आज आपने रागी का रोटी खा लिया तो कल बाजरा का खा लीजिए, दो दिन बाजरा का रोटी खा लिए फिर जौ का खा लीजिए, जौ का आपने खा लिया मक्की का खा लीजिए।
0: ये भी तो सीजनल होता है, अलग अलग वक्त पे होता है। हाँ, तो जो सीजनल मिलेट्स का
1: जो सीजनल मिलेट्स है वो ले, नहीं तो बाजार में तो अभी सब मिलेट तो बाजार में हर सीजन में मिल जाता है, सारे सीजन में मिल जाता है, वो आप ऐसा नहीं रहा गया कि ये सीजन में ये मिलेगा नहीं।
0: जो अनाज भी जो पैदा होता है, जो सीजन में पैदा होता है, तो उसी सीजन के खाने के लिए भी होता है।
1: जी जी,
0: कई बार होता है कि आप कोई अनाज ऐसा है जो आपने भले ही ले लिया हो लेकिन वो उस सीजन में उतना फायदेमंद नहीं है, या ज्यादा खा लेने पे उसका भी नुकसान हो जाता है, तो उसको भी एक बैलेंस के तौर पे ले, और सीजनल ले तो ज्यादा बेहतर,
1: ज्यादा बेहतर। इसीलिए मैंने कहा आटे के फॉर्म में उसको बनाया रखा है, यानी उसको रोटी के फॉर्म में कहा, यानी अगर आप 1 kg आप नॉर्मल आटा ले रहे हैं तो उसमें 200 g आप रागी मिला दीजिए, या 100-100 g रागी मिला दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके आप उसको रोटी बना के खाइए, या फिर पराठा बना के खाइए, एवं उसका आप हलवा बना के खाइए।
0: जी हाँ,
1: जाड़े के मौसम में तो यानी मिलेट का हलवा बहुत टेस्टी रहता है।
0: अभी तो हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में जो मिलेट्स का नूडल्स भी आ गया है, और ये पास्ता वगैरह भी मिलेट्स का मिल रहा है।
1: होता क्या है कि लोगों को टेस्ट चाहिए, तो मिलेट में थोड़ा टेस्ट रहता नहीं है, मैदे में टेस्ट रहता है, तो टेस्ट की वजह से लोग मिलेट को खाना उतना पसंद नहीं करते। मगर बुजुर्गों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, टीनेजर गर्ल्स या बॉयज हों, और खास करके हमारे छोटे बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में है, 2 साल से जो ऊपर के, उन्हें भी अभी से आप मिलेट की आदत डालें, क्योंकि होता क्या है कि छोटे बच्चे में लोग बच्चे को सिर्फ दूध ही दूध देना पसंद करते हैं, खाने पे उतना ज्यादा वो उसको फोकस नहीं करते हैं। अगर छोटे बच्चे को आप हर तरह का चीज देना बचपन से ही आप आदत डालेंगे तो वो क्या रहेगा कि वो यानी उसको आदत बना रहेगा। आदमी हम कहते हैं ना, बचपन का खाया पिया बुढ़ापे तक काम आता, काम आता है। तो हम क्या करते हैं कि बचपन में तो उसे फैंसी चीज, मार्केट फूड, पैक्ड फूड देते हैं, और जब वे ओल्ड एज में आते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मिलेट का यूज बच्चों में भी दें, बुजुर्गों भी दें, और बच्चियों को तो खास कर देना है, क्योंकि उनको आयरन डिफिशियंसी ऑलवेज रहता है, तो वो खून की कमी उनको ना हो।
0: ये तो मिलेट्स की बात हुई। हमारे बिहार में खासकर एक प्रोडक्ट है मखाना, मखाने की काफी बात हो रही है अभी, काफी उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो मखाना किस तरह से फायदेमंद है हमारे सेहत के लिए, और इसे किस तरह से लेना ज्यादा बेहतर होगा?
1: आपने मखाने के बारे में बात किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय
0: जी
1: और इसकी जो साइंसदान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मखाने के हवाले से एक बहुत बड़ी खोज की है। बहुत लंबे रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने कुदरती तौर पे दस्तियाब मीथेन सल्फोनामाइट नामी एक खास मरकब दरियाफ्त किया है। ये संगीन बीमारियों के इलाज के बेपना सलाहियत रखता है। इसमें जरासीम कश, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, हार्ट और थायराइड, बीपी, शुगर के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें पाउडर के फॉर्म में भी दे सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में उसे आप रोस्टेड कर लीजिए मखाने को, उसको पाउडर बना दीजिए और उसे दूध में मिक्स करके आप दे दीजिए, खीर फिरनी बना कर करके। अगर बुजुर्ग हैं तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं, रोस्टेड कर ले सकते। रोजाना एक बॉल मखाना अगर आप लेते हैं तो आप बीमारियों से आप बच सकेंगे।
0: तो मखाना को ऐसे रोस्टेड ही ज्यादातर लोग लेते हैं, और ये खीर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी अभी काफी चलन

0: में आ गया है।
1: जी जी।
0: तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को अख्तिताम करते हुए आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप और क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सामईन को?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग हों, बड़े हों, बच्चियाँ हों और छोटे बच्चे हों, उन्हें जंक फूड और प्रोसेस फूड से बचाएं, ताज़े फल और सब्जियों को ले और रोज़ाना वो फिजिकल एक्टिविटी करें। कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर वो नींद लें और सीजनल सब्जी वो अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें।
0: सामईन, मौसमी तब्दीलियों के दौरान खुराक का इंतखाब नहायत अहमियत रखता है। हर मौसम के मुताबिक सही ग़िज़ाओं का इंतखाब करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मियारी और तवाज़ुन ग़िज़ा हमारी तमाम सेहत की बुनियादी ज़रूरत है जो हर मौसम में हमें कुव्वत और तवानाई फराहम करती है। आज के सेहतनामा में बस इतना ही। खुदा हाफिज़।
2: सामीन, मुकम्मल ग़िज़ाइयत और बदलते मौसम में किस तरह के खान पान को इस्तेमाल करके हम सेहत के साथ रह सकते हैं, इस मौजू पर आप ये सेहतनामा समाअत फरमा रहे थे जिसमें बात हो रही थी डॉक्टर सैयद मुमताज़ करीम से। और अब हम अपने अगले पेशकश की जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं। लीजिए आपकी समातों के हवाले ये गज़ल मुलाहिज़ा हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@

जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीर।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज 9 अगस्त है, यानी अगस्त क्रांति दिवस। तो आइए, ये पहला गीत समर्पित देश को।

ये आवाज़ें थी कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की फिल्म कर्मामी। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सबक फिल्म के इस गीत को आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीतकार उषा खन्ना।

यह स्वर था सुभन कल्याणपुर का फिल्म सबक में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आशा में। इसे एक बार फिर से सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए फिल्म आशा का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म आज़ाद में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार सी रामचंद्र। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म फकीरा का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अकेला फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गीत फिल्म धर्मात्मा से आवाजें मुकेश और कंचन की है, गीत रचना इंदिवर की और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

ये आवाज़ें थी मुकेश और कंचन की फिल्म धर्मात्मा में। गीतकार थे दीवार और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म अपनापन का ये गीत।

यह आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म अपनापन में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा कार्यक्रम फुलवारी। सूत्रधार हैं प्रेरणा कुमारी और प्रस्तुतकर्ता हैं अमरनाथ प्रसाद।

जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन खुशियों और ज्ञान से भरा होने वाला है। एक नए और अनोखे सफर की शुरुआत, चलिए ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम फुलवाड़ी का प्रेरणा दी के साथ। बच्चों, आज हम जानेंगे सड़क सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी के बारे में। बच्चों, रोज जब हम स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं या पार्क में खेलने निकलते हैं तो सड़क पर ढेर

0: सारी गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती है ना? बस, कार, बाइक, ऑटो, साइकिल, ऐसे बहुत से साधन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क पर सुरक्षित चलना भी एक कला ही है और इसके कुछ नियम भी होते हैं। अगर हम इन नियमों को मानेंगे तो कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए आज के इस अंक में हम सीखते हैं सड़क सुरक्षा के 4 नियम। बच्चों, लाल बत्ती कहती है रुको, यानी स्टॉप। बच्चों, ये तो हुआ पहला नियम। पीली बत्ती कहती है धीमी हो जाओ और तैयार रहो, गेट रेडी। बच्चों, यह हुआ दूसरा नियम। बच्चों, अब बारी आई तीसरा नियम का। तो हरी बत्ती कहती है अब सुरक्षित आगे बढ़ो, गो, यानी चलना शुरू कीजिए। बच्चों, ये तो हुए हमारे 3 नियम। बच्चों, इसके साथ ही हमें जेब्रा क्रॉसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी पैदल सड़क पार करनी हो, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर बनी सफेद और काली पट्टियों से ही पार करें। सड़क पार करने से पहले एक छोटा सा मंत्र याद रखें। बच्चों, पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर से दाएं देखो और जब सड़क साफ हो तभी कदम आगे बढ़ाओ। अगर हम इस प्रकार घर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं तो कभी भी हम हादसा के शिकार नहीं होंगे। बच्चों, एक बात और भी याद रखना जरूरी है। जब भी हम मम्मी या पापा के साथ बाइक या स्कूटर पर बैठे तो खुद भी हेलमेट पहने और उन्हें भी हेलमेट पहनने के लिए कहें। कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना कभी ना भूले, ये आप खुद भी याद रखें, साथ ही आप मम्मी पापा को जरूर याद दिलाएं। बच्चों, अगर इस प्रकार से हम थोड़ी सावधानी को अपनाते हैं तो खुद भी सुरक्षित रहते हैं, साथ ही हम औरों को भी सुरक्षित रखते हैं। तो नियमों का पालन आप अवश्य करें और इन्हें याद भी रखें। बच्चों, इसके साथ ही सड़क पर चलते वक्त या साइकिल चलाते समय कभी भी कान में ईयरफोन ना लगाएं, मोबाइल में ना देखते चले और ना ही सड़क के बीच भाग दौड़ करें। घर से जब भी बाहर निकले ध्यान देकर सड़क पार करें, नियमों का पालन करें। बच्चों, इन नियमों का पालन करने के साथ साथ अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी यह भी है कि अगर सड़क पर कभी किसी को चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि किसी बड़े को बताना चाहिए या एम्बुलेंस 108 पर कॉल तुरंत कर देना चाहिए। सही समय पर मदद करना ही असली समझदारी है। बच्चों, अगर ऐसा कभी भी अनहोनी हो जाए तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सड़क सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारी और अपनों की जीवन रक्षा का संकल्प भी है। नियमों का पालन करते हैं और दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और खुद भी सुरक्षित रहते हैं, साथ ही औरों को भी सुरक्षित रखते हैं। बच्चों, आइए सड़क सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन नियमों को अपने जीवन में उतारें। वादा करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो वादा करते हैं ना?
1: हाँ।
0: नियमों का पालन करेंगे ना? खुद की सुरक्षा अवश्य करेंगे आप, साथ ही मम्मी पापा को भी हमेशा याद दिलाएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि सड़क पर हमें अच्छी तरीके से दाएं बाएं देखकर तभी सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा हमें अपनी दाईं ओर चलनी चाहिए। इस तरह से हम खुद भी नियम का पालन करेंगे, साथ ही साथ हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे। आप जरूर बताइएगा और आप सुरक्षित रहिएगा। तो बच्चों, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं यह सुंदर और प्रेरणादायक गीत।

बच्चों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे अंक में राजकीय मध्य विद्यालय कठलवाड़ी दरभंगा नगर से बच्चों की प्रस्तुति।

0: वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
1: मैं जहान हूँ जहाँ में याद रहे तू,
0: मैं जहान हूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन,
1: तुझ पे कोई गम किया जाने नहीं,
0: तुझ पे कोई गम किया जाने नहीं। ऐ वतन वतन मेरे।

राजा, अयोध्या के राजा थे। वो कितने अच्छे थे,

0: परिवार आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाए, तन में चुस्ती फुर्ती ला, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नैनवा खाना, दूध दही तुम चक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगा, अब अमृत पपीता खाना, केला बेल भी घर ले आना, केला बेल भी घर ले आना, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हत्या है, पीरा खूब कड़ो जलका है, इसकी मैं वहाँ अपना पार भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, जब खाते हम ढंग से खाना वैद्य हकीम वैद्य को ना मिले बहाना, इसीलिए कहता हूँ यार आओ मिलो।
1: सभी जग एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली सारे फूल मालाओं में बूझे एक है, कोयल की कुक न्यारी पपीहे की तेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराला सबकी मंजिल एक है।
2: कविता सुनाए हैं, धन्यवाद। आप क्या सुनाइए बेटा? गाना, क्या नाम है आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेवन में पढ़ते हैं। आज क्या सुनाना चाहते हैं? चाह रहे हैं आज क्या सुनाइएगा? प्रार्थना। प्रार्थना हम क्यों करते बेटा? प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा मन शांत होता है, हम शांति मन से भगवान को याद करते हैं कि हमारा दिन अच्छा हो और हम पढ़ाई करें, खूब मन लगा कर स्कूल आए तो पढ़े। तो अच्छा ठीक है, सुनाइए आप प्रार्थना।
3: करते हैं नाम प्रभु करते हैं श्रीवास का काम, प्रभु तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हें से पाए, तुम्हें से है आकाश तुम्हें से अंजाम, प्रभु करते हैं हम श्रीवास का काम, प्रभु गुरु का सत्कार कभी ना भूल, हम इतना बने महान उनको छूने हम तुम्हें से है और सुबह तुम्हें से शाम, प्रभु करते हैं नाम करते हैं हम श्रीवास का काम, प्रभु।
4: कविता
2: सुनाइए।
4: जंगल में जाए पहाड़ी का सोर भी बैठी घोड़ी पेड़ चली जंगल की, चीटी रानी चीनी लाई गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के साथ मीठी खूब पकाई, सुए ने जब आलू ने जब थाल सजाया, हंसकर बंदर मामा आया, खड़ा रहा हिरन शेर सबने जमकर भूख लगाई, खूब खाए हाथी लाया, पेट में जब आई बाजा चूहे ने इलाज बताई, गर्म गर्म पानी पी गए।
2: अच्छा बहुत। किसके लिए गाना गाना है आपको?
5: पापा की मम्मी के,
2: पापा और मम्मी दोनों के लिए। अच्छा सबसे पहले हमको ये बताइए, पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी?
5: दोनों।
2: दोनों आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं?
5: दोनों ही करते।
2: तो मम्मी कभी डांटती उठती है कि नहीं तुमको? डांटती है, मारती भी है, लेकिन प्यार भी तो करती होगी। आप जरूर कोई शरारत करते हैं? शरारत नहीं करना है ना, है ना? करना बिल्कुल। अच्छा क्या गाना चाहते हैं पापा के लिए?
6: पापा गाना गाना।
2: अच्छा गाइए
5: पापा।

0: बताइए, आप लोग तो गाए पापा मम्मी के लिए सॉन्ग
1: गाए ना, बहुत अच्छा गाए। तो ये बताइए कि हमारे और आप सभी के पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु कौन है? हमारे मम्मी पापा। कौन है?
2: मम्मी पापा
1: ही हमारे पहले गुरु होते हैं ना। आप जब जन्म लिए तो किनको देखे सबसे पहले? मम्मी पापा को। घर में बोलना हो चाहे किसी को पहचानना हो, वो सब मम्मी पापा ही सिखाए ना। तो मम्मी पापा का हमेशा आदर करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। अगर मम्मी आपको डांटे

0: करना हो, सब मम्मी पापा ही सिखाए ना, तो मम्मी पापा का हमेशा आदर करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। अगर मम्मी आपको डांटे चाहे कोई बात बोले तो वो बात को समझना चाहिए, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं कि मम्मी हमको क्यों डांटी, मम्मी हमको क्यों मारी, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं ना, तो अच्छे बुरे का फर्क समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। दुनिया है, दुनिया में बहुत कोई लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो हमें अच्छा और बुरा में फर्क करना कौन सिखाता है? मम्मी पापा, ठीक है। इसलिए मम्मी पापा का कहना सबको मानना है, सबसे पहले कोई बात, अगर घर से स्कूल आते हैं ना, स्कूल से जाते हैं, स्कूल में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कौन क्या कह रहा है, इस बात को कभी इग्नोर नहीं करना है। अगर लगे कि कोई चीज़ बुरा है, कोई हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बुरी नज़र से हमको देख रहे हैं, तो जाके किसे कहना है? मम्मी पापा को। हमेशा ये बात याद रखिएगा ना आप लोग, अपनी सुरक्षा हमको खुद करना है, ओके। हाँ, तो आज के बाद आप लोग घर जाइएगा तो हर बात मम्मी पापा से शेयर कीजिएगा, ठीक है?
1: बच्चों की हर अदा में एक अलग ही सादगी होती है जो उनकी प्रस्तुति को बेहद खास और तरोताजा बना देती है। सच ही कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अभी अभी आप इनकी प्रस्तुति में इसी सच्चाई और मासूमियत की झलक सुनी। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद चलिए बिना किसी देर किए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर।

बच्चों, चंपक वन में टीकू नाम की एक छोटी सी चींटी रहती थी, जहाँ जंगल के बाकी जानवर दिन भर खेलते, घूमते और आराम करते थे। वहीं टीकू सुबह शाम तक मेहनत करके अनाज के दाने अपने बिल में इकट्ठा करती थी। परंतु यह देखकर जंगल के भालू और गिलहरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, टीकू तुम दिन भर यह बोझ क्यों उठाती हो? मौसम इतना सुहाना है, थोड़ा खेलो, मजा करो। लेकिन बच्चों जानते हो, टीकू मुस्कुराकर जवाब देती, अभी गर्मी का मौसम है और भोजन आसानी से मिल रहा है। बारिश के दिनों में जब बाहर निकलना मुश्किल होगा, तब यही मेहनत काम आएगी। बच्चों कुछ महीने बाद जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। पूरे जंगल में पानी ही पानी भर गया। सभी रास्ते बंद हो गए और पेड़ पौधे पानी में डूब गए। तो बच्चों जानते हो, उस समय जो जानवर टीकू के मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद ही भूखे तड़पने लगे। उनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचा था। बच्चों तब टीकू ने देखा उसके दोस्त भूखा है और परेशान है, तो उसने दरिया दिल दिखाई। उसने अपने बिल में संभाल कर रखा हुआ अनाज निकाला और सभी जानवरों में बांट दिया। तभी सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने टीकू से माफी मांगी। बच्चों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय पर की गई कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है और आरे वक्त में सुरक्षा और सफलता दिलाती है। तो आप जाने ना, तो बच्चों हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए, हर काम करने का एक नियम बनाना चाहिए।

0: नियम के हिसाब से सारे काम को निपटाना चाहिए। अगर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर हमें पढ़ाई करने के लिए होमवर्क दिया जाता है तो हमें उसे बनाना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, क्योंकि यही मेहनत का फल आगे चलकर आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, साथ ही आपको एक उज्जवल भविष्य भी देगा। बच्चों, आलस छोड़कर समय रहते ही कदम उठाना ही बुद्धिमानी है। समय बहुत कीमती होता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो सफलता के मार्ग में बाधा बनता है। यदि कोई बच्चा, व्यक्ति या युवा वर्ग समय रहते आलस को त्याग दे और मन लगाकर पढ़ाई करे, या जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर बखूबी से करे, तो उसे न केवल ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि उनको सफलता भी मिलती है, भविष्य में उसका नाम रोशन होता है। बच्चों, अनुशासित रहकर ही की गई मेहनत जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलते हैं। तो आप लोग आलस कभी नहीं कीजिएगा, समय पर स्कूल जाइएगा, मम्मी पापा का कहना मानिएगा ना।
1: हाँ।

बच्चों जैसा कि हमने अभी जाना कि सही समय पर मन लगाकर पढ़ना ही सफलता की कुंजी है और ज्ञान की इसी दुनिया में आगे बढ़ने का पहला कदम है। अपने आसपास की दुनिया को जानना भी तो जरूरी है, तो अपने सोचने समझने के दायरे को बढ़ाते हुए नई चीजें सीखने का संकल्प लेते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। समान ज्ञान में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं। बच्चों आज हम एक स्वतंत्र और सुरक्षित देश में सांस ले रहे हैं, तो हमें उन महान नायकों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था, वे थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। बच्चों जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए मुस्कुराते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए थे, उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे ने पूरे देश के युवाओं में देशभक्ति का जुनून भर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, देश को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपनी वीरता से साबित कर दिया देश की रक्षा में भारत की स्त्रियां किसी से पीछे नहीं हैं। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से भारत को आजाद कराया। बच्चों स्वतंत्रता सेनानी केवल इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि देश प्रेम, अनुशासन और साहस क्या होता है। बच्चों आज के समय में हमारे लिए देश प्रेम का मतलब है मन लगाकर पढ़ाई करना, अपने देश को स्वच्छ रखना, नियमों का पालन करना, एक अच्छा नागरिक बनना, यही हमारा सच्चा कर्तव्य है। एक बेहतर इंसान और नागरिक बनकर ही हम देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं और इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों आप इसी तरह पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। बच्चों इसी वादे के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम फुलवाड़ी का समय यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी उत्साह, नए विषय और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ यानी मुझे दीजिए प्रेरणा को अनुमति। जय हिंद।

अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा कार्यक्रम फुलवारी सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण हेलो जिंदगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दरभंगा है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही पलों में कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है।

0: 2047 में हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां देश भर में अनेक दूरगामी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी को सशक्त भी किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि देश के समग्र विकास में क्या हमारी युवा पीढ़ी अपनी भूमिका को बखूबी समझती भी है? क्या विकसित भारत का लक्ष्य स्वीकार करने में हमारे युवाओं का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है भी? क्या हमारे युवा देश के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए उनका निर्वहन भी कर पा रही है? राष्ट्र के प्रति ये सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी यही युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने में अपनी विलक्षण प्रतिभा का लोहा भी मनवा रही है और जमीन से आसमान तक अपने असीम ज्ञान और क्षमता का पताका भी लहरा रही है। लेकिन अपने देश को विकास के शीर्ष तक ले जाने के लिए हमारी ये युवा शक्ति पूर्ण रूप से कार्यशक्ति में परिलक्षित हो, इसकी अभी भी काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवा चेतना को जागृत रखने का संकल्प दिवस। लिहाजा कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, आप श्रोताओं को उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दरभंगा जिला के युवा अधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर, माई भारत दरभंगा के। श्रोताओं, आज की हेलो जिंदगी में आप विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, मंतव्य भी दे सकते हैं, अमरेंद्र कुमार अमर से जानकारी और परामर्श ले सकते हैं। फोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर हम बताते हैं 06272222481, 06272222481। दूसरा नंबर है 9430029353, 9430029353, 9430029353। एक बार फिर से बता दें, विषय विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व, विशेषज्ञ अमरेंद्र कुमार अमर जी आज आमंत्रित हैं, स्टूडियो में हैं, माई दरभंगा के जिला युवा अधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर जी आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका स्वागत। पहली बार आप आए हैं, नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और धन्यवाद दरभंगा आकाशवाणी का जो मुझे आज आप लोगों ने आमंत्रण दिया, और मैं सभी श्रोता जो सुन रहे हैं अभी उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोगों की जो इश्यूज हैं, जो आप बताना चाहते हैं हमें, आज बताएं।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता जुड़ेंगे आपसे और सवाल भी करेंगे, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा होगी, अपना मंतव्य होगा, वो भी व्यक्त करेंगे। हमने फ़ोन नंबर भी बता दिए हैं, विषय भी बता दिया है, आपके बारे में भी बता दिया है, लेकिन एक साहसी जिज्ञासा हमारी भी है, हमारे श्रोताओं की भी होगी। आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में पहली बार आए हैं अमरेंद्र कुमार अमर जी, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं आप, ये सफ़र कैसा रहा है, संक्षेप में बता दें।
1: जी, मेरा घर समस्तीपुर बिहार का है, बिहार में ही है
0: जी।
1: और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10th क्लास तक समस्तीपुर से ही की है। उसके बाद मैंने 11th 12th झारखंड में एक स्कूल से किया। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया है IIT BHU से। उसके बाद मैंने फिर UPSC की तैयारी की, जिसके थ्रू मैं ये डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बना हूँ। और मैं बहुत ही नया हूँ इस जॉब में, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं।
0: अच्छा,
1: और ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं यूथ के साथ कुछ संवाद रख सकूं, उनके इश्यूज, उनके एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स को मैं भी साझा कर सकूं।
0: अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई आपकी समस्तीपुर से शुरू हुई
1: जी,
0: और फिर बढ़ते बढ़ते आप UPSC तक गए। हमारी शुभकामनाएं, सेवा में आप लगे हैं और आपने कहा कि अभी नया हूँ, तो नई पीढ़ी की ही बात हम कर रहे हैं और जो युवा हैं

0: जो नए हैं, नए संकल्प के साथ है, नई नए भारत की संरचना के लिए हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी जो है ना, वो आपसे जुड़ेगी और सवाल करेगी आपसे, और आपसे जो ज़रूरी बातें हैं उनके आगे बढ़ने में, देश को विकसित राष्ट्र का दर्जा तक ले जाने के लिए 65% की आबादी का आह्वान हम कर रहे हैं आज
1: जी, जी।
0: तो हम समझते, वैसे तो युवाओं को लेकर कहा जाता है कि 29 साल तक का की जो है वो युवा शक्ति मानी जाती है, एकदम जिसे प्रचंड तेज की बात हम कहते हैं वो
1: जी ऐसा हाँ। है नेशनल यूथ पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें 15 से 29 साल इनको प्रॉपर यूथ माना जाता है,
0: है ना, इसलिए मैंने ये बात कही। एक हमारे श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार,
2: मोहन पासवान, गांव बरसतपुर पोस्ट बुरा प्रखंड बहादुरपुर जिला दरभंगा बिहार भारत से ही बोल रहा हूँ सर।
0: जी मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: जिज्ञासा है सर कि विकसित भारत और पूर्ण विकसित भारत का स्वरूप जानना चाहता हूँ सर। और ऐसा है कि सर कितने पुराने मिल चलाने की योजना और कितने नए मिल, कितने प्रकार की खोलने की योजना है सर।
0: अच्छा,
2: भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए सर, हर दृष्टिकोण से सर। तीसरा है कि सर क्या विदेशी राजनीति भी पूर्ण विकसित भारत बनाने में बाधा हो रहा है सर? इस बाधा को दूर कर किसी किस बाधा को किस तरह से दूर किया जा सकता है सर, समाज देश के लिए सर। चौथा है सर कि पूरे दुनिया का लोग भारत देश के से शिक्षा और संपत्ति से पूर्ण विकसित बन गया सर, पर भारत में रहने वाले लोग और भारत देश अभी तक पूर्ण विकसित क्यों नहीं बन पाया सर? और है सर,
0: चलिए इतने सवाल आ गए
2: सर, हमारे देश के मजदूर किसान मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाकर नेताजी कर्मचारी भी अधिकारी पदाधिकारी मीडिया के लोग चाहते हैं पूरे विकसित भारत बने, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है सर? और है सर की खेत खलिहान से लेकर गोबर पाथने वाली महिला पुरुष के बच्चे से लेकर सभी धर्म वर्ग के लोगों को संवैधानिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत किया जाए तभी विकसित भारत को
0: चलेगा।
2: और है सर की युवा युवतियाँ अपने घरों खेतों से स्कूल कॉलेजों में पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त कर शिक्षित राज्य और शिक्षित राष्ट्र का दायित्व निभाया है, सरकार इस तरह के युवा युवतियों छात्र छात्राओं के लिए
0: क्या कर रही है,
2: अपना काम कर रही है और दायित्व निभा रही है?
0: सबसे बड़ा सवाल तो आपने ये कर दिया है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है, उसकी बात चर्चा करेंगे। मोहन पासवान जी, गुच्छे में आपने सवाल, तो सुनिएगा, कार्यक्रम में हो सकता है कि जितनी हम चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके समाहित हो जाएं, है ना।
2: हाँ,
0: तो कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने सारे सवाल एक साथ पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे मोहन पासवान जी, और हमारे दूसरे श्रोता जो जुड़ेंगे हम उनके भी कॉल लेंगे, है ना। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मोहन पासवान जी जब भी आते हैं कार्यक्रम में, एक दो नहीं गुच्छे में 3-4-5 सवाल कर ही लेते हैं। खैर, सवालों का ही ये कार्यक्रम है
1: जी।
0: इन्होंने पूछा है कि मूलतः बातें कि अभी तक हम अगर विकसित नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, और विकसित ही नहीं पूर्ण विकसित बन पाएंगे उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। एक तो ये है मानदंड, ये हमें जो लगा सवालों से जो बातें आई कि उसके मानदंड क्या होंगे। दूसरी बात कि कितने कल कारखाने जो पुराने बंद हो गए थे उन्हें खोलने की ज़रूरत है और नए कारखानों को बनाने की ज़रूरत है। और ये जो चिंता है मोहन पासवान जी की, वो इसलिए भी है क्योंकि अगर कल कारखाने खुलते हैं और पुराने कारखाने अगर उससे फिर से पुनर्जीवन दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो हमारे युवा हैं ना उनकी जॉब सिक्योरिटी उससे जुड़ी हुई है और देश आगे भी बढ़ता है
1: जी।
0: तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये सवाल कर रहे होंगे। और अभी जो नई बात ये है कि इस क्षेत्र विशेष में रैयाम का चीनी मिल
1: जी
0: और एक और चीनी मिल खोलने की बात हुई है, दो चीनी मिल।

0: सकरी का चीनी मिल जो बंद पड़ा था उसे फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये एक अच्छी बात है। एक और श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार, हेलो रेडियो जी, प्रणाम, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें और अपना नाम बताएं।
1: जी सर, मेरा नाम अरविंद यादव।
0: अरविंद यादव जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर दरभंगा जिला ग्राम सिहौल।
0: जी अरविंद जी, क्या जिज्ञासा है ये बताइए।
1: सर जिज्ञासा यही है कि हम बहुत दिन से बचपन से रेडियो में जुड़े हुए हैं, मगर आपको हम संदेश नहीं पहुंचा सके, हम सब मूर्ख आदमी हैं। हम
0: नहीं, अभी क्या कहना, आज जो कार्यक्रम है युवा शक्ति को लेकर के, उसमें अगर आप आपकी कोई जिज्ञासा है तो बताइए अरविंद यादव जी।
1: जी जिज्ञासा ये है कि जो भी कार्यक्रम था उनको भगवान और आगे बढ़ाए।
0: अच्छा, शुभकामना आप व्यक्त कर रहे हैं, है ना, युवा पीढ़ी के लिए। जी चलिए, हमें अच्छा लगा कार्यक्रम में आपका फोन आया, कम से कम आप चाह रहे थे कि बहुत दिनों से कोई फोन लग नहीं रहा है कार्यक्रम में और कोई संवाद हम नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद जी बहुत बहुत नमस्कार। तो अरविंद जी की जिज्ञासा यही है कि हमारी शुभकामना है कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और काम करे। आ जाते हैं उस सवाल पर, जब हम युवा कहते हैं ना
2: जी,
0: अमरेंद्र कुमार अमर जी, तो युवा कहने के साथ क्या अभिप्राय होता है? आपने कहा कि सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उसके मुताबिक 15 से 29 साल जो है उसे हम कह सकते हैं कि युवा हैं
2: जी,
0: है ना
2: जी।
0: और वैसे 65% लोगों की संख्या जो है वो 35 साल से नीचे तक की है
2: जी,
0: तो ये तो बड़ी शक्ति है
2: जी। ऐसा है
0: हाँ,
2: कि युवा शक्ति जब हम लोग बोलते हैं या
0: हाँ,
2: युवा जो बोलते हैं, तो जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि जो युवा की ऊर्जा है, जो ड्रीम है और एस्पिरेशंस हैं, जो आज के युवा हैं यही तो लीड करेंगे जब 2047 में हम लोग विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करेंगे।
0: अच्छा, अच्छा।
2: वो चाहते हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है सारे युवाओं से कि युवा अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, संभालेंगे अगर, तो वो जो लीडर बनेंगे आगे चल के, आगे 15-20 साल में अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ पे भी रहेंगे पोजिशन में एक लीडर रहेंगे, डिसीजन मेकर रहेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस होल कंट्री। और अगर युवा अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी 65% जनता युवा है, अगर ये चंक जो है ये अगर डेवलप करती है तो पूरा देश, पूरा बिहार, उनका समाज सब डेवलप करेगा।
0: सही बात है। और देखिए कि सरकार ने शिक्षा का क्षेत्र
2: जी,
0: क्योंकि शिक्षा तो इनिशियल है ना
2: जी, जी
0: वहीं से शुरुआत होती है
2: जी,
0: तो शिक्षा का क्षेत्र हो, और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक वहाँ कार्य करने की ज़रूरत है
2: जी,
0: वहाँ भी काम किया गया है, कौशल विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, उद्यमिता पर जोर दिया गया है
2: जी,
0: खेल जैसा क्षेत्र
2: जी,
0: जिसे कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब
2: जी,
0: है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में हमने 4th स्थान प्राप्त किया, इतने सारे मेडल्स आए, देश का नाम गौरव बढ़ता है इससे, और खेल में आगे बढ़ने से रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं
2: जी।
0: ये भी बात है कि अगर वहाँ हम कुछ करते हैं, मानक स्थापित करते हैं, तो देश भी हमारे लिए कुछ सोच के रखे हुए हैं, ये भी बात है। तो जो जहाँ है स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह जहाँ भी युवाओं की भागीदारी है, वो सारी चीज़ें एक पहल के तौर पर शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारी बातें हैं, आज वो सब बात करेंगे।
2: एक चीज़ हाँ, बताना चाहता हूँ, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जैसे आपने बात की, तो इसमें हमारी सरकार ने एक नया मतलब एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हम लोग स्किल की बात करते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो हमारी स्कूल में या शिक्षा में एब्सेंट थी पहले, लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे फ़ायदा होगा यूथ को कि अगर वो मार्केट में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाते हैं, तो उनको पहले से ही आइडिया रहेगा कि किस टाइप के उनके पास क्षमता है, किस टाइप की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिससे वो ईजिली जॉब फाइंड कर सकते हैं।
0: सही बात है। और ये जो है ना, छोटी जो उम्र होती है ना
2: जी,
0: उसे कहा जाता है कि वो मिट्टी का जो बर्तन तैयार

0: जो करते एक सांचे में डाल करके
1: जी।
0: वो उसे माना गया है कि अगर वहीं हम शुरुआत कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है
1: जी जी।
0: और हम समझते हैं कि देश कुशल बने
1: जी
0: इसके लिए कौशल विकास की आवश्यकता महसूस की गई
1: जी।
0: और उस पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आज हम जब बात करते हैं युवा शक्ति की
1: जी,
0: है ना, हमने उम्र की चर्चा की, लेकिन युवा शक्ति की भी चर्चा, अगर उम्र है 65% की आबादी 35 साल से नीचे की है, लेकिन वो युवा शक्ति देश निर्माण में नहीं लगी हुई है, तो ऐसी शक्ति का हम करेंगे क्या
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: भी तो बात है ना
1: जी।
0: तो उस तरह से जब हम कहते हैं कि युवा इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, तो उसे हम कैसे माने, क्या परिवार समाज देश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है,
1: जी
0: किस
1: जी
0: तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं आप अमरेंद्र कुमार अमर जी?
1: युवा के पास जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, ये हम लोग भी मतलब देखते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आने स्टार्ट हो जाती है, हमारा हेल्थ थोड़ा ख़राब होने लगता है। लेकिन जब हम लोग युवा हैं, वी कैन अचीव आवर हाइस्ट पोटेंशियल, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता, ये सब पीक पे रहती है।
0: जी
1: और इस एज में अगर युवा कोई अपना काम करते हैं, कोई इंटर्नशिप, कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई उद्योग स्थापित करते हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत दूर आगे तक ले जा सकते हैं। आप देखिए आज जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं मोस्टली यंग लोग कर रहे हैं, चाहे आप पीयूष बंसल जी का देख लीजिए लेंसकार्ट है, चाहे आप US वगैरह में देख लीजिए सैम अल्टमैन ने जो OpenAI का किया है। तो ये एज है सबसे अच्छा जिसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप इनोवेटिव हो सकते हैं, और यही जो क्षमता है युवाओं की, इसी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है कि अगर युवाओं को अगर अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए तो वो अपनी इस ऊर्जा का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, जिससे कि वो अपने परिवार का भी कल्याण कर सके और ओवरऑल पूरे देश का भी कल्याण कर सके।
0: अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे युवा हैं
1: जी,
0: अगर उन्होंने मानक स्थापित किए हैं
1: जी,
0: है ना, तो वो तो इंस्पायर्ड है ना कहीं से
1: जी जी,
0: तब किए हैं
1: जी।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा आपने की
1: जी,
0: वो भी युवाओं से इंस्पायर्ड होते हैं
1: जी।
0: अक्सर वो कहा करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से कार्य कर रही है
1: जी,
0: तो एक इंस्पिरेशन हमें भी प्राप्त होता है। उस अगर हम प्रधानमंत्री जी की उम्र को लेकर अगर कहें
1: जी,
0: तो देखिए एक व्यक्ति इस देश में जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो अपनी युवा पीढ़ी के साथ किस तरह से संवाद करते हैं वो
1: जी,
0: है ना, और युवा पीढ़ी किस तरह से उनके साथ जुड़ती है, ये एक द्योतक है कि आज युवाओं की जो क्षमता है वो कहाँ जाने वाली है, और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है वो ज़रूर हम हासिल करेंगे ऐसा हम कह सकते हैं जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अक्सर हमने देखा है ये भी सुनते हैं समाज में कि सरकार जो है सारी चीज़ें हम सरकार पर छोड़ देते हैं
1: जी,
0: है ना, कहते हैं कि ये काम सरकार का है
1: जी,
0: तो सरकार जाने, यानी सरोकार रखे सरकार अपना, मेरा क्या है
1: जी जी।
0: क्या ये सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए सही है? सही तो नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सवाल है।
1: देखिए कोई भी समाज, देश या परिवार,
0: हाँ,
1: इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आप परिवार का ही एक एग्जांपल लेते हैं
0: जी,
1: मान लीजिए कि वहाँ पे माता पिता, दादा दादी और बेटा और बेटी, सबका कुछ ना कुछ दायित्व है। अगर सब मिल के काम करते हैं तभी परिवार ऊपर जाता है। इसी तरह नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सरकार एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही है। बट एज ए यूथ और एज ए पब्लिक, जो हम लोग कॉमन सिटीजन है इस इंडिया डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, उसमें हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी उस अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से लें और हमसे जो हो रहा है हम उसमें सरकार को हेल्प करें ताकि उनका जो ये सब इनिशिएटिव है वो 100% कम्प्लीट हो। तो बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसके बारे में अच्छे से जानें, उनके बारे में परखें अच्छे से, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लें और उसमें अप्लाई करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। तो स्टेक होल्डर हम भी हैं, ये सिर्फ सरकार ही एक मतलब सिर्फ उनका अकेले का काम नहीं है। आप एज ए सिटीजन हम लोग भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो हमें भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो
0: एक जो दिक्कत है अमरेंद्र कुमार जी, वो दिक्कत ये है कि युवाओं में खास करके जो एक परंपरागत बातें आती रही है हमेशा कि पढ़ाई का मतलब नौकरी करना है
1: जी,
0: नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी करना है
1: जी,
0: है ना, एक तरह से अपने को स्थिर कर लेना कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सफल हैं
1: जी।
0: ये जो एक

0: मानसिकता बन गई दशकों से
1: जी,
0: क्या इसको बदलने की जरूरत है? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है हमारी आबादी के हिसाब से। जब हम सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश अपने को घोषित करते हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए अमरेंद्र कुमार अमर जी कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी हम ही हैं।
1: जी जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो इसे भी स्वीकार करना होगा। और ऐसे में ये सवाल बहुत दीगर है
1: जी,
0: कि हम सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे कि सरकार की तरफ से ही सिर्फ नौकरी हो तो क्या ये संभव है? दूसरी बात, रोजगार के जो अवसर हैं वो खुले हुए हैं
1: जी।
0: और पिछले अगर हम चर्चा कर लें 10-12 साल की, तो ये जो अवसर हैं उसके पैमाने बदल गए हैं
1: जी,
0: है ना। अब जो नई पीढ़ी है वो कंपनियां खोल रही हैं
1: जी जी,
0: रोजगार करने वाली बात नहीं है यहाँ, नौकरी करने वाली बात नहीं
1: है,
0: रोजगार देने वाली बात हो रही है और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: तो उस सोच का हम क्या करें, उन्हें अब क्या कहेंगे जो इस सोच के तले हैं, दबे हुए हैं?
1: देखिए मेरा ऐसा है कि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उनके पास लिमिटेड बजट रिसोर्सेस हैं, तो इतना ज़्यादा जितने यूथ हमारी पॉपुलेशन है उन सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना अपनी तरफ से, सरकारी नौकरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा भी है कि यूथ शुड, टूडेज यूथ शुड बी ए जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर, मतलब उन्हें जॉब खुद से क्रिएट करना है ना कि जॉब खोजना है, ताकि वो जॉब क्रिएट करें, कोई स्टार्टअप, कोई इंडस्ट्री खोलें, छोटा माइक्रो इंटरप्राइजेज खोलें, चाहे ताकि वो खुद से ही 10-50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार दे सकें।
0: एक और बात है
1: जी,
0: किसी काम को छोटा,
1: हाँ नहीं,
0: किसी काम को बड़ा समझ लेने की जो मानसिकता है ना
1: जी,
0: वो भी कहीं पीछे ले जाती है लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को। एवरी वर्क इज वर्क टू नेशन
1: जी,
0: हर काम आपका देश के लिए होना चाहिए और ऐसा मान के चलना चाहिए।
1: जी जी,
0: अगर हम ऐसा सोच लें कि हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं
1: जी,
0: तो पहली बात कि गलत काम करना ही आप बंद कर देंगे अगर देश प्रेम है तो
1: जी,
0: देश से आप अपना लगाव रखते हैं, देश के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम है
1: जी,
0: तो फिर वो काम आप करेंगे क्यों
1: जी।
0: दूसरी बात, देश को आगे बढ़ाना है तो अपने बारे में क्या सोचना है
1: जी,
0: जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया
1: जी,
0: खुद भी
1: जी,
0: परिवार के परिवार तबाह हो गए
1: जी,
0: उसने अगर ये सोचा होता है कि हमें क्या मिलेगा
1: जी,
0: तो क्या करते, वो कुछ कर नहीं पाते। एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: जी धन्यवाद, आपको भी नमस्कार।
0: हाँ, उनकी तरफ से भी नमस्कार निवेदित हो गया है। अपना नाम बता दें।
2: महाकांत सिंह हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर।
0: महाकांत सिंह हनुमानगढ़ राजस्थान से, है ना?
2: राजस्थान से।
0: जी बताया जाए, क्या जिज्ञासा है?
2: जिज्ञासा तो यही है सर कि युवा भारत 65% युवा है अपने देश में। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का नारा दे रहे हैं।
0: सही जी,
2: सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम जो भी युवा है उनको खुद सशक्त होना पड़ेगा। और रोजगार सरकार के पास नहीं है तो छोटी मोटी रोजगार खुद चालू करें, गांव में देखते हैं कि ताश खेल खेल के टाइम पास कर रहे हैं
0: जी।
2: चिंता से तो हमारा देश विकसित भारत नहीं बनेगा।
0: चिंता आपकी सही है, बात सही है। हाँ ये बात तो है। महाकांत सिंह जी, अमरेंद्र जी, महाकांत सिंह जी कह रहे हैं कि गांव देहात में लोग ऐसे बैठे हुए हैं, समय काट रहे हैं, ऐसी युवा पीढ़ी क्या विकसित भारत तक देश को पहुंचा पाएगी, ये चिंता है इनकी।
1: जी ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि बहुत सारे यूथ अपने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो किसी और चीज़ में उस टाइम को व्यतीत कर रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन वही रहेगा कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने राजस्थान से कॉल किया है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग का बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे, स्कीम होंगे, जो ऐसे यूथ हैं जो स्कूल से बाहर हो गए हैं, चाहे उनके पास अभी जॉब नहीं है, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव रहते हैं, स्कीम रहते हैं, चाहे उनको किसी कौशल विकास केंद्र में कुछ स्किल्स सिखा दिया जाए ताकि वो आगे चल के कुछ एम्प्लॉयमेंट ले सकें।
0: सही, ये भी बात है। आप इन्होंने एक और सही बात कही है कि सरकार के पास में जादू की छड़ी नहीं है
1: जी,
0: लेकिन मैं मानता

0: हूँ कि जादू की छड़ी है
1: जी जी है,
0: है ना
1: जी।
0: और जादू की छड़ी काम भी करती है
1: जी,
0: लेकिन ये छड़ी उन लोगों पे काम नहीं करती है,
1: जी
0: है ना, जो कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं, है ना, जो लोग देश को नहीं आगे ले जाना चाहते उस पर क्या काम करेगी। लेकिन काम जादू की छड़ी तो है और जादू की छड़ी चल भी रही है
1: जी।
0: स्किल इंडिया है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: सशक्त भारत को बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम है, नई शिक्षा नीति आई है
1: जी।
0: साल में 2 बार 3 बार आप एडमिशन ले सकते हैं
1: जी,
0: इतनी सुविधा हो गई, इतनी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी उसमें
1: मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है,
0: बिल्कुल मल्टीपल, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, छूट गई, दोबारा से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, विषयों का जो परिवर्तन है वो आप बीच में कर सकते हैं, इस तरह की शिक्षा नीति आई है। यानी कहीं से भी अब किसी ने भाई अपने अभिभावक के दबाव में अमरेंद्र जी मैथमेटिक्स का चुनाव कर लिया
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: बाद में लगा कि नहीं ये गलत राह हमने पकड़ ली है
1: जी,
0: तो आपकी डिग्री जहाँ तक आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा
1: जी जी,
0: है ना, ऐसा नहीं है कि आपने क्यूट कर लिया, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की तो वो किसी काम का नहीं है
1: जी,
0: क्रेडिट
1: जी, क्रेडिट मिलेगा,
0: क्रेडिट स्कोर
1: जी,
0: इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है अमरेंद्र जी, क्या बताएं, ये जादू की छड़ी नहीं तो और क्या है, इसलिए मैंने कहा कि जादू की छड़ी है सरकार के पास में और वो पूरा का पूरा फायदा देने के लिए तैयार है। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव के 231.5 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व है। बतौर विशेषज्ञ माई भारत दरभंगा के जिला युवा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अमरेंद्र कुमार अमर जी आज आमंत्रित हैं हमारे स्टूडियो में। आप युवा श्रोताओं से संवाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी युवा शक्ति जो है वो जुड़े हमसे, हम आह्वान करेंगे और कार्यक्रम में जो विषय है विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व है, तो उसमें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के भी एक दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है तो
1: जी,
0: है ना। हमारा जो ये कार्यक्रम है अमरेंद्र जी वो इसी के लिए है
1: जी,
0: ताकि लोग अपनी अपनी समस्याएं बताएं
1: जी,
0: जो विषय है उससे संबंधित, और हम विशेषज्ञ को यहाँ आमंत्रित करते हैं ताकि हमारे श्रोता उनसे जुड़ें और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके जो भी है समाधान के उपाय वो उनको मिल जाए घर बैठे
1: जी, जी।
0: ये इतनी व्यवस्था हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है। आकाशवाणी दरभंगा का ये कार्यक्रम लगातार हम श्रोताओं के हित में प्रसारित कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में जो श्रोता जुड़ना चाहें तो 9430029 इस नंबर पे, दूसरा नंबर है 0627222481 0627222481। कार्यक्रम हेलो जिंदगी, विषय विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व है। श्रोताओं जुड़िएगा, 12 बजे तक का समय है इस कार्यक्रम का, अभी भी बहुत सारा समय है बाकी। युवा पीढ़ी की बातें जहाँ तक हैं, एक चर्चा हुई थी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें आकांक्षाएं तो बहुत हैं
1: जी,
0: आसमान को छू लेने की
1: जी,
0: है ना, लेकिन कई बार बहुत सारे अवरोध होते हैं उनके रास्ते में
1: जी।
0: ये अवरोध कैसे होते हैं ये बताएं, पहली बात, आपसे मिलते होंगे युवा
1: जी जी,
0: माई भारत में आप भले आपने कहा कि मेरा सेवा काल अभी नया मतलब कम दिनों का है
1: जी,
0: लेकिन आप युवा हैं
1: जी,
0: अमरेंद्र कुमार अमर जी,
1: जी
0: आप स्वयं भी युवा हैं, तो युवाओं की जो दिक्कतें हैं उससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। आप क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारी जो युवा आकांक्षाएं हैं क्या वो आकांक्षाएं ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, कहाँ कहाँ उन्हें लगता है कि अवरोध है, कहाँ कहाँ उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं ऐसा उन्हें लगता हो, भले वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं कार्यक्रम में, एक श्रोता जुड़े हैं, चलिए जुड़ तो गए हैं तो उनसे बात करें। जी नमस्कार, हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें तो हमें सहूलियत हो जाएगी, अपना नाम बता दें।
2: सर हम दरभंगा के गांव की तरफ से बोल रहे हैं
0: जी, क्या नाम हुआ आपका?
2: मधुकांत
0: जी, मधुकांत जी बताइए क्या जिज्ञासा है मधुकांत जी।

0: जिज्ञासा सर युवाओं की आकांक्षाएं तो अनेक प्रकार की होती है, उनको पूरा करना सरकार की बात हो या आम पब्लिक की बात हो, वो सब तो बहुत दूर की बातें होती है
1: जी।
0: युवा खुद अगर मेहनत करे, अपने आप पर भरोसा करे, उसी को लेकर चले तो भविष्य बन सकता है।
1: मधुकांत जी आप क्या करते हैं?
0: हम तो खेती किसानी कर रहे हैं सर।
1: खेती किसानी का काम करते हैं, अच्छा
0: जी, जी, जी।
1: क्या उम्र है आपकी?
0: उम्र 54 साल के लगभग है सर।
1: देखिए आपने जो बातें रखी हैं युवा आकांक्षा को लेकर, आपने कहा है कि अगर मेहनत करे युवा और भरोसा रखे खुद पे तो कोई भी मुकाम वो हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे अमरेंद्र जी?
0: जी जी सही बात है सर।
2: जी मैं सबसे पहले आपको नमस्कार बोलता हूँ, नमस्कार कहना चाहता हूँ जी। आपने एक अच्छा बात बताया कि युवा अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी तो बदल ही सकते हैं, देश की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ये ऐसा है कि अगर युवा की क्षमता, युवा की जो ऊर्जा होती है, अगर उसको लेकिन सही डायरेक्शन में उन्हें लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है जी जी, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स इनिशिएटिव है वो रहती है कि युवाओं को रोज़गार, उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इन सब में उन्हें लगाया जाए। और हमारा हमेशा युवाओं से ये अनुरोध रहता है कि ये जितनी भी स्कीम्स इनिशिएटिव हैं उनमें वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं, दूसरों को लोगों को भी बताएं, ताकि उनका भी विकास हो। और ये जो विकास जो होगा उनका, वो कंट्रीब्यूट करेगा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मधुकांत जी कार्यक्रम सुनने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कोई और सवाल? अच्छा अच्छा नहीं, आपका मत कहिए, ये आपका है आप श्रोताओं का कार्यक्रम है, आप कहें कि हम अपना कार्यक्रम सुनते रहते हैं, है ना जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देखिए आकांक्षाएं बढ़ी हैं
2: जी,
1: है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं की गई है
2: जी।
1: अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आप देख लें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारे इंस्टीट्यूट्स खोले गए, कई तरह की कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, और जो चीज़ें जहाँ थी उससे बेहतर होकर के सामने दिखाई दे रही हैं आज
2: जी,
1: है ना
2: जी।
1: इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी चर्चा जारी है। एक और श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार। हेलो,
3: नमस्कार श्रीमान
1: जी। नमस्कार, अपना नाम बता दें।
3: मैं राम कुमार शाह से बोल रहा हूँ।
1: राम कुमार शाह जी, क्या निवेदन है, क्या जिज्ञासा है?
3: जिज्ञासा बहुत हो रहा था सर, भारत को विकसित भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, है ना, लेकिन वहाँ तक बढ़ने की तो चाह है भारत सरकार की, इसमें युवाओं का जो दायित्व है ये प्रमुख स्थान रखता है। जैसे जितने भी महापुरुष होते हैं, अरविंदो हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या जयप्रकाश हो, तो वो सब अपने युवा अवस्था में ही बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, अच्छे काम कर चुके हैं।
1: सही बात है।
3: और उसी प्रकार अभी वर्तमान में जो युवा है वो विकसित भारत का लक्ष्य हमें लगता है तभी प्राप्त कर सकते हैं, अपने में मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज है, अनुशासन है, प्रेम है, सहानुभूति है, ये सब ऐसे मानवीय मूल्य है, इनको उन्हें अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो नई तकनीक है
1: जी हाँ,
3: उस नई तकनीक की जानकारी और उसके प्रेरण कराए युवा में अपने मानव दायित्व बोध कराया जा सकता है, और करें और इसी के बदौलत भारत भारत को लक्षित बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राम कुमार शाह जी, और हम समझते हैं एक बात। लेकिन राम कुमार जी, आपने जो बात कही कि 2047 लक्ष्य तो है विकसित भारत बनने का, लेकिन लक्ष्य नहीं भी है, ये आपने कही है क्या ये बात? लक्ष्य तो है लेकिन लक्ष्य लगता है नहीं।
3: हाँ,
1: मतलब शंका बनी हुई है।

0: है कि ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के बात तो सही है, लेकिन देखिए 2000
1: पूरा तो होना ही है, युवा
0: अच्छा,
1: है तो पूरा तो होना ही है।
0: देखिए 1900
1: आधार क्या रहेगा,
0: हाँ आधार क्या रहेगा ये बात है। 1947 और 2047 100 साल किसी भी जिस गुलामी जिस परतंत्रता से हम बाहर निकल कर के आए और हमें विकसित होने में अगर 100 साल का समय लगा तो ये भी कम नहीं है, ये बहुत लंबा समय होता है आज के समय में। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास क्या चीज़ें थी और आज क्या चीज़ें हैं, है ना। हम ये अभी यही चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितने परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा का, है ना, उसका उसका हम क्या कर रहे हैं, कैसे कार्य योजना तैयार हुई है। अमरेंद्र जी बता रहे हैं, सुनिएगा रेडियो पर। राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम सुनने के लिए और कार्यक्रम में फ़ोन लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी, नमस्कार नमस्कार।
2: जैसा राम कुमार जी बोल रहे थे कि ये जो टारगेट है हमारा 2047 तक का, इसको अचीव करने का तो शुरुआत तो हो चुकी है। ये 2022 में हमारा ये लक्ष्य रखा गया था और आप जैसे देखिए आज कि हम लोग वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। एप्पल की जो मोबाइल फ़ोन्स आती है उसके जो अलग डिवाइसेस होते हैं 50-60% 40% इंडिया में बन रही है, उसको देखिए अलग से। उसके ऊपर से हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है जो सारे स्टेट्स में आ रही है, इसके भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज उद्योग ये सब खुले गए हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रेंथन हो रही है। आप एग्रीकल्चर में आइए, आप अभी एक श्रोता थे वो फार्मर थे मधुकांत जी,
0: जी जी
2: आप आज देखिए हमारे बिहार में ही नई नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, लोग ऐसे फ्रूट्स ऐसे फसल उपजा रहे हैं जिनकी जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो इससे फार्मर्स की भी जो इनकम है वो बढ़ रही है। तो
0: एक और श्रोता जुड़ गया जी, जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। पहले रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है आपसे संवाद करने में। जी नमस्कार, जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज़ तो आ रही है, दोबारा से कॉल लगा लेंगे। ये बात तो सही है अमरेंद्र जी, कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हमने बहुत सारे मानक बनाए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ही बात नहीं है, संभवतः 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि सिर्फ कुछ पढ़ाइयाँ कर लेनी मेडिकल की या इन सब चीज़ों की वही नहीं है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि फिल्म एनिमेशन का जो काम है वो दुनिया की जो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं उसके उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है
2: जी जी
0: वो 60-65% एनिमेशन का काम अपने देश भारत में हो रहा है।
2: जी जी,
0: अब समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में एनिमेशन का काम, फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम, साउंड मिक्सिंग का काम, एनिमेशन का काम, ये काम जो है अगर हॉलीवुड की अच्छी अच्छी फिल्मों की, अवतार फिल्म की मैंने बात सुनी, इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों की जो है पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो अगर यहाँ पर हो रहा है, मतलब देश में हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात है और उस क्षेत्र में भी लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ कृषि का जो क्षेत्र है उसमें भी आगे जाने की बात है, नई पीढ़ी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाई सिर्फ दो है, बीटेक कर लें या फिर मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें। आमतौर पर जो धारणा बनी हुई थी अपने देश में इंजीनियर और डॉक्टर की, इसके इतर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, अभी भी जितने थे उससे बहुत ज़्यादा खुले हैं।
2: मैं खुद
0: एक और श्रोता जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो जी, अपना नाम बताएं।
3: मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी किशन कुमार मंडल जी बताइए।
3: सर युवा पीढ़ी सब गांव से बाहर के पढ़ाई लिखाई कर करके रोजगार नहीं मिलते, सब चला जाते।
0: अच्छा, पलायन की बात आप कर रहे हैं ना, युवा पीढ़ी, हाँ युवा पीढ़ी का पलायन बहुत ज्यादा गांव से हो रहा है।
3: गांव भर में नौकरी नहीं होती है, कोई ये नहीं होते, काम नहीं होते, सब बाहर जा रहे हैं गांव बोलकर।

0: इसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार गवर्नमेंट साहब
1: जी,
0: दूसरे राज्य मुंबई दिल्ली कोलकाता अन्य राज्य भी जा रहे हैं।
1: हाँ, हम समझ गए आपकी बात किशन कुमार मंडल जी। आप किशन कुमार मंडल जी का कहना है कि गांव की जो युवा पीढ़ी है
2: जी,
1: वो गांव के कार्य नहीं आ रही है, वो बाहर जा कर के काम, यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है और उन्हें बाहर का अन्य राज्य का जो है वो रास्ता करना पड़ता है
2: जी।
1: तो क्या ये सही है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इससे जो अपना प्रदेश है जहाँ से वो जाते हैं उनका विकास अवरुद्ध नहीं होता है क्या
2: जी? ऐसा है कि अब बिहार में डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, जो हमारे यूथ जो जा रहे हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, वो एक इशू है बहुत दिनों से, बहुत सालों से हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग अनस्किल्ड लेबरर हैं जो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी कोई ऐसा काम करते हैं जिनकी जिनमें इनकम कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है। बिहार, हमारी बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बहुत सारी पॉलिसीज आए हैं कि अब ये जो यूथ जो बिहार से जाएंगे इनको पहले ही कोई ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वहाँ अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ऐसे जॉब पा सकें जिनमें इनकम ज़्यादा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा हो। अब सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, हमारे बिहार से जो आईटी इंजीनियर जाते हैं, जो सिलिकॉन वैली बना रखे हैं, सारे इंजीनियर डॉक्टर एकदम स्किल्ड लेबर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी। तो हमें उन्हीं से सीखना चाहिए कि बिहार में भी जो यूथ बाहर जाएँ वो अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी सर्टिफिकेशन डिग्री के साथ जाएँ, ताकि वो अच्छी जॉब पा सके स्टेट।
1: किशन कुमार मंडल जी, हमें लगता है कि आप संतुष्ट होंगे जवाब से, है ना
0: जी?
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। देखिए ये तो बात है, स्किल इंडिया जो है
2: जी,
1: वो इस वजह से भी, देखिए बहुत सारी योजना है गांव में, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी विश्वकर्मा योजना है
2: जी, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें उन्हें सहायता दी जाती है कुछ राशि की, ताकि वो अपना एक माइक्रो एंटरप्राइज कुछ खोल सके, अपना एक छोटा सा इंटरेस्ट स्टार्ट कर सके कुछ।
1: सही बात है। और हर जिला में ITI सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर के जो लोग फिटिंग का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, लकड़ी का फर्नीचर का काम करते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, वो टेक्निकली अपने को वो फिट बनाएं
2: जी।
1: और न सिर्फ गांव, न सिर्फ अपना ज़िला, न सिर्फ अपना प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी बढ़िया काम कर सकते हैं वो
2: जी।
1: ऐसा तो है नहीं कि अब जब एक बार डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट करने का मतलब स्किल डेवलपमेंट वो हो जाए, तो फिर आपके पास काम तो काम ही है।
2: और एक चीज़ और मैं आपके मंच से साझा करना चाहता हूँ अपने युवाओं से, कि हम अब के जो युवा हैं, जो जेंजी जिनको कहते हैं, चाहे जो अभी 20 से 30 साल के बीच में हैं, इन्हें अब ITI में जो आपने जितने नाम लिए, वेल्डिंग, कारपेंटरी, ये सब तो मतलब हो ही रहे हैं और ये पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन अब हमारी सरकार चाह रही है कि एक नया चीज़ जैसे IT रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब भी युवाओं को सिखाया जा सके, ताकि वो अच्छी जॉब पा सकें। जैसे हम लोग बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब IT कैपिटल कहे जाते हैं, जहाँ पे अभी मोस्टली IIT IIM यहीं से इंजीनियर से आ रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज, रूरल एरियाज हैं, यहाँ से भी हमारे यूथ ये सब सीख के जा सकें, ताकि उन्हें भी वो कम्पीट कर सके और वो वहाँ जॉब पा सकें।
1: स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, उनकी एक उक्ति याद आ रही है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी विचार को किनारे रखो, सफल होने का यही तरीका है
2: जी।
1: एक बार टारगेट अगर आपने फिक्स कर लिया
2: जी,
1: कि हमें ये काम करना है, तो युवा शक्ति जो है, युवा पीढ़ी, एक बार तय कर ले मुट्ठी बांध कर कि हमें 10 सेकेंड में इतने मीटर दौड़ लगानी है
2: जी,
1: तो लगाती है कि नहीं लगाती है बताइए?
2: जरूर
1: लगाती है ना।
2: और हमारे अभी गेम्स जो हुए हैं उसमें मेडल्स आए हैं,
1: तो इच्छा शक्ति की बात है
2: जी।
1: और इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, हतोत्साह नहीं होना है
2: जी,
1: उम्मीदें नहीं खोनी है
2: जी,
1: है ना। थक जाए जरूर
2: जी,
1: लेकिन हौसला बना रहे
2: जी, जी
1: इसका ख्याल रखना है। एक और श्रोता जुड़े जी, नमस्कार, हेलो
0: जी, सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ ईश्वर
1: जी, एक बार फिर से अपना नाम बता दें, सीतामढ़ी से कौन?
0: बेच शुएब, बेच शुएब।
1: हम

0: आपका नाम सही ढंग से सुन नहीं पाए।
1: मोहम्मद शोएब।
0: मोहम्मद शोएब जी, मोहम्मद शोएब साहब सीतामढ़ी से, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: दो सवाल है सर। सवाल यह है कि मैं विज्ञान जन हूँ 100% आई।
0: अच्छा अच्छा,
1: विज्ञान जन के लिए कोई प्रोग्राम आप नहीं करते हैं, वो कीजिए। दूसरी बात ये कि युवा शक्ति बेचारे काम सीख लेते हैं लेकिन रोजगार है भी, तो जानने वाले लोग उनके समर्थन नहीं करते हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, उनको बताते नहीं है।
0: अच्छा।
1: जो सरकारी फंड में जो चले गए हैं वो तो समझ रहे कि बस मेरे खुदाई यही तक।

0: रहे भी तो जानने वाले लोग उनके समर्थन नहीं करते हैं, उनके हौसला अफजाई नहीं करते, उनको बताते नहीं है। अच्छा। अब जो सरकारी फंड में जो चले गए हैं वो तो समझ रहे कि बस मेरे खुदाई ही जरूरत है। तो ये उन लोगों को हेल्प करना चाहिए जो लोग बेचारे पिछड़े है, जो ब्लॉक जिला तक रसाई नहीं है, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए।
1: मोहम्मद शोएब साहब, आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये कि आप दिव्यांग हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपने फ़ोन लगाया है, है ना? आप देखने की शक्ति आपके पास नहीं है, लेकिन इतनी आत्मशक्ति है आप हमसे जुड़ पाए हैं और उन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनके पास नेत्र ज्योति है लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से। और जो चिंता आपने कही है ना कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर हैं लेकिन लोग नौकरी तक ही सीमित हैं और भी अवसर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, संभवतः यही आप कहना चाह रहे हैं शोएब साहब। अमरेंद्र जी बेहतर बताएंगे आपको। अमरेंद्र जी
2: जी नमस्कार। मोहम्मद शोएब जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने कॉल किया, और आपका जो क्वेश्चन है रोज़गार के बारे में और जो दिव्यांगजन है उनके स्कीम्स के बारे में, तो अब हमारे मोस्टली बिहार गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं चाहे दिव्यांगजन है, उनके लिए रिजर्वेशन रहती है जॉब में, एम्प्लॉयमेंट्स में, जो आपको पता होगा। फिर हमारे एक है सुगम नीति है, सुगम एक स्कीम है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए मतलब उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और रोज़गार के बारे में जैसा आपने पूछा कि आप लोगों को स्कीम्स वगैरह की जानकारी नहीं होती है बहुत सारे लोगों की, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कीम, अब तो हम लोग डिजिटल युग में रहते हैं, हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है, जैसे माई गोव एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मेरा युवा भारत वो भी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कोई अगर आप लोन लेके कोई माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो, सारी जानकारी वहाँ रहती है। आप अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्यालय भी जाइए तो वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड वगैरह पे बहुत सारे इन सब जितने अपॉर्चुनिटीज हैं उनका अच्छे से जानकारी रहती है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब जानकारियों का पता कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं।
1: जरूर सराख, आपका आग्रह सराखों पर जरूर करेंगे और हमें खुशी होगी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो है, जो इस देश का नागरिक है, वो इस देश का हिस्सा है और बगैर उसके देश न खड़ा हो सकता है न चल सकता है
2: जी,
1: है ना? और कभी भी अपने को कमतर करके आंकना भी सही नहीं है
2: जी, जी,
1: है ना? अगर एक शक्ति नहीं है तो दूसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हमारे में निहित हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हृदय से आभार भी। हम समझते हैं आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम सुनिएगा और हमें फ़ोन भी लगाइएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार नमस्कार।
2: और एक चीज़ मैं आज आपके मन से बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी कॉल्स आए, जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अब जेंडर इक्वलिटी आए, इसमें लड़कियां भी, क्योंकि लड़कियां 50% पॉपुलेशन है युवा की, अगर वो पीछे रह गई तो फिर हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा।
1: हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो पीछे हैं
2: जी जी,
1: लेकिन समाज में और इस क्षेत्र विशेष में मुखर होकर के सामने नहीं आ पाती है। अमरेंद्र जी, पिछला जो कार्यक्रम था हमारा
2: जी
1: स्तनपान पे
2: जी,
1: हमने बार बार ये आग्रह किया
2: जी
1: कि अगर कोई समस्या है
2: जी
1: तो आप आगे बढ़ करके अगर चाहें तो नाम पता ना भी बताएं
2: जी, जी,
1: लेकिन कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। एक जो दिक्कत पेश आ रही है कि महिलाओं में खास करके कि वो आगे नहीं आ पाती है अपनी बातें रखने के लिए, और पता नहीं क्यों, मतलब एक तरह की झिझक, जिसे एक शब्द है ना झिझक, वो झिझक कभी भी है। और वर्जनाएं तो टूटी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, साइकिल से स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान भी दे रही हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़ी हुई हैं लड़कियां।

0: पढ़ाई में तो बहुत आगे
1: मैं एक डेटा बताता हूँ। मैं यूपीएससी का ही तैयारी करता हूँ, कर रहा था, तो हर साल जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है, कम से कम 5 लड़कियाँ टॉप 10 में लड़कियाँ ही
0: हाँ
1: होती हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: लड़कियाँ सब जगह आगे बढ़ रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये रिक्वेस्ट है कि सारी लड़कियाँ आगे आएँ, क्योंकि उनके बिना फिर हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, वो पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आएगी।
0: सही बात है। और आधी आबादी के लिए इतनी लड़ाई चल रही है
1: जी
0: भाई उनको उनका दर्जा तक पहुंचाने के लिए,
1: जी
0: तो ये बात तो है। लेकिन हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का हिस्सा बना
1: जी
0: बहनें हमारी बने,
1: बने जी जी
0: ये ज़रूरी है। और अगर सुन रही हैं
1: जी
0: तो झिझक तोड़िए, आगे बढ़िए। मोबाइल हर हाथ में है,
1: जी
0: कॉल लगाइए। नंबर हम बता देते हैं, 9430029353, 9430029353। दूसरा नंबर है 0627222481, 06272222481, 0627222281। तो ये दोनों नंबर खुले हुए हैं। और अमरेंद्र जी ने ये बातें कही कि भाई अभी तक
1: जी
0: महिला शक्ति जो है ना,
1: जी
0: महिला युवा शक्ति,
1: जी
0: उनका पदार्पण नहीं हुआ इस कार्यक्रम में, तो होना भी चाहिए।
1: जी
0: खैर, हर क्षेत्र में आगे हैं। और किसी के बगैर,
1: जी
0: एक पक्ष अगर कमज़ोर हो जाए,
1: जी
0: अगर मजदूरों का विकास न हो,
1: जी
0: अगर किसान ठीक से खेती न कर पाए,
1: जी
0: तो देश तरक्की की राह पर तो होगा,
1: जी
0: लेकिन विकसित भारत का जो स्वप्न है वो पूरा नहीं हो
1: और
0: पाएगा। ये
1: विकसित भारत के
0: दिक्कत
1: जो 4 पिलर्स जो सरकार ने बनाए हैं,
0: है।
1: उसमें एक युवा, किसान, गरीब और एक वुमेन, ये
0: सही बात
1: चारों
0: है।
1: पिलर ही, जब तक ये चारों पिलर स्ट्रेंथन नहीं होंगे, विकसित भारत का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होगी।
0: सही बात है। देखिए, अब स्किल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे कि
1: जी
0: अगर हम सोचते हैं कि पलायन हो रहा है,
1: जी
0: तो अगर हम सही ढंग से काम करें, जहाँ काम करते हैं तो उसके उसके जो पैसे हैं वो भी अच्छे मिलेंगे,
1: जी
0: परिवार भी संबल होगा।
1: जी
0: और दूसरी बात, एक हुनर आ
1: जी
0: जाए
1: जी
0: तो वो दूसरे को भी ट्रेंड कर
1: ट्रेंड कर
0: सकते हैं,
1: सकते
0: ये भी बात है। और उसको देख करके भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ये
1: जी
0: भी बात है। तो हम समझते हैं कि एक बार लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। एक बात
1: जी
0: और ये बात करनी जरूरी है, क्योंकि बातों बातों में समय बहुत बीत गया है।
1: जी
0: युवाओं में तनाव है,
1: जी
0: डिप्रेशन है,
1: जी
0: मनोविकार भी है, नशे की लत भी है।
1: जी
0: अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम भी किया और युवाओं से आह्वान किया कि
1: मेरा युवा
0: वो,
1: भारत के थ्रू ही हुआ था
0: हाँ
1: जी
0: मेरा युवा। और सबसे ख़राब, घातक और तकलीफ़देह बात कि जिस युवा पीढ़ी पर हम दृष्टि लगाए हुए हैं
1: जी
0: कि यही युवा पीढ़ी जो है वो हमें वहाँ तक पहुँचाएगी, विकसित भारत के लक्ष्य तक,
1: जी
0: उनमें से कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं,
1: जी
0: हत्या भी करते हैं,
1: जी जी
0: है ना। कुछ मनोविकार, नशे की लत, ये इन सब वजह से। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये हम छोड़ दें आज इस कार्यक्रम में ये
1: जी
0: विषय,
1: जी
0: तो हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा।
1: जी जरूर।
0: जी
1: देखिए, ये बहुत बड़ी गंभीर आपने एक टॉपिक उठाया है, जिसमें सुसाइड हो गया, चाहे नशा एडिक्शन हो गया कुछ, या बाकी चीज़ें जो आदतें हैं, उसके बारे में ये कहूँगा कि मैं खुद 3-4 साल पहले, मतलब मैं भी युवा ही हूँ और मैंने भी ये सब चीज़ें झेली हैं,
0: जी
1: लेकिन मेरा एक ही आप लोगों को मैसेज रहेगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमेशा आएंगी आपको। आप स्टूडेंट फेज में हो, अगर आप आगे जॉब में आए, आपकी फैमिली हो, चैलेंजेस आती ही रहती हैं, लेकिन
0: सही
1: इनका कैसे आप निवारण करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन लेते हैं, यही तो हमारी ऊर्जा का एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा। तो हम चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना है हमें, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स से बातें करें और उनसे साझा करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनको सॉल्यूशन कैसे लें। और हम एक ये भी है कि हमारा एक नशा मुक्ति अभियान अभी चल ही रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे युवाओं से अनुरोध और आह्वान किया है कि नशे से दूर रहें और बाकी अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों को भी उससे दूर रखें।
0: सही बात तो ये भी है कि आज लोग तनाव का
1: जी
0: शिकार हो
1: स्ट्रेस
0: जाते हैं,
1: जी
0: ये स्ट्रेस बच्चे से लेकर के बड़े तक में है।
1: जी
0: लेकिन हम ये समझते हैं कि तनाव जो है वो तब आता है जब हम अपनी बातें, मतलब जो हमें करना चाहिए,
1: वो
0: हमने
1: नहीं
0: उसे
1: कर
0: समय पर नहीं
1: नहीं
0: किया हो।
1: किया जी
0: अगर हमने सही ढंग से पढ़ाई की हो
1: जी
0: तो हमें क्यों परीक्षा का तनाव होगा,
1: जी जी
0: सीधी सी बात है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: अगर हमने समय से सारे

0: ये किए हों तो फिर आपाधापी क्यों होगी।
1: जी
0: और सही बात ये भी है कि एक बार लक्ष्य का निर्धारण जो हम कह रहे थे अगर वो हो जाए सही ढंग से, और देखिए एक कदम तो हम आगे बढ़ाएंगे तब किसी की मदद भी हमें मिलेगी,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी
0: वो तो कहावत है कि सीधे बैठे हुए हम कुछ कर नहीं सकते, ये बात है। चलते चलते 12 अगस्त को
1: जी
0: इंटरनेशनल यूथ डे है,
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हमारी युवा पीढ़ी जो देश के विकास में लगी हुई है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: मेरा एक लास्ट संदेश रहेगा कि युवाओं में खुद में उन्हें आत्मविश्वास सबसे पहले होनी चाहिए कि वो जो भी लक्ष्य पूरा लक्ष्य देखें, जो भी सपने देखें, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, वो एक तो वो बहुत बड़े होनी चाहिए आकांक्षा, सपने बहुत बड़े रखें, आत्मविश्वास आप में रहनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए खूब सारी मेहनत करें, यही बस मैसेज है।
0: ये कहते हुए हम विदा लेंगे आज के कार्यक्रम से कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हम अगर सपना देखें तो ऐसा देखें
1: जी।
0: वो सपना विकसित भारत का सपना पूरा करने जैसा सपना
1: जी,
0: हो
1: जी।
0: तो श्रोताओं, आज की हेलो जिंदगी का विषय था विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व। बतौर विशेषज्ञ माई भारत दरभंगा जिला युवा अधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर जी, आपने अपना समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सारे युवाओं को और जितने भी श्रोता जुड़े, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दरभंगा आकाशवाणी को जिन्होंने मुझे बुलाया।
0: तो मिलेंगे अगले अंक में अगले रविवार दिन में 11 बजे हेलो जिंदगी में किसी और विषय किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक अमित कुमार के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जिंदगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सखी बहन।
1: सखी बहन, सखी है कखनो झिसी कखनो फूही, सखी है कखनो झिसी कखनो फूही, कखनो झमझम बरसैया आखन गुमकी खन तन सिहराबे, रही रही मेघ अपन रूप देखाबैया, रही रही मेघ अपन रूप देखाबैया। नमस्कार सखी बहिन, स्वागत अछि अहाँ सभक अपन कार्यक्रम सखी बहिन में। सखी बहिन, एहि कार्यक्रमक माध्यमे अहाँ सभसँ

आधा घंटा धरि गप करैत छी। आधा घंटा कोना बीत जाइए अहूँ सबके आ कि हमरो बुझऽमे नहि अबैत अछि। समय तऽ अपन गतिसँ हरदम चलैत रहैत अछि। अपना सब जँ ओकरा सङ्ग चलबामे सफल भेलहुँ तखने तऽ जीवन सुंदर, व्यवस्थित आ आनंदसँ भरल बुझायत। कहलो गेल अछि ने जे समयके नष्ट करैत अछि समय ओकरा नष्ट कऽ दैत अछि। सखी बहिन, मोन अछि अपन नेनपन कतेक मोन लगै छलै बरखाक पानिमे नहाइमे, ओ अपन सखी सङ्गे आमक गाछीमे गाछ पर झूला लगबै छलहुँ। एक बेर सखी की कहू, हम तऽ झूलेमे तेहन मगन भऽ गेलहुँ, झूला टूटि गेल आ खसि पड़लहुँ, मुदा किनको नहि कहलियनि। कहबी तऽ बुझले अछि ने खसैसँ बेसी हँसैके डर। एतबे नहि, आकाशे दिस तकैत रहै छलहुँ जे कखन पानि बरसतै आ कागजके नाव पानिमे बहेबै। किनकोसँ बाजब सुनै छलहुँ तऽ ओही दिस कान रहै छलै जे एहि बेर एतेक बरखा हेतै तऽ लागि रहल अछि जे बाढ़ि आबि जेतै। हमरा तऽ बड्ड जिज्ञासा रहै छल नेनपनमे जे ई बाढ़ि होइ की छै, ई बाढ़ि कखन एतै जे बाढ़िक पानिमे खूब उमकब। बैस बढ़िते अपना सब तनाव, भय आ चिंता दिस बढ़ लगै छी। नेनपनक प्रसन्नता धीरे धीरे कम हुअ लगैत अछि। की सखी, होइ छै ने, जँ वह समयकेँ फेरसँ आना चाही तऽ अपन पसीनक गीत आ मित्रके सङ्ग कखनो नहि छोड़बाक अछि। जखन बरखा बुन्नी होइत रहैत अछि तऽ गीत तऽ गुनगुनबिते छी ने अपना सब। तऽ सुनै छी अपना सब कुमकुम झाके स्वरमे एक कजरी।

तो सखी बहन अखन अपना सब कुमकुम झा के स्वर में एक कजरी सुने छलो। अपना सब ओठाम ई संस्कृति आ परंपरा रहल अछि जे नैना के जन्म होते सोहर खेलौना बधैया गाय हुनक दीर्घायु जीवनक कामना कयल जाइत अछि। ऋतु गीत बनल अछि, बारह मासा चौमासा छ मासा बटगवनी कजरी लोकगीत जे अछि ने से प्रकृति के संग चलैत अछि। सब मासक अपन आनंद आ महत्व अछि। जँ सौन मे कजरी आ मल्हार नहीं गायल जायत तो ई मासक विशेषता की रही जात सखी। गाछ पर झूला लगा कर सखी संग जब कजरी नहीं गेलों तो बाद में मोनो नहीं ओ पड़ती कहियो सखी। एहन क्षण जीवन में अद्भुत होइत अछि, स्मरणीय होइत अछि। मुदा कोनो एहनो सखी छथि जिनका लेल सौन मास उचाट सन होइत छनि, कहब से कि कागजक नाव सँ बेसी हुनका चुबैत घर, टाट वाला घर सँ उपछैत पानि आ माल जाल के चुबे वाला घर आ बाढ़ि में घर भसिएबाक भय हुनका बेसिए होइत छनि। जीवन में कोनो चीजक अधिकता कष्टप्रद तऽ होइत अछि, कोनो एहन समस्या नहि अछि जे समाधान नहि हुए। सखी विकट सँ विकट समस्या के धैर्य आ शांति सँ निदान कऽ सकैत छी। एहन बेर मे चिंता के नहि चिंतन के आवश्यकता भऽ जाइत अछि। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ई पद मोन पड़ैत अछि, सखी हे हमर दुखक नहि ओर, ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, किनको लेल सौन प्रसन्नता नव जीवन उमंग ऊर्जा तो किनको लेल अपन प्रियजन सँ दूर रहबाक विरह वेदना अनुभव करैत छथि। सखी बहिन मोनक वेदना ओहि बहिन लेल सदिखन अनुभव करैत छी जे राष्ट्रक रक्षा लेल सीमा पर ठार रहै छथि, अपन सबक सुरक्षा लेल कतेक बेटी सब सेहो छथि जे सेना में छथि आ किनको माय पत्नी आ बेटी सँ ओ दूर भऽ गेल छथि। हुनका लेल सब मास एक समान छनि। एहन कतेको बलिदानी भेला जिनका तो हमरा सबके या तो बुझल नहीं अछि वा बुझलो अछि तो स्मरण नहीं कऽ पबै छी। एहि पाती सँ कहबाक प्रयास करी, बहुतो के हम जानि रहल छी संघर्ष हुनक सब मानि रहल छी, मुदा अज्ञात अनेको छथि जे रहला अपने ही मोन मतंग। ओना तो संपूर्ण भारतक लोक स्वाधीनताक संघर्ष में बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेलनि, संगे अपन सभक क्षेत्र मिथिला सेहो स्वाधीनताक युद्ध में सदिखन आगा रहल। एहन महान विभूति लोकनि के कोना बिसरि जायब जे अपन जिंदगी राष्ट्र लेल समर्पित कऽ देलनि। सखी बहिन कार्यक्रम में और गप करबाक अछि, मुदा एहि कार्यक्रम में आजुक कनियाक

0: ए गप तऽ सेहो सुनबाक अछि ने। ओ एहि विषय पर की कहऽ चाहि रहल छथि? अर्चना सखी घर आ बाहर दुनू ठाम सामंजस्य बैसा कऽ व्यवस्थित ढंग सँ काज कऽ रहल छथि। ई एकटा शिक्षिका छथि, बच्चा देशक भविष्य अछि। ओ बच्चाक व्यक्तित्वक सर्वांगीण विकास मे सदिखन लागल रहैत छथि। इहो एकटा बड पैघ राष्ट्रक सेवा अछि। तऽ सुनै छी हिनक विचार।
1: हम अर्चना अपन विचार प्रस्तुत करबाक लेल उपस्थित छी। भारतीय संस्कृति आ धार्मिक परम्परा मे सावन मासक विशेष महत्व अछि। ई मास भक्ति, आस्था, प्रकृति आ नव जीवनक प्रतीक मानल जाइत अछि। सावनक नाम सुनिते मन मे हरियाली, वर्षाक बूंद, झूलाक मधुर आवाज, लोकगीतक मिठास आ भगवान शिवक भक्ति भाव जागी उठैत अछि। सावन मास भगवान भोलेनाथ शिव के अत्यंत प्रिय अछि। एहि मास मे भक्त जन श्रद्धा आ विश्वासक संग भगवान शिवक पूजा अर्चना करैत छथि। सोमवारी व्रत, शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, भांग धतूरा सबसँ हर हर महादेव जय घोष सँ वातावरण भक्ति में भ जाइत अछि। भगवान शिवक आराधना करैत छी जे जीवन मे सुख, स्वास्थ्य आ कल्याण प्रदान करथि। सावन केवल धार्मिक दृष्टि सँ नहि बल्कि प्राकृतिक दृष्टि सँ सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि। ग्रीष्म ऋतुक तपन के बाद वर्षा ऋतु धरतीक नव जीवन प्रदान करैत अछि। खेत खलिहान हरियर भऽ जाइत अछि। किसानक मन मे नई आशा जागैत अछि। नदी, पोखरि आ तालाब जल सँ भरि जाइत अछि। प्रकृतिक सुंदरता चारू दिश देखबाक लेल भेटैत अछि। मिथिलाक संस्कृति मे सावनक अपन अलग अलग पहचान अछि। एहि समय मे गामक बगीचा मे झूला पड़ैत अछि। बहिन बेटी सब कजरी आ लोकगीत गाबैत छथि। सावनक गीत मे प्रेम, विरह, प्रकृति आ अपना अपनक भावना भेटैत अछि। मिथिलाक लोक परम्परा सावन मास के आरो सुंदर बना दैत अछि। सावन हम सब के प्राकृतिक सम्मान करबाक संदेश दैत अछि। हरियर पेड़ पौधा, स्वच्छ वातावरण आ जल संरक्षण हमर जिम्मेदारी अछि। जँ हम प्राकृतिक रक्षा करब तऽ प्रकृति सेहो हमर सबक जीवन सुखमय बनायत। किछु पंक्ति। सावन आयल हरियाली लऽ कऽ धरती पर नवरंग सजायल, बूंद बूंद वर्षाक संगीत सँ प्रकृतिक मन मुस्कायल, शिव भक्ति मे डूबल मन गूंजय हर हर नाम, सावनक पावन महीना करे जीवन अभिराम, झूला परल अमरैया डारी, झूला परल अमरैया डारी गूंजय कजरीक तान, मिथिलाक माटी कहि रहल अछि सावन हमर अभिमान। सावन प्रेमक संदेश दैत अछि, अहंकारी छोड़ विनम्रता अपनाबय सिखाबैत अछि। भगवान शिवक जीवन त्याग, धैर्य, सेवा आ लोक कल्याणक प्रेरणा दैत अछि। शिव सदैव सबहक कल्याणक भावना रखैत छथि। एहि लेल हुनका भोलेनाथ कहल जाइत अछि जे शांत संसारक स्वामी आ सबहक कल्याण करय वाला छथि। जे सावन मास केवल एक महीनाक नाम नहि अछि बल्कि ई भक्ति, प्रकृति, प्रेम आ सांस्कृतिक उत्सव अछि। एहि पवित्र मासक महत्व बुझी हम सब अपन परंपरा, प्रकृति आ संस्कारक सम्मान करी। सब मिली संकल्प ली सावनक हरियाली बचायब, प्राकृतिक सम्मान बढ़ायब, भक्ति, प्रेम आ सद्भाव सँ जीवन के सुंदर बनायब, जीवन के सुंदर बनायब। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता आ जन्मभूमि स्वर्ग सँ सेहो महान होइत छथि। राष्ट्र केवल एक भूभाग नहि अछि बल्कि ई हमर भावना, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता आ करोड़ों नागरिकक विश्वासक प्रतीक अछि। जाहि माटी में हम जन्म लेलहुँ, जाहि देशक जल अन्न सँ हमर जीवन चलैत अछि, ओहि राष्ट्रक प्रति प्रेम आ सेवा भाव राखब प्रत्येक नागरिकक परम कर्तव्य अछि। राष्ट्र सेवा केवल युद्धक समय में सीमा पर सैनिक बन देशक रक्षा करबाक नाम नहि अछि। राष्ट्र सेवा अपन कर्तव्यकें ईमानदारी सँ पूरा करब, समाजक भलाई करब, प्राकृतिक रक्षा करब, कानूनक सम्मान करब आ देशक उन्नतिक लेल योगदान।

0: देव सेहो अछि। महाभारत में श्री कृष्ण जी गीता के उपदेश दैत काल में कहने रहथिन जे मनुष्य के अपन कर्तव्य कर्म करैत रहबाक चाही, फल के चिंता नहीं करबाक चाही। हमर देशक महानता यही बात में अछि जे एतय विभिन्न भाषा, वेशभूषा आ सांस्कृतिक लोक सब प्रेम आ एकताक संग रहित छथि। यही एकताक मजबूत राखब सेहो हमर कर्तव्य अछि। विद्यार्थीक परम कर्तव्य अछि जे ओ मन लगाकर अध्ययन करय आ देशक भविष्य उज्जवल बनाबे। शिक्षकक कर्तव्य अछि जे ओ मन सँ ज्ञानक प्रकाश फैलाबथि। किसान अपन मेहनत सँ अन्न उपजाबैत, सैनिक देशक सीमा सुरक्षा करैत छथि, वैज्ञानिक नव खोज सँ देश के आगू बढ़बैत छथि। माटी हमर माता अछि, देश हमर अभिमान। माटी हमर माता अछि, देश हमर अभिमान। राष्ट्र सेवा सँ बढ़िकऽ नहि कोनो महान। जन्मभूमिक रक्षा लेल सदा समर्पित रहब। सत्य प्रेम आ कर्मक बाटे आगू बढ़ैत रहब। नहि केवल नारा सँ होयत देशक नवनिर्माण, नहि केवल नारा सँ होयत देशक नवनिर्माण। त्याग, परिश्रम आ एकता सँ बढ़त भारतक मान। जहाँ किसानक पसीना अछि, जहाँ वीरक बलिदान, ओही पावन धरती लेल समर्पित अछि प्राण। आओ सब मिली संकल्प करी कर्तव्य के पहचान, ईमानदारी सँ सेवा कऽ कऽ बढ़ावी अपन देशक मान। संस्कृत में एकटा श्लोक छै, उद्यमिनः सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल इच्छा सँ नहि बल्कि परिश्रम आ प्रयास सँ सफलता प्राप्त होइत अछि। जेना कि सुतल सिंह के मुँह में अपने से शिकार नहीं पहुँचैत छै, ओकरो शिकार करय पड़ै छै। अंत में हम एतबे कहब जे राष्ट्रक विकास सरकार मात्र सँ नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक सहयोग सँ संभव अछि। जँ हम अपन कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आ प्रेम से निभायब तँ हमर राष्ट्र निश्चित रूप सँ महान बनत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
1: अर्चना सखी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आशा अछि अहाँ सब गोटे के अवश्य नीक लागल हैत। अपन सभक देश विविधता में एकता के देश अछि, जतौ सब ठामक अलग परंपरा आ वेशभूषा अछि। अपन सभक कर्तव्य अछि जे हम सब अपन संस्कृति आ परंपरा के सम्मान आ सहेज कर राखी, जाहि सँ आबे वाला पीढ़ी एहि परंपराक महत्व बुझि सके। सखी बहिन, पर्यावरण के संरक्षण करी तो जतेक संभव हुए गाछ वृक्ष खूब लगावी, जाहि सँ प्रकृति में संतुलन बनल रहत आ अपन सभक जीवन सेहो बच सकत, किएक तँ अपन सभक अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर अछि। पंच तत्व सँ अपन सभक शरीरक निर्माण भेल अछि। अपन सभक जीवनक मूल उद्देश्य तँ इएह हेबाक चाही ने, जे अपन कर्तव्यक पालन निष्ठापूर्वक करी। एखन पाबनि चलि रहल अछि तँ अखन तँ सब गोटे स्वच्छता के ध्यान विशेष रूप सँ राखि रहल छी। घर अंगना के तँ साफ रखते छी, जँ ओहिना लग पासक जे जगह अछि ओकरो खूब साफ राखी तँ वातावरण जँ साफ रहत तँ स्वाभाविक अछि एहिसँ स्वस्थ रहब। एखन मिथिलाक प्रसिद्ध पाबनि चलि रहल अछि मधुश्रावणी। एहिमे विषहारा के पूजा बस या फूल पात सँ होइत अछि। अपना सब एहन देश में रहै छी जतः जीव जंतु, गाछ वृक्ष, नदी, पोखरि, इनार के आस्थाक संग पूजल जाइत अछि। सखी बहिन, आप कार्यक्रम में मनोरंजन के ध्यान रखैत किएक ने फिल्म संगीतक आनंद लेल जाय। जखन पानि टिपी टिपी पड़ैत रहैया, झिस्सी पड़ैत रहैया, एहन बेर में गीत सुनबाक आनंदे किछु अलग होइत अछि।

साँझ पेड़ते बहिन सब मिल कर नव कन्या नव बिहोती संग फूल लोढ़े लेल विदा भ जाए छथि। मुदा एकटा गप ध्यान इहो देबाक आवश्यक अछि सखी बहिन, किनको बाड़ी से जब फूल पात तोड़े ले जाए छी गाछक क्षति नहि हुए इहो ध्यान राख पड़त। किएक तऽ केओ गाछ रोपै छथि तऽ बड हुनका ओहिसँ स्नेह रहै छनि, जँ गाछ टूटि जायत स्वाभाविक छै ने जे हृदयो टूटि जायत। तऽ अहाँके हृदयके जोड़बाक लेल सबसँ उत्तम आ सरल माध्यम अछि नीक नुकुत खेनाइ बना कऽ खुएनाइ। जे किनको हृदयके जितबाक अछि तऽ खूब नीक खेनाइ बना लिअ। फूल लोढ़ि कऽ जखन एलहुँ तऽ स्वाभाविक छै ने सब गोटा थाकि गेलहुँ, अतेक जे घूमय लए गेल रही तऽ थकबे ने करब। जे कोनो एहन नीक निकुत तऽ स्वाभाविक छै जे मोन हैत खाइके। तऽ सखी बहिन, अहाँ सब अखनका समयमे की सब बना रहल छी ओकरा अहाँ पत्रक माध्यमे वा ईमेलके माध्यमे अवश्य पठाबी।

0: किएक तऽ सब गोटे एक दोसर सँ सीखै छी। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक पता अछि कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004। ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ हम बनेलहुँ साबूदाना के हलुआ। तऽ साबूदाना के खीरो बनबै छी, खिचड़ियो बनबै छी, एकर पापड़ो खाइ छी। तऽ हम आइ साबूदाना के हलुआ बनेलहुँ। तऽ साबूदाना के खूब नीक सँ ओकरा धो लिअ, कम से कम आधो घंटा ओकरा फूलै लेल छोड़ दियौ। आ जखन ओ फूलि जाय ओकर सबटा पानि के हटा दियौ। तकर बाद जते मेवा सब अछि सबके भुजि लिअ। फेर ओही घी में साबूदाना के 3-4 मिनट भुजि लिअ। जखन ओ भुजा जाय तऽ चीनी इलायची दऽ कऽ कनि काल ओकरा आँच पर चढ़ले रह दियौ। 2-3 मिनट धरि चढ़ले छोड़ दियौ। एकर बाद गैस बंद कऽ दियौ आ ऊपर सँ जतेक मेवा रखने छी ओकरा मिला दियौ। तैयार अछि अहाँके साबूदाना के हलुआ। आब घड़ी अनुमति नहि दऽ रहल अछि जे अहाँ सबसँ बेसी काल धरि गप करब, मुदा एहि आशा के संग अगिला रवि कऽ फेर अहाँ सबसँ गप करब। एहि कार्यक्रमक प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसादक संग हमरा यानी नीतू के चलबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार सखी बहिन।
1: सखी बहिन,
2: सखी बहिन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सखी बहिन। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे नीतू कुमारी और प्रस्तुतकर्ता थे अमरनाथ प्रसाद। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे मैथिली नाटक नबीना। इसके लेखक हैं डॉक्टर कमलकांत झा, प्रस्तुतकर्ता हैं सीताराम शर्मा।

0: नवीना नवीना कर बाप कता गल थून ककरो से महिषो दुहाली तथिन से नहीं एहन ताल नहीं देखल गए बजट की हो छो
1: की
0: कहे छा गए महिष दुहल जते की नहीं बाप कता छथुन
1: दलाने पर तो ताश खेलाई छथी
0: हाँ ताशे खेलने गुजर चलते हमरा की अब ये बउआ तो कहे छे एक नौकर महिषे दुहल राख ला हिनका बुते कोनो काज नहीं हेतन
2: की ठीक है ए बड अनखोल कने छी
0: भोरे से हल्ला कर रहल छी आ एखन धर महिषो ने दुहल गेले ए घरक रक्षा भगवाने खात छन
2: हां ओ चिंता बुझू जे अही के ने हमरो अछि इदम लखना के त भोरे ढल हेलबा कहि आयल हेतक ए ओ एते है
0: बेटी से विवाह जो कर भेज गई है मुदा अहा के तकर कोनो चिंता नहीं
2: हाँ से तो सत्य एतेक दिन तो बुझू जे हम स्वयं ध्याने नहीं दे छलो कारण नवीनाक पढ़ाई चौपट भ जते मुदा आब तो बुझू जे मैट्रिक पास कहिए गेल
0: कतो कोनो बार ध्यान में आयल कि नहीं
2: हाँ ध्यान में तो आयल अवश्य रामपुर में बुझ बाबू के एक बेटा छ जमीन जथा से बुझू जे 5-7 बीघा हेबे करते बर ए साल बीए में नाम लिखो लगे आपत्ति एतबे छे कि जे वो कनेक बचौने सन लगे छे
0: नहीं गे दाई हम ई काज नहीं करो
2: से किया किए
0: आहा के तो खाली खर्चा के डर होइए मुदा काल भेने सब दूर छिया करा लागत तकर चिंता नहीं होइया
2: से धैर्य यथार्थे कहे छी दोसक मुंह में झीक देव बुझू जे बड्ड कठिन होइ छै

0: भौजी, ये भौजी।
1: हाँ हाँ, या एला।
2: ओ नवीना दाय, आओ आओ ए पतिया पर बैसू। अच्छा कहू बउआ, गरीबक आंगन में पैर दबाक मन कोना भ गेल?
0: अहू बड गप दै छियै भौजी। अच्छा छोड़ू, अहाँ जे बहिना के दस्ताना बनेनाइ सिखा देलियनि से हमरो सिखा नहीं दिया?
2: अवश्य सिखा देब। अहाँ सबटा सामग्री लऽ कर एक दिन चैन से आओ, हम छानि देब आ किछु आगाँ बढ़ा देब।
0: अच्छा,
2: अपने सबटा भ जायत।
0: हाँ भौजी,
2: हाँ हाँ
0: एकटा बात पूछू।
2: की?
0: हम सब कॉलेज में नहीं पढ़ सकै छी की?
2: किएक नहीं पढ़ सकै छी? हमर तऽ भाय बहिन सब मधुबनी कॉलेज में पढ़ैए। ऐ धन सम्पत्ति कोनो चीज छैक, जे बनि जायत से बनि जायत।
0: मधुबनी में तो अहाँ के नहिरा के डेरा अछि ने, तैं सुविधा अछि। हम सब कोना कत डेरा दऽ सकबै? आ रिक्शा से यदि गामे से जाय आबी तो 15 टका रोज ओकर भाड़ा लागत। बाबूजी से कंजूस छै जे खर्चक नाम सुनकर आगा पढ़ेबाक नामे नहि लै छथि।
2: ऐ दाय, अहाँ कनेको चिंता नहीं करी, हम अहाँक माँ से गप करी छी। जखन पढ़वाक इच्छा अछि तो बाबूजी किएक नहि कॉलेज में नाम लिखा देता?
0: हाँ ये भौजी, कनी अही गप कऽ कऽ देखियो।
2: हाँ हाँ,
3: गोर लगै छौ दीदी।
2: नीके रह बाब, कोना कोना एल? हाल समाचार नीक छै ने?
3: हाँ हाँ, हाल समाचार तो बड्ड बढ़िया।
2: माँ बाबूजी सब नीके छथुन कि नहीं?
3: हाँ, सब बड्ड प्रसन्न छथुन। दीदी,
2: हाँ
3: ई बालिका के छलथुन?
2: ई छली नवीना, ओइ टोलक उमेश बाबू के बेटी। मुदा से किएक? तोरा पसिन पड़ गेलखुन की?
3: ए तोरा तो तेसरे अर्थ लग जाय छौ। तो कॉलेजक नाम लेलही ने, तैं हमरा उत्सुकता भेल।
2: हाँ रे बउआ, ओ बेचारी मैट्रिक में फर्स्ट भेली है, आगा पढ़वाक इच्छा छन मुदा बाप पढ़ावे नहीं चाहे छथिन।
3: मुदा उमेश बाबू तो सुने छी बड़ धनिक लोग छथि, बेटा मेडिकल में पढ़े छन, तखन बेटी के पढ़वा में आँख क्या लगे छन?
2: बाप रे, दूर से अहिना सबके सब धनी के बुझ पड़े छे, मुदा जकरा बाहरी आमदनी नहीं छे तकर कोन हाल छे से तो हम ही सब जने छी। उमेशो बाबू लोकनिक आब ओ हाल नहीं ने छन?
3: ऐसे जे होइन, मुदा ओहन बढ़िया बेटी के पढ़ावा में कंजूसी नहीं करवाक चाहिए।
2: अच्छा छोड़ ए बात के, अपन पढ़ाई लिखाई हाल का। अरे कहिया धर एम ए पास करवे? हे तोहर विवाह दुरागमन देखला मोहन लागल।
3: हाय रे मिथिलाक नारी समाज, केवल सौखे चहनता में लागल रहत, भविष्य कोनो चिंता नहीं। आ तै पर सब विध व्यवहार भेले ताके भने घर में किछ रह कि नहीं रह। दीदी, हमर विवाह कखन कोन समय भेले के? अगला साल एम ए परीक्षा है, फिर 2-3 साल PhD में लागत, तकर बाद नौकरी के जोगाड़, आ तकरे बाद विवाहक कोनो चर्चा हेबाक चाहिए कि नहीं?
2: दाय गे दाय, ता धरि तो तू बूढ़े भ जेबे रे, विवाहो दुरागमन समय पर निक लगे छे। मुदा आइ काल्हि तो दुनिया उल्टा भ गेलै, बुढ़वा बुढ़िया सबक विवाह होइ छे। पछिला मास कारी बाबू के धाकर सन बेटी के विवाह भेलन, असे जमाइयो तेहने भेलन, बड़का बड़का मोछ वाला। मुदा एहन कतौ विवाहो भेलै ये?
3: दीदी, विवाह करब कोनो कठिन नहीं छै, कठिन छै ओकर प्रतिपाल करब। तैं जा धेर अपन पैर पर नहीं ठाड़ भ जाए ता धेर विवाह नहीं करबाक चाही। हम ओहन लोक में से नहीं छी जे विवाह दुरागमन धिया पुता आ पढ़ाई लिखाई सब सासुर के भरोसे करैत अछि। डार में दम्मे ने आ बाजार में धक्का।
2: दाय गे दाय, हमर भाई ससुर के किछ खर्च नहीं होबो देते, बात बात में सासुरे को पाट लेते। एहन कल जुगा नहीं देखल।

0: की कहू भोला बाबू, हमरा बुझू जे अहां लोकनिक आशीर्वाद सँ तीन टा कन्या अछि। हम चाहे छी जे ओकरा लोकनिक विवाह मे हमरा बुझू जे अधिक खर्च नहि करऽ पड़ै, मुदा बेटे सब कहुना सुखित घर घर में चलि जाए हो।
1: और जे किने से सब किछु ठीक भऽ जेतै उमेश बाबू, अपने चिंता नहि कैल जाओ। पहिने जे किने से ई तो कहल जाओ जे अपने के काज केहन करऽ चाहै छी।
0: देखू भोला बाबू, हम ई नहि चाहै छी जे बर बहुत रास पढ़ल लिखल भेले ताके। हाँ, बुझू जे पढ़ल कमो होइक तै नहि हर्ज, मुदा जमीन जथा किछु अवश्य हेबाक चाही, बुझलहुँ कि नहि। ओहि दुआरे बुझू जे हम बेटी सबके बेसी पढ़बैयो नहि चाहै छी।
1: जे किने से अपने कन्या सबके अधिक किएक नहि पढ़बऽ चाहै छी उमेश बाबू? ओ आब तऽ जे किने से बर सब पहिने पूछि दैत छै कि जे कन्या कतेक पढ़ल छै।
0: से नहि बुझलहुँ घटकराज, हमरा लोकनि के आब तो ओ सामर्थ रहल नहीं जे बुझू जे 70-80 हजार टका गइन क बेटीक विवाह कर।
1: हाँ,
0: जो बुझू जे अधिक पढ़ा देबे तो ओहने बड़ो न ताकऽ पड़त।
1: हाँ,
0: रमेश बाबू अपन बेटी के एमए तक पढ़ौने छल, तै हुनका ओकरा जोगर बड़े ने भेटै छलन।
1: बड़े ने भेटै छलनि, तखन फेर कोना की भेलनि?
0: हेतनि की, रमेश बाबू सोचैत छला जे हमर बेटी तऽ एमए अछि, तैं एकरा मे टका लगबाक नहि चाही, मुदा जखने कोनो सुयोग बरंग बाप लग जाइ छला ने तो बुझू जे ओ अपन मुँहे घुमा लै छला।
1: कहू,
0: आ कहे की छले ने?
1: हाँ,
0: हमरा बेटा के एहि साल विवाह नहि करबाक अछि।
1: तखन तऽ जे किने से रमेश बाबू के बड़ झंझट भेल हेतनि, ओ फेर कोना की भेलनि?
0: ओ जी हेतै ने की, झक मारि कऽ बेचारे के एकटा इंजीनियर बड़क हेतु 1,00,000 टका गणो पड़लै, आ घर में जतेक जे छलै ने।
1: हाँ,
0: से सबटा ओहि में झोंका पड़लै।
1: ऐ जे किने से कोनो बात नहि, आब बेटियो जे किने से हुनके ने सुख करतनि, रमेश बाबूक जान बचतनि तो सबटा सधिए जेतै।
0: ओ जी सधतनि की कपार यौ, आब तक दोसर बेटीक विवाह कोना हेतनि से बुझू जे तीनू लोक सुझै छनि हुनका। ओ जखने पहिल मे ओते खर्च पड़ि गेलनि तऽ दोसर बेटी के तऽ बीएमए रोकि लेलनि।
1: हाँ,
0: आ तेसर के बुझू जे आईएमए लटकौने छथि।
1: जे किने से सब बात बुझि गेलहुँ, अपने जे किने से निश्चिंत रह।
0: हाँ भोला बाबू, हमरा बुझू जे अहाँक बहुत भरोसा, हम चाहे छी जे 3-4 वर्ष में कहुना तीनू बेटी पार लाग जाए, बस हम गंगा स्नान कऽ लेब। आ अहूक जे उचित पारिश्रमिक हैत से तऽ भेटबे करत।
1: हाँ हाँ, से सब तऽ जे किने से हेबे करतै, सबटा भगवती हाथ में छनि। अच्छा नमस्कार,
0: मुदा ध्यान रखबै कने भोला बाबू।
1: नमस्कार।

0: आब हम बुझलहुँ कि ने अहाँ किएक नवीना के कॉलेज में नाम नहीं लिखाबै चाहैत छी। सदकाल अहाँ हिसाबे जोड़ैत रहै छी, अहाँ सन कंजूस संसार भर में दोसर नहीं है।
1: ये दुनिया संसार कोना चलै छै से की बुझबै कहाँ। हमरा लोकनि जी जान से कमाइत रहू आ अहाँ लोकनि बुझू जे ओकरा चीज में खूब फुकैत रहू।
0: हाँ यौ, हमरा लोकनि फुकनी छी कि ना कहल कहे जे ओझा लेख है गाम बता आ गामक लेख है ओझा बता। कनेक हमरा जोड़ाउ त की सब फुक के उड़ा देलौ।
1: हां हां, हम त केवल अही के नै न कह रहल छी, हम त समस्त मैथिलानी के कह रहल छी। विश्व भर में सबसे अधिक पाबनि तिहार बुझू जे एतै होइत अछि।
0: आन देशक मोगी सब के ने एतेक लुइर छै आ ने हृदय में दरेगे छै, ओ सब की बुझतै।
1: हां
0: कहल कहे जे बानर की जाने।

0: आदिक स्वाद तखन अहाँ सब गाल जतेक बजाजी गाल वाला जीत गेल आ माल वाला हार गेल तकरे पैर करै छी
1: आ एकरे कहे छै उनटे चोर कोतवाल के डाटे हम निको गप कहे छी ने तब बुझू जे अहाँ के अदला है लगै है
0: असल में अहाँ बेटी के पढ़ाई बेकार बुझै छी
1: बेकारे नहीं बुझै छी ओकरा हम घाटा के सौदा बुझै छी
0: से नहीं है हमर बेटी कॉलेज में पढ़वे करत
1: हाँ हाँ जी मन में से करत रह
2: जहिया सब बहनी काम से एलू अच्छ कोनो काज में मोने नहीं लगैत अच्छ सब खन ओही मंजुल मूर्तिक ध्यान आबि जाइत अच्छ ओ नहीं जान कहिया दे फिर उकरा देख सकबै
3: सब ठीक छे अपन
2: रौ समान सब पहिने बैसे जाय जो तकर बाद तक गप सप हेबे करते
3: हाय की हाल समाचार छे कोनो नव गप का देख शंकर हमरा लग में तो कोनो नव गप नहीं है तखन विनोद के आई बेस गंभीर देखे छे ओकरे से पूछल जाए जे की बात छे
2: की रो बात कोनो तेहन नहीं छे हाँ तखन बहनी गाम के यात्रा से हम अनुभव केलो है शंकर जे जहिना स्त्री शिक्षा दिस लोक अत्यधिक उत्साहित भेल छल तहिना ओहि दिस सब भयंकर वैवाहिक समस्या कारणे आब लोग हतोत्साह भ रहल अछि
3: ई त कोनो नव गप नै छै तखन बहिने के गाम में जाकर तोरा गौतम बुद्ध जका ज्ञान कोना भेट गेलौ
2: हे ओहि गाम में उमेश बाबू एकटा सुखी संपन्न लोक छथि किंतु ओ अपन बेटी के कॉलेज में पढ़ेबाक विरोधी एहि हेतु छथि जे तखन हुनका विवाह में अधिक खर्च पड़तनि
3: ठीक कहै छ समान हमरो गाम में लोग सब चर्चा करैत रहे जे जखन बेटी के अधिक पढ़ोला सो आर अधिक फेरी में पड़ जाए तखन ओकरा पढ़ोला सो लाभे कौन
4: मुदा एक बात छै समान आब कतौ कतौ एडवांस नारी समाज विद्रोह सेहो करय लागल अछि
3: ई त नीक लक्षण जरूर अछि भाई मुदा एहि हेतु छात्रा लोकनि के अधिक तेज बनौ पड़तै तखने ओ नीक पद पर जा सकैए
2: तो ठीक कहले शंकर समस्याक मुकाबला करबाक चाही आ ताहि लेल कठोर परिश्रमक आवश्यकता छै जो गाम गाम में लड़की सब विवाह से पूर्वहि नीक नीक पद पर पहुंच जाए तब बेटा वाला के झक मार के नीचा उतरा पड़ते
4: असल में लोके ततेक स्वार्थी बन गेल अछि विनोद जे समाजक प्रगति हैब कठिन छै आप देखी न एते व्यक्ति बेटी के बेर में आदर्श तकैत अछि किंतु बेटा के बेर में सब किछु बिसर जाइत अछि
2: हाँ रो दिनेश आदर्शक दुहाई दिनहारो व्यक्ति अपन सुयोग बेटाक विवाह ततै करैत अछि जाहिठाम आशा से अधिक लाभ बिना मंगने भेट जाइत छै पहिने साइकिल घड़ी औंठी ई तीनू प्रथम श्रेणी के विदाई होइत छलै ओकरा बाद एलै रेडियो टेप रिकॉर्डर आर आब चाहिन बाबू सबके स्कूटर फ्रिज टेलीविजन
3: हाँ से ठीक है

0: गोर लगी छी भौजी
1: के नवीना गाय आओ आओ एह बहुत दिन पर एम्हर कृपा के लिए ये ए कॉलेज में तो आप खूब मन लगे थे।
0: हाँ भौजी मन तो खूब लगे है। हम एकोटा क्लास नहीं छोड़े छी आ आप तो परीक्षा हेत फॉर्मो भरा गेल भौजी मुदा एकटा बड गड़बड़ देखे छी
1: से की
0: किछ विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलबे नहीं रहे छन मात्र उचक पनिया हुडंगी से मतलब रहे छे हे ओहन चाल हमरा एको रति नीक नहीं लगे भौजी
1: ए अहूँ के क्यों किछ कहलक है कि हमरा तो किछ संदेह भ रहल है
0: अहाँ के तो अहिना रहिए भौजी ओहन लड़की हम नहीं छी।
1: अच्छा कहू हमर भाई से कहियो भेंट भेल अछि कि नहीं अहाँ
0: के विनोद जी
1: हाँ हाँ
0: अरे वो तो बड़ नीक विद्यार्थी छथि भौजी हुनका सन स्वभाव जो सब छात्रक भ जाए

0: तो मनुखे भ जात।
1: ऐ दाई अहा हमर भाई के बड़ प्रशंसा कर रहल छिए, कहीं पसीन त न पड़ गेल है। हे जोड़ी बड़ निक रहत, कही त हम बाबूजी के समाद पठा।
2: बक छोड़ू ई गप सब, अहा के त बस इतबे खोद बेद रही है। विनोद जी एक आदर्श युवक छथि, हुनका सँ जकर विवाह हेतै ओकर भाग्य कहबाक चाही।
1: है दाय आब हम नीक जका बुझि गेलहुँ जे अहाँ लोकनि कॉलेज में की सब करै छी। भावजक रूप में हमरा अहाँ खूब पसंद छी।
2: देखू बौजी हम जाइ छी तऽ।
1: अरे रे अहाँ कतौ पढ़ेलहुँ, कनिक सुनि लिअ, हम आइए अपन नैहर समाज पठाबै छी।

हा, भोला बाबू आयल जाओ आयल जाओ, बैसल जाओ। बुझू जे अपने त नहीं छलो, मुदा अपने कृपा सँ काज त हमरा बड्ड

0: भोला बाबू आयल जाओ आयल जाओ, बैसल जाओ। बुझू जे अपने त नहीं छलो, मुदा अपने कृपा से काज त हमरा बड्ड जीतल भेल। विनोद बाबू सन सुयोग आ सुशील जमाए भेल, एहन काज में त आन ठाम बुझू जे 1,00,000 टका लग जाए।
1: ठीके बात,
0: किंतु एहिठाम एकोटा पाई हमरा नहीं देबो पड़त। आ बरियातिक संख्या सेहो मात्र 15 छल, 1 से 1 नीक लोक सब। सबटा काज सकुशल संपन्न भेल। ई सब त बुझू जे अपने सर घटक रास से संभव भेल। भोला बाबू
1: उमेश बाबू, ओ ई मात्र भगवती की कृपा कहबाक चाही जे विनोद बाबू सन जमाए आ दिवाकर बाबू सन समल जे किने से भेट गए।
0: अवश्य किने,
1: हमरा तो जे किने से साधारण श्रम कर पड़ल, तखन आर हाल समाचार कहल जाओ।
0: आर समाचार तो बड्ड बढ़िया, तखन बुझू जे बउआ विवाह नहीं कर चाहे छन।
1: देखिए
0: कोनो कथा पसीने नहीं पड़े छन हुनका, से एकटा एकटा चिंताक विषय अछि।
1: ओ
0: देखू ने, एहि साल MBBS के 3rd साल समाप्त भ गेलन, आ तखन बुझू जे आबो जो विवाह नहीं करता तो विवाह करता की बुढ़ारी वयस में यो।
1: अपने ठीक कही छी उमेश बाबू, जे किने से विवाह हो कि एकटा वयस होइ छै। इंजीनियर साहब वाला कथा से हो पसीन नहीं पड़लन की? ओ वो तो बड़ी नीक काज हुई।
0: आह वो तो बुझू जे सब तरह नीक हो। इंजीनियर साहब 1,50,000 टका नगद, आ बुझू जे ताई पर से स्कूटर रंगीन टीवी इटाइल सब किछ विदाई देबाक हेतु तैयार छै। ओ जी कहे छी भाग गए से ना ओहन घर बुझू जे ककरो हाथ लगे छै।
1: अवश्य कि नहीं,
0: केवल कन्याक रंग कने दब छन आ किछ बोल लगे छन। बुझू जे ई त कोनो तेहन बात नहीं भेले।
1: नहीं नहीं,
0: कतौ तो ओकर विवाह हेबे न करते यौ।
1: अवश्य कि नहीं यौ, हैं हे एहन गुदगर कथा के हाथ से नहीं जा दिया उमेश बाबू।
0: की कहे छी,
1: जेखिने से डॉक्टर साहब के एक कार्यक हेतु तैयार करब आवश्यक अछि।
0: हम त थाक गेलौं भोला बाबू, आप अपने प्रयास कर जाओ।
1: अच्छा कि डॉक्टर साहब, और यकीन से अपने लोकन कनेक हमरो लोकन गप दिस ध्यान देल जा कि, और कनेक इमहर आओ ने या एलो। ओ हमरा कहवा तो अच्छी जे इंजीनियर साहब वाला कथा अपने के किया कने पसीन पड़े तो अच्छी। हे हुनक कन्या जकिन से दरभंगा में MSc में पढ़ित छन, आब ऐसा नीक कथा आर की भ सकैत अछि।
2: अपने लोकन जाहि विषय के उत्तम बुझै छियैक से वस्तु त उत्तम नहीं छैक।
1: जकिन से तखन उत्तम छैक कोनो वस्तु?
2: उत्तम छैक मनुखक व्यक्तित्व, ओकर प्रतिष्ठा। कोनो धनवान व्यक्ति के हम बड़ पैघ नहीं बुझै छियैक। धन तो 2 नंबर काज क के क्यों जमा कर सकते हैं?
0: ओ जी भोला बाबू, पहिने हिनका लोकन के पूछियो जे बिना टका पैसा आई कल कोनो टका काज होय छे?
1: नहीं,
0: सब ठम तो टके चाहि ने। आ तखन फिर आयल लक्ष्मी से घृणा करब, ई कोन बुद्धिमानी भेल?
2: नहीं नहीं बाबूजी, हमरा लोकन लक्ष्मी से घृणा नहीं करैत छी, बेटी के बेटाक बराबरी में आना चाहैत छी। तैने नवीनाक विवाह में एकोटा पाई यहाँ के खर्च नहीं करा पड़ल। कल्पना करू, आज जो कन्यादान में 1,00,000 टका खर्च कर पड़ित तखन केहन लगित?
1: ऐसे त जे किने से जानिए किने डॉक्टर साहब, तखन बुद्धिमान व्यक्ति वह कहबे तो अछि जे अपन नफगर काज कहुना सुतारि लैत अछि।
2: जी नहीं, हमरा लोकन ओहन बुद्धिमान लोक नहीं छी। अही लोकन सन बुद्धिमान लोक सबक कारण आई समाज चौपट भेल जा रहल अछि। की ओझा जी, हम ठीक कह रहल छियनि कि नहीं?
3: अवश्य डॉक्टर साहब, अपने एकदम ठीक कह रहल छियनि, केवल अपन चिंता तो कुकुर बिलाड़ी सेहो कऽ लैत अछि।

0: मानवताक रक्षा तखने संभव अछि जखन समाज एवं देश के ध्यान में राखि कोनो काज कयल जाय।
1: बिल्कुल,
0: अब विवाह में काटर प्रथा व तिलक दहेज भ्रष्टाचार के बढ़वैत अछि।
2: तिलक दहेज से भ्रष्टाचार बढ़ित छैक, उससे कोना हो जाजी।
0: देखल जाओ मिसर जी, जकरा लोग में दू नंबरक पाई छै से कन्यादान में खूब फूक देत अछि, परिणाम स्वरूप समाज में आनो लोग सब के ओकर देखांस लागल लगैत छै, एक प्रकार से ओ परिपाटी बन जाइत अछि। आज तखन जकरा दुइयोटा बेटी रहैत छै से भ्रष्टो आचरण द्वारा टाका जमा करबाक हेतु विवश भ जाइत अछि।
1: ओझा जी एकदम ठीक कहि रहल छथि।
3: हे ई आहे माहे सब छोड़े जाय जाउ अहाँ सब।
4: हाँ हाँ, अहाँ लोकन के आम खेबाक अछि कि गाछ कनबाक अछि? और जी इंजीनियर साहब वाला कथा नहीं पसंद अछि तो दरभंगा डॉक्टर साहब बा पटनाक वकील साहब वाला कथा पसंद करू। 1,00,000 टका तो ओहो लोकन देबाक हेतु तैयार छथि। यो भोला बाबू
1: ठीक कि ने?
4: अहाँ लोकन सौंसे दुनिया के चिंता एखने किया कह रहल छी।
0: बाबू जी त्यागक उदाहरण लोक के असल में स्वयं से प्रस्तुत करो पड़ित छै। भरि दिन झूठ बजिहार व्यक्ति ककरो सत बजबाक उपदेश कोना दो सके छै। तैं डॉक्टर साहबक विवाह दरभंगाक प्रोफेसर साहबक कन्या से हेतन से हमरा लोग निर्णय कलूँ अछि।
2: डॉक्टर साहबक विवाह प्रोफेसर साहबक ओहिठाम हेतन? ओ की दोषक छिन हिनका
3: बुझियो
2: की डॉक्टर साहब? ओ की कहै छथि ओझा जी?
1: ओझा जी एकदम ठीक कहि रहल छथि। आ अपने लोकन के ई जान आराधिक आश्चर्य हैत जे ई घटकैती हमर बहिन नवीना कैलक अछि। ओ लोकन अपन कॉलेज सँ खेलकूद प्रतियोगिता में दरभंगा गेल छली, की कहै छै जाहिठाम प्रोफेसर साहबक परिवार संग रहबाक अवसर भेटल छलै, हुनक कन्या एकरा पसिन पड़ि गेलै। हमहुँ जनै छियनि ओ लोकनि बड़ नीक लोक छथि।
2: ओ तऽ आब बुझलहुँ, अहाँ लोकनि पहिने सँ प्रोफेसर साहबक परिवार सँ संपर्क बनौने छलहुँ। ओ उमेश बाबू
3: की कहै छी भोला बाबू?
2: ओ आब माथा हाथ देला सँ काज नहि चलत, बुझल? हे युगक अनुकूल हमरो लोकन के चलै पड़त।
3: अवश्य

अभी आप सुन रहे थे मैथिली नाटक नबीना। लेखक थे डॉक्टर कमलकांत झा, प्रस्तुतकर्ता सीताराम शर्मा, तकनीकी सहायक सपन दास। प्रतिभागी कलाकार थे धीरेन्द्र कुमार की भूमिका में विनोद, सपन मजुमदार थे उमेश बाबू की भूमिका में, हेमचंद्र मिश्र भोला बाबू, सतीश कुमार सिंह दिनेश की भूमिका में थे, भोला झा शंकर के रूप में थे, अनूप कुमार थे डॉक्टर कमलाकांत, कल्याणी चौधरी नवीना की भूमिका में थी, मीरा झा भौजी और लक्ष्मी देवी माए। ये पूर्व प्रसारित नाटक आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा मीडियम वेव पर 231.5 मीटर, साथ ही साथ न्यूज ऑन AR एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट पर। फिलहाल समय हो चला है कि हम अपने दिल्ली केंद्र से जुड़ते हैं हिंदी समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय

में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के मुख्य कार्यक्रमों में पहले हम आपको जानकारी देते हैं इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। देशभक्ति गीत अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे। आज के कलाकार होंगे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और राजेंद्र मेहता। आपके अनुरोध पर पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 1:15 से। 2 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 2:05 पर समय होगा इलाकाई खबरों का। 2:10 रोजगार सूचना का समय होगा और 2:15 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत और 3 बजे समय होगा विद्यापति गीत का। एक नजर अब डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा में संध्या 5 बजे गजल गीत ये आप सुनेंगे और 5:40 से फिल्मी गीत सुनेंगे आप। 6 बजे हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 6:05 पर कार्यक्रमों के विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। 6:10 विद्यापति गीत का समय होगा। मैथिली संवाद का प्रसारण होगा 6:25 से। काम घर के अंतर्गत सुनिएगा गुनगुनाइत मन, पत्र आधारित लोकगीत और प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। समय होगा 6:30 कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत। खेती गृहस्थी ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा ये कार्यक्रम होगा 7 बजे से। कीटनाशी दवाओं के छिड़काव में सावधानी चर्चा का विषय रहेगा। 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और 8:15 पर आज समय होगा क्रीड़ा जगत का। 9:30 पर फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रमों को। अभी समय हो रहा है हम आप तक पहुंचाएं देशभक्ति गीत। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत। फिल्म सरफरोश, क्षमा करेंगे, फिल्म शहीद का ये गीत है। आवाजें हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र मेहता की।

अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आइए अब आनंद लेते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी अनुरोध का।

दोस्तों, ये जो गीत हम लेकर आते हैं, ये आपके अनुरोध पर ही हम लेकर आते हैं। पत्रों द्वारा आप हमें अनुरोध भेजते हैं और उन्हें हम शामिल करते हैं आपके नाम के साथ। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी सुनने वाले का, और स्वीकार करें रविंद्र मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी सावन भी है, अगस्त का महीना है, यानी हमारे आज़ादी का महीना, और साथ ही सावन में रक्षाबंधन का भी समय होता है। तो आपके पत्रों में से कुछ ऐसे पत्रों को हम खोज कर लाए हैं जिनमें आपने हमें फरमाइश भी ऐसे ही गानों के किए हैं, कुछ देशभक्ति गीत, कुछ राखी के गीत और कुछ सावन के गीत। शुरुआत करते हैं हम आई मिलन की रात फिल्म के इस गाने से, जिसे आवाजें दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। गीत को लिखा समीर ने, संगीतबद्ध किया आनंद मिलंद की जोड़ी ने। बोल है सावन का महीना आया है, और इस गाने को पसंद किया है आप सबों ने बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद। इसी गाने के लिए अनुरोध है दूसरा हमारे पास, फुटानी चौक नरहन एस्टेट से भाई फटफटिया झा, फूलेश्वरी देवी, उदयंत कांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, रामपट्टी गौसनगर से शुभनारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो और जीवन कुमार, राजनगर चांदनी चौक से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और सभी मित्रगण, छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता और सुधांशु कुमार गुप्ता, सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मिंटू कुमार गुप्ता और निक्की कुमारी गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मास्टर रुद्र गुप्ता और एम के गुप्ता। आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल पर न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस कार्यक्रम में आपके पत्रों को हम शामिल करते हैं आपके नामों के साथ, और आपके पसंद के गीत को हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट और मोबाइल सेट पर। अगला अनुरोध भरा पत्र हमारे पास पहुंचा है पीपरपाड़ा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से। उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर। अगला पत्र है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अभिजीत गहवानकर राही, श्रीमती सरिता गहवानकर, प्रिंस गहवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गहवानकर, प्रेनिता गहवानकर, अर्जुन गहवानकर, टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गहवानकर, सुमित गहवानकर, कुमारी ध्वनि गहवानकर परी। एक पत्र है हमारे पास अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दीसा और लबी श्रीवास्तव का। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुम लता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव का। साथ ही साथ सरजुगा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदिवा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म मिलन का ये गीत। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है आप सबों के अनुरोध पर। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू नागर, मोहित नागर। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश साहू। और गोला बाजार बक्सर से ये पत्र हमारे पास आया है श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित का। एक और खत जिसमें इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई गीत हमें सुना दें, इसे भी हम शामिल करते हैं इस गाने के साथ। इसे आप सबों ने भेजा है इनामत टोला, भगवतीपुर, बिहार से। नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुराड़ी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, एस के सहनी। लीजिए आप सबों के लिए ये गीत है फिल्म नूरी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत को लिखा है जान निसार अख्तर ने और संगीत खयाम का है। फिल्म का नाम नूरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। यह कार्यक्रम हर रविवार को आप सुनते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंद के गीत आपके नाम के साथ, जिन्हें आप भेजते हैं हमें पत्रों के द्वारा। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड होगा 846004, 846004। इस पिन कोड के साथ आप हमें अपना नाम, अपने चाहने वालों का नाम और फिल्म का नाम, गाने का बोल, गायक कलाकार, इन सब चीज़ों को लिखकर भेजिए। अगले किसी कार्यक्रम में हम आपके पत्र को शामिल करेंगे हम तक पहुंचने के बाद। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं आकाशवाणी दरभंगा के साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल हैंडसेट पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं वह गीत जिसे पसंद किया आप सबों ने, कनेड़ा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, जीतू, निहारिका, वंश बत्ता। छत्तीसगढ़ भाटपाड़ा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश है आप समूह की। झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरिराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी। और ये हैं डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव,

छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल जय भीए जग भीए राधिका जग भीए बेबी अनिष्का और तन्मय जग भीए। आप सबों ने सुनना चाहा है ये गीत। प्रीति सागर की आवाज है, फिल्म का नाम है हम बच्चे हिंदुस्तान के। गीत के गीतकार हैं सनम गोरखपुरी और संगीतकार हैं जमीर विकानेरी।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने आपसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हम वैसे ही पत्रों को शामिल कर रहे हैं जिसमें आप सबों ने राखी, सावन और स्वतंत्रता, देशभक्ति के गीतों को सुनना चाहा है, उसके लिए हमें फरमाइश भेजा है। अगला पत्र हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में आदर्श नगर मलौट से आप सभी लिखते हैं, राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, झंझारपुर पुरानी बाजार पोस्ट ऑफिस चौक से गोल्डी, अंशु, भव्या, गौरव, गोलू, गौतम, वैभव, सानू, रीसु, जया, सोनू और टोनू के साथ मम्मी पापा, चाचू, चाची और दादी को ये सुनवाना चाह रहे हैं ये गीत। और अगला पत्र हमारे पास है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा, मीना और विपुल कामरे। एक और पत्र हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में जिसे आप सबों ने भेजा है, राजनगर चांदनी चौक मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, मंजीत गुप्ता और मौसम गुप्ता, स्टेशन रोज राजनगर मधुबनी से ललन प्रसाद सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह और गोविंद खंडेलवाल। आप सबों ने सुनना चाहा है ये गीत, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, राहुल देव वर्मन यानी आर डी वर्मन का संगीत निर्देशन। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम अब समय अंतिम की तरफ हो चला है। हम अब शामिल करते हैं उस गीत को जिसे पसंद किया आप सबों ने, गोकुल चौक गंगा जिला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोड़वा से भाई कारी रायकारी, मीना कारी, पुंज राजारियन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी। और ये पत्र है हमारे पास नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रोबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, समीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख, कलेर बिहार से मोहम्मद आरिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूरमहल महसौल से उमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म कर्मा का ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज को अभी आप सुन रहे थे फिल्म करमाने। आप सबों की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में। फिल्मी गीतों का ये सफर फिर अगले रविवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में। तब तक आप हमें पत्र लिखिए और

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। कुछ ही पलों में आप हमारे पटना केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के अधिवेशन भवन में दो दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। इस शिविर में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके और छात्रों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो। राज्य में परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह समिति बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन में तकनीक एवं एआई के माध्यम से

0: कल पटना में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी। प्रदेश में इस अभियान के तहत हर प्रखंड को 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश की स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई। विभाग के अनुसार गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान नालंदा के राजगीर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सीवान, गोपालगंज और बक्सर जिले में वज्रपात के साथ तेज आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ जिले के अवतारनगर, तरैया और अमनौर के थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के हनुमान चौक नौटोली के समीप तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया। इसका उद्देश्य जिले के जरूरतमंद मरीजों, विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: मित्राना वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ मनाई जा रही है। पूरे मुल्क में वंदे मातरम इज्तमाई तौर पर गाया जाएगा। इस मुहिम के तहत राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में कई प्रोग्रामों का इनाकात किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत कल पटना में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी। रियासत में इस मुहिम के तहत हर ब्लॉक को 4000 तिरंगे दस्तियाब कराए जाएंगे, जिनकी सप्लाई जीविका के जरिए की जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में वुजरा, अफसरान और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले सभी मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीककारों को खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन जवां मर्दों की जुरतमंदी हमेशा हर हिंदुस्तानी के लिए काबिले तरगीब बनी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब लेकर भारत छोड़ो तहरीक मुल्क की जंग आज़ादी में नई तवानाई लेकर आई। उन्होंने कहा कि इस तहरीक ने नव आबादियाती हुक्मरानी से निजात पाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम के बेमिसाल अजाइम की अक्कासी की। मानसून के असर से रियासत के मुख्तलिफ खित्तों में बारिश की सूरतेहाल कायम है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिला के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में जबरदस्त बारिश हुई है। महकमा के मुताबिक गलगलिया में सबसे ज्यादा 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान नालंदा के राजगीर में 56 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चली। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सीवान, गोपालगंज और बक्सर जिले में बर्फबारी के साथ तेज आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया गया है। सारण के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनीत कुमार ने फराइज में लापरवाही और डिसिप्लिन शिकनी के खिलाफ जिला के अवतारनगर, तरैया और अमनौर के थाना इंचार्जों को मुअत्तल कर दिया है। मधुबनी जिले के अरेर थाना इलाके के हनुमान चौक नौ टोली के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आने से 3 खवातीन की जाय वकू पर ही मौत हो गई। अररिया जिले में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों ने सदर अस्पताल में खून का अतिया दिया। इसका मकसद जिला के जरूरतमंद मरीजों, खासतौर पर थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को खून फराहम करना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे रोजगार सूचना के विषय में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके लिए कुल पद हैं 395। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 21/7/2026। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10/8/2026। आयु सीमा 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। ऑफिशियल वेबसाइट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .bank.in है। पंजाब नेशनल बैंक LBO का पद, लोकल बैंक ऑफिसर के पद के लिए कुल 545 पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। 20 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेबसाइट होगा pnb.bank.in।

इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट NFR 2026 के तहत 6,777 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन शुरू होने की तिथि 20 जुलाई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 रहेगी। आयु सीमा 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है। इसके लिए वेबसाइट है www.nfrrecruitment.in। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर के ग्रेड 3 पदों के लिए कुल 163 पद पर आवेदन आमंत्रित है। 22 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र है 18 वर्ष से 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम। कुछ पलों में हम आपको दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार सुनवाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने

0: राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।

0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चर्च

0: फुजियांग प्रांत और पड़ोसी फुजियांग प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चेचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमरीका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। एक बार हम फिर से हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा,

0: हृदय हृदय केर वाणी आकाश वाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आइब रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashwani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो। उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, असद भोपाली का लिखा गीत है राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए फिल्म कसूर के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत। विद्यापति गीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे काशीनाथ झा किरण, राम कुमार मल्लिक, गौतम मिश्र और सूर्य नारायण पुद्दार के गाए हुए कुछ विद्यापति गीत।

0: अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत। ये विद्यापति गीत आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा है।
1: नहीं करब बर, नहीं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से विद्यापति गीत। आज के विद्यापति गीत के कलाकार थे काशीनाथ झा किरण, राम कुमार मल्लिक, गौतम मिश्र और सूर्यनारायण पुद्दार। विद्यापति गीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाश

वाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 होने ही वाले हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, सहल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोताओं रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: आप सब लोग को छिपा रहे हैं, अदालत फिर आपसे पूछती है। शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही,
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया।
4: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था।
5: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं कामनी?
6: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
5: क्या मतलब?
6: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
5: ये बात और कोई भी जानता है?
6: नहीं।
5: पाठक भी नहीं?
6: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
3: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की

0: मुझ में हिम्मत नहीं है
1: और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उदारता का ढोंग रचता हूं, पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं या कहीं चला जाऊं, पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं।
2: ओ, ये कौन आ मरा इस समय? कौन है?
3: भैया मैं हूं, मैं यानी केशव ठाकर।
2: क्या है?
3: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
2: ओ हाँ।
3: नमस्कार कामनी जी।
4: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
3: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
2: तुम जरा जल्दी आ गए।
3: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कापी। ठीक है तो मैं जाऊं।
4: फिक्र कीजिए, जल्दी भी क्या है?
3: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
4: बैठिए, क्यों जल्दी है?
2: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
3: जरूरी बात? अति सुंदर। हाँ, कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो।
2: हमारी निजी बातें थी।
3: निजी बात? समझा। आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
2: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
4: क्या हुआ केशव जी?
3: जी
4: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
3: जी जी, बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
2: क्या? तुम जानते हो?
3: जरूर, बहुत अच्छे तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
4: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
3: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
4: होगा कोई, छोड़िए, नाटक पढ़िए ना।
3: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
4: वाह, कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
3: उसमें पात्र है एक लेखक और
2: आत्मकथा लिख लाए हो?
3: नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
2: ये क्या झमेला है?
3: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
2: क्या कहा?
3: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं,
2: तो तुम जानते हो?
4: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या।

0: नहीं शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए। 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी किस पछड़े में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
1: हाँ हाँ पढ़िए ना।
2: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
0: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था। हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
2: अच्छा
0: हाँ? अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
2: उम्र क्या है?
1: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
2: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है ठीक?
0: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
1: और क्या?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
2: क्या
0: के शेखर इन पर जान दे।
2: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
0: जी गोरा।
2: रंग गोरा है?
1: गोरा।
2: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
0: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ
2: देखो केशव मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
0: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
2: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठाकर लिखवाना पड़ेगा।
0: अच्छी बात है।
2: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था, पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
1: मैं जानती हूं लेकिन ओह कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, वो हमारे बीच से चली गई। लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
4: हाँ भाभी।
1: अरे बुद्धू अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
4: अभी ये धोखा नहीं हकीकत है, और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
1: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
4: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
1: क्यों तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
4: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना

0: वो अफ्रीका से लौट आया है।
1: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर घोसला।
0: हाय कैसा है?
1: गोरा, भूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
0: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
1: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
0: अरे
1: नहीं आता।
0: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
1: भाभी आप समझती क्यों नहीं,
0: जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो
1: तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
0: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
1: भाभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
0: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कौमी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर घोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
2: शेखर घोसला को आप जानते हैं? शेखर घोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर घोसला को आप जानते हैं?
3: हाँ जानता हूं, लेकिन उसी अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
4: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक्ति आग में जल उठे।
3: हाँ मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
1: पाठक एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
3: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
1: नहीं, उसका एक दोस्त है।
3: कैसे परेशान कर रहा है?
1: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
3: मतलब
1: मुझे भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
3: और तुम ये सब ना मानो
1: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
3: उस आदमी का नाम क्या है?
1: शेखर घोसला।
3: शेखर घोसला?
1: हाँ हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
3: कामनी या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
1: क्यों?

0: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
1: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चटपट स्वार्थी नीच कंगाल।
0: एक शब्द भी और कहा तो कला घोटूंगा।
1: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
0: हाँ, शक के इसी डरावनी

0: पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी, ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। मगर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सच में जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखमत खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं, उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आभास, कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपना बंदी बना लिया था। सुध बुध खत्म कर देने वाले कुत्रोग की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
2: केशव जी,
0: कहले जी,
2: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
2: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
3: और क्या?
2: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सपने कहा वैसा।
2: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकीन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी, रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी जलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था, और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
2: सुनिए कवि जी,
0: जी
2: कल शो है ना?
0: हाँ।
2: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी,
2: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
2: कवि जी।
0: जी जी,
2: आप आ गए।
0: मैं बिल्कुल आ गया।
4: ये पहली पंक्ति के तो
0: टिकट
4: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
4: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
0: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
4: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो, मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखो आपके उस खूबसूरत चित्र को।
0: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
2: आप बड़े गहरे।

0: कबीर जी।
1: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्त की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा दी। जेल में मैं उसे देखने गया।
0: शेखर खोसला,
1: मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
0: शेखर खोसला
1: जेल की कोठरी।
0: हाँ, पूरा सच।
1: बकली
0: सच के सिवा कुछ नहीं।
1: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
0: शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ, इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना। को कदमाई मिली है जिसे तुम गायर प्रेमी चटो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते? पर शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्तियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों? चुप क्यों शिखर? जवाब तो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो।

0: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया। हाँ,
2: बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे राधर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी। लेकिन उसकी जो ये थी, क्या कहते हैं, अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही। हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है। और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है, इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने कटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियां मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात। हाँ, वाह।
2: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है।
2: हाँ,
1: वो भी बताइए।
2: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली
2: नहीं, कहीं वो सुन ले तो नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस की इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2.50 रुपए हो गए अभी तक, वो कुछ 98 चार्ज होता, तो क्या
1: एक बार की सलाह पे 98

0: यानी पांच बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
1: तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
0: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए।
1: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला,
0: शरारती भी
1: और दूसरे पे हावी होने वाला। और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया। कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है, ये फलां का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहां बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम वैसे दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर, और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर रोल्स।
0: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई,
1: और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है, तो दीप्ति के जो हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा मासूम।
0: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं, और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें, जो असहजता है वो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
1: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने, वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है जी, इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल, इवन आई लव दिस, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली
0: जी,
1: माय एंटायर करियर, इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
0: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
1: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
0: ओ गॉड
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा
0: प्रोसेस में
1: था। नहीं, लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ, और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
0: वाह, ये भी बात है। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
1: जी,
0: और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना, तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में,
1: इसमें कोई शक नहीं,
0: का हिस्सा बनती जाती है।
1: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे

0: क्रिकेट खेलते हैं, इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीड, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन, फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
1: क्या
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह वा।
0: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े
1: हो
0: गए, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेलुलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
0: जी।
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चौल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी, एवरीथिंग इज फेक। तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
1: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहां कहां नहीं घूमे हम। तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए, फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बंबई की चौल पुणे में क्यों। तो कहता है अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग्य चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पुणे में। तो वो बढ़िया चौल थी और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेज और कटखरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से, और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहां के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पुणे की साड़ुंग के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना, ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा,
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
0: इतना प्यारा लगा मुझे, अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी।
2: कौन

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज़ द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परूलकर, पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई उनके गांव में,
0: नायगांव
1: गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा, सब पूरा देख लिया, ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंक गई, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सहीताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी।

0: और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहाँ, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलास राव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर।
1: इंसान की जुझारूपन की मिसाल,
0: जुझारूपन की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी,
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है। वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ मतलब उसकी सौत।
1: बिल्कुल।
0: तो, और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी।
0: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा, गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम हाँ बम्बई में रहकर। मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब। कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में
1: हाँ।
0: तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठकाठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुत से लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है। कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं, लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ। मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपाणी। निपाणी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स हाँ, निपाणी की तंबाकू और निपाणी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय

0: और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपाणी और वहां से लौट रहे थे, और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तमाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तमाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी 5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए। एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, निरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम,
1: वो आपने खुद लिखा है?
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी।
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी।
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर।
1: वाओ।
0: एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन, हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका है, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी

0: बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे, और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में, अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी, और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, स्क्रिप्ट ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से, मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी, तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया गया और सब हक्का बक्का, अंदर सात आठ लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद, तो
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया, तो निकल गया फिर अब चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था, और हाँ। वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए, अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली, काय रे नाना, मैं भी उतनी मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: मतलब क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड, तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी,
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का, मैंने कहा आज मैं हूं तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, अद्भुत।
0: नाना लॉफ्ट एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग उठ के तालियां बजा रहे, और नाना ने जो मुझे जब पिलाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है, उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, हाँ, इसलिए आप बच गई,
0: हाँ,
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं। मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी। और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बदूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: क्या वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा

0: है कुएं पे, पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम, मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बिचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है, उसके पीछे बच्चे, और दौड़ दौड़ के वो कांटे कटुरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ। और फिर वो देखते हैं नीचे, और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना माथे पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं, किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है किसी के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो, और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई।
1: छोटा बच्चा कहता है कितना सुंदर, कितना सुंदर।
0: तो दैट सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक it's a very true film and it keeps you absorbed and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense, I mean, you know, उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत human give and take है, बहुत चीजें है। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है। दिशा
1: जी, एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही
0: हैं? हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत, वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
1: जी,
0: हाँ
1: जी,
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, तो कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है। तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
1: जी,
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है, और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं। तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, शीशे और कुछ तो चारा होगा। तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसा हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आए ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहते हैं अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह। कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूं तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं हा? और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी, तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं, वो गहरी नींद सोया तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोना लेते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है, वो भी

0: सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले। मतलब ये चाहे की प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी। हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन, अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह। हाँ,
0: इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था। तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिन गुना जी। देन द गर्ल विनी माई डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडिंग समाज
1: मानवी की,
0: हाँ, लेकिन आदिवासियों की
1: जी,
0: शी स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी। देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग हैं थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करे फिर। बहुत और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परिकथा है बड़ों के लिए
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल। यू ना भींड है, ना भील है, ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। And tribals have a very unique common factor. They're all very innocent. Yes. They're all very believing. Huh? And they're all very scared, insecure. And they're all very helpful and very loving. So, ye sab jo hai, to wo sab leke humne tribals to bana diye. और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को, मंतरबन
1: जी।
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें। फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। फिर हमने अपनी भाषा बनाई और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, सही भाषा थोड़ी ना।
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत है। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन
1: जी।
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह

0: के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
1: जी।
0: और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स
1: जी। ये गाना सुनते हैं
0: जी। क्या बात
2: बोले।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कुछ गजल। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको सुनवा

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौड़वाल की आवाज़ में ये गज़ल, और इससे पूर्व आपने सुना था चंदन दास की आवाज़ में। लौटते हैं पुनः इस कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: नमस्कार मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस संदेश के बाद पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, आइए हम आपको सुनवाते हैं जसवंत सिंह एवं अनुराधा पौड़वाल की आवाज़ में ये गज़ल।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: इस संदेश के बाद हम आपको सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत एआर रहमान की आवाज में। बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत निर्देशन भी एआर रहमान का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का यह गीत सुनिए। गायक कलाकार हैं एआर रहमान।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। संध्या के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है,

0: उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत।

गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 6 खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 7:50 पर तथा रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पुनः फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। विषय होगा वो 10 वर्षीय बालक। कृषि चर्चा आप सुनते हैं प्रतिदिन 5:55 पर तथा 6:05 पर आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कल का विषय होगा उच्च रक्तचाप कारण लक्षण और निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एके गुप्ता। वंदना कार्यक्रम प्रातः 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। रामचरितमानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रतिदिन प्रातः 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा 9:05 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।

फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन में 9:50 पर तथा विद्यापति गीत आप सुनेंगे 10:30 पर। शास्त्रीय गीत का शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे NCERT 30 प्रायोजित कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार 12:30 पर। देशभक्ति गीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 1:10 पर। पुनः 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर और दिन के दोपहर के 2:30 पर आप आनंद लेंगे पुनः फिल्म संगीत का। 3:00 आप सुनेंगे लोकगीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं

अभी आप सुन रहे थे विनय कुमार झा के स्वर में ये विद्यापति गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं काशीनाथ झा किरण के स्वर में।

सुलाई छिकाई तो सुरसरी गेल बढ़ियाई।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे काशीनाथ झा। किरण प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई पटनाक अधिवेशन भवन में दो दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविरक उद्घाटन कयलनि। मुख्यमंत्री कहलनि जे राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम परीक्षा व्यवस्था आ छात्रक उज्ज्वल भविष्यक निर्माण लेल एनडीए सरकार प्रतिबद्ध अछि। एहि शिविर में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण आ छात्र केन्द्रित बनेबाक दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सब विद्यालय धरि पहुंचेबाक लेल राज्य स्तरीय समिति के गठन कयल गेल अछि, ताकि प्रत्येक विद्यालय के उत्कृष्टताक केंद्र बनाओल जा सके आ छात्रक सिखबाक स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो। राज्य में परीक्षा सब के सुचारू, पारदर्शी आ आधुनिक बनेबाक लेल राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समितिक गठन कयल गेल अछि। ई समिति बोर्ड आ प्रतियोगी परीक्षा सभक संग संग नीक आकलन लेल सुझाव देत। शिविर में इहो निर्णय लेल गेल जे शिक्षा

0: व्यापार लेल विशेष सहयोग कैंप आयोजित कयल जायत। हर घर तिरंगा अभियान आइ सँ शुरू भऽ गेल अछि। एहि मासक 17 तारीख धरि चलय वला एहि अभियानक उद्देश्य लोक सभ के अपन घर पर तिरंगा फहराबय आ देशभक्ति आ राष्ट्रीय एकता सँ जुड़ल कार्यक्रम सभ मे भाग लेबाक लेल प्रोत्साहित करब अछि। हर घर तिरंगा अभियानक प्रारंभ वर्ष 2022 मे भेल छल आ आब ई एकटा पैघ जनभागीदारी अभियानक रूप लऽ लेने अछि। एहि वर्ष हर घर तिरंगा अभियानक विशेष महत्व अछि किएक तऽ ई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष दिवसक संग मनाओल जा रहल अछि। देशभरि मे वंदे मातरम के सामूहिक गायन सेहो होयत। एहि अभियानक अंतर्गत राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे कतेको कार्यक्रम सभक आयोजन कयल जा रहल अछि। काल्हि पटना मे भव्य तिरंगा यात्रा सेहो निकालल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व मे ई यात्रा भोर 10 बजे जेपी गोलंबर सँ कारगिल चौक धरि निकलत। प्रदेश भरि मे एहि अभियानक अंतर्गत सभ प्रखंड के 4000 तिरंगा उपलब्ध कराओल जायत, जाहि के आपूर्ति जीविकाक माध्यमे कयल जायत। एहि तिरंगा यात्रा मे मंत्री, अधिकारी आ पैघ संख्या में लोक सब सम्मिलित होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेबय वाला सब स्वतंत्रता सेनानी आ आंदोलनकारी सब के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहलनि जे एहि वीर सभक साहस सदैत सब भारतीय के लेल प्रेरणा स्रोत बनल रहत। प्रधानमंत्री कहलनि जे महात्मा गांधी के नेतृत्व सँ प्रेरित भऽ कऽ भारत छोड़ो के आह्वान देशक स्वतंत्रता संग्राम में नव ऊर्जा लऽ कऽ आयल। ओ कहलनि जे ई आंदोलन औपनिवेशिक शासन सँ मुक्ति पयबाक लेल भारतीय जनताक अटूट संकल्प के देखौलक। बिहार विधानसभाक अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार काकोरी खड्यंत्र मे सम्मिलित वीर सपूत लोकनिक देशभक्ति के स्मरण करैत कहलनि जे काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्रामक अमिट अध्याय अछि जे देशभक्ति आ बलिदानक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कयलक। मॉनसूनक प्रभाव सँ राज्यक कतेको भाग मे वर्षाक परिस्थिति बनल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक दरमियान किशनगंज जिलाक गलगलिया आ जिलाक मदनपुर मे भारी वर्षा भेल अछि। एहि दरमियान नालंदाक राजगीर मे 56 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ हवा चलल। मौसम विभाग अबयवला 24 घंटाक दरमियान कैमूर, रोहतास आ किशनगंज जिलाक किछु भाग मे भारी वर्षाक येलो अलर्ट जारी कयलक अछि। मधुबनी जिलाक अरेड़ थाना क्षेत्रक हनुमान चौक नवटोली लग तेज गतिक गाड़ी के चपेट में अयबा सँ 3 महिला के घटनास्थल ही पर मृत्यु भऽ गेल। सुपौल जिला में हर घर तिरंगा अभियानक अंतर्गत तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विथ तिरंगा, तिरंगा रंगोली आ वंदे मातरम गीत सहित कतेको गतिविधि सभक आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के माध्यम सँ आम लोकनि में राष्ट्रध्वजक प्रति सम्मान, देशभक्ति आ राष्ट्रीय एकताक भावना के आओर सुदृढ़ करबाक संदेश देल गेल। अररिया जिला में हर घर तिरंगा अभियानक अंतर्गत एसएसबीक 52वां बटालियन के जवान सब सदर अस्पताल में रक्तदान कयलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत गुनगुनैत मोन सुनयला सब स्नेही श्रोता लोकन के मिहिर कुमार झा के नमस्कार, संगे प्रीति बहन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मिहिर जी, और संगे गाम घर सुननिहार समस्त श्रोतागण के हमरा दिशा यानी कि प्रीति के दिशा सस्ने नमस्कार।
0: देखियो प्रीति जी, आई रवि दिन छी, आजुक दिन श्रोता लोकन द्वारा पठाओल गेल चिट्ठी में हुनक पसीना गीत जे लिखने रही छै तो मैथिली लोकगीत से हुनक पसीना गीत अपना सब हुनक पठाओल गेल चिट्ठी के माध्यम से हुनका सबके सुनबै छियै। देखियो पसीना गीत तो सुनबैते छियनि, आ एकटा प्रायोजित कार्यक्रम अपना सब सेहो सुनब ममता के आँचल। मुदा कार्यक्रम के शुरुआत अपना सब दोहा से करै छी। आज हम दोहा अनलौं है से कबीर द्वारा रचित दोहा अनलौं है। ई दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाय आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। देखियो प्रीति जी, कबीरदास अपन ई रचना के कहै छथि जे खूब मोटगर मोटगर पोथी पढ़ेले पढ़ला से केओ पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकै छथि। जँ हुनका प्रेमक सच्चा आधा अक्षर जे छै ओ जाब तक अंतर साथ नहीं हेतनि तो पंडित नहीं बन सकै छथि। देखियो विद्या जे छै से तऽ नीक छै, विद्या के अध्ययन करक चाही, लेकिन प्रेम पूर्ण विनम्रतापूर्ण सहनशीलता क्षमाशीलता ई सब विद्या ददात विनियम छै। तऽ विद्याक अर्थ होइ छै जे विनयशील रहल ओकरे प्रेम कहल जाइ छै।
1: हाँ, बहुत नीक गप कहलिए। हाँ, और एकटा चीज और, जे किताबी ज्ञान तो हेबे चाही लेकिन ओकर संग संग जे हमरा में अगर व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं रहत तो वो किताबी ज्ञान अधूरा रह जात अछि। और जे प्रेम कहलौं विनम्रता कहलौं तो बिना एकर हम अपन व्यवहारिक जीवन में ककरो से कोनो संबंध राखै छी या कोनो नीक संबंध जे राखै छी तो वो बिना प्रेम के बिना विनम्रता के ई संभव नहीं होते। और अपन सबक जे अजुका कार्यक्रमक जे अछि गुनगुनाइत मोन तो ओहिमे अपना सब श्रोतागण के पसीनक गीत सब सुनै छी। तो हम देख रहल छी कि अहाँ के हाथ में चिट्ठी सब अछि, तो अखन ई कतौ से चिट्ठी आयल?
0: हमरा लग जे चिट्ठी आयल प्रीति जी, रामपट्टी गौस नगर से आयल अछि। लिखनहार छथि शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जगदेव प्रसाद। अहाँ लग कोन चिट्ठी आयल?
1: हमरा लग एकटा चिट्ठी अछि, ओ अछि जतुका किशनपुर सँ, और ई लिखने छथि आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, चांदनी नाज आ लाली साफी।
0: ई सब सुनऽ चाहै छथि ई गीत, तो सुनल जाउ।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार है। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, इस सन्ने से पहने अपना सब कुमकुम झा से सुंदर सन मैथिली लोग सुने चलन, श्रोता सबके पसंद पड़ल हेतन। और चिट्ठी के सिलसिला शुरू करी छी। अहाँ लग कोन चिट्ठी आयल ये?
4: हमरा लग चिट्ठी आयल सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से। भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूक भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, और एक टा और चिट्ठी आयल हमरा लग बैंक।

0: रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 300 संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद। और एक और चिट्ठी है इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से, नूतन सानी, कंचन सानी, बबीता सानी, कोमल सानी, नव्या सानी, सुधा सानी, विभा सानी, ज्योति सानी, पार्वती सानी, त्रिपुरारी सानी, संतोष कुमार सानी, रासो देवी, रिंकू देवी, रिचा कुमारी, निशु कुमारी, सुकुमारी देवी।
1: ये सब सुनो चाहे चाहे अरविंद कुमार झा के स्वर में भोला सुनियो ई दुपंत।

0: अखन अपनासँ अरविन्द कुमार झासँ ई सुन्दर सन गीत श्रोता सबके सुनेलियनि। आ बेर भऽ रहल अछि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आँचल, तऽ सुनल जाय ई प्रायोजित कार्यक्रम। ई प्रायोजित कार्यक्रम किछु विलम्बके सुनब, अखन एकटा अपना सब सन्देश सुनि लै छी।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: अब सुने छी प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
4: नमस्कार, राजेश हूँ। एक बार फिर से एक

0: और अंक ममता का आंचल वैसे दंपतियों के लिए, जी हाँ, जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। दिमाग में अगर आप ये लेकर बैठे हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है या ईश्वर की यही मर्जी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा नहीं होना एक छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनसे मिलिए। ढेर सारी बातें होंगी आज के कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को राजेश को लेकर आने का मौका दिया अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के IVF सेंटर श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने, जो कि पटना के भिखना पहाड़ी मोड़ में है, और यहाँ होती हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार और हर कार्यक्रम में स्टूडियो में होती हैं। आज भी हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर लिख लीजिए। नंबर है 9162562266, 9162562266। ये नंबर हमने आपको बताया है और लिखवाया इसलिए है कि जिनके घर में भी ये समस्या है, पास पड़ोस में समस्या है, आपकी नजर में किसी के पास भी ऐसी स्थिति है, तो आप उसको ये नंबर 9162562266 अवश्य दे दें, और रखने के लिए नहीं, बात करने के लिए बेहिचक बात करें डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से, जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, IVF विशेषज्ञ हैं, IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि सावन आ गया है, और राजेश जी, हम लोग भी देखते हैं कि सावन में हर साल हजारों कांवरिया जल लेकर के शिव जी के पास जाते हैं। हर के मन में कुछ ना कुछ मन्नत होता है, कुछ ना कुछ चाहत होती है कि वो पूर्ण हो जाए। बहुत लोगों का ऐसा भी चाहत होता है कि उन जो निसंतान रहते हैं वो चाहते हैं कि उनको
0: बच्चा हो जाए।
1: तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है। तो हम मानते हैं कि आपका जो इस बार का जो चाहत है, या सपना है, वो जरूर पूरा हो जाए।
0: हाँ, बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं ना कि कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए, और यहाँ ये कर्म है वैसे दंपतियों के लिए कि सही डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज कराना, अपनी परेशानियों को जानना। नहीं तो एक सवाल उठता है मेरे मन में, डॉक्टर श्रद्धा पूछ ले आपसे,
1: बिल्कुल,
0: कि कब तक इंतजार करें?
1: बिल्कुल, आस्था बहुत जरूरी है, मन में श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है जी। लेकिन ये भी जानना चाहिए कब तक आप खुद से प्रयास करें, हाँ। और कब आप डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास मिलें
0: जी।
1: जिस दंपति ने पिछले एक साल से बिना कोई गर्भ निरोधक के जो कोशिश कर रहे हैं संतान के लिए, और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को कहा जाता है निसंतान दंपति
0: जी।
1: वो अभी किसी भी आसपास डॉक्टर से मिल सकते हैं ताकि प्रारंभिक जांच हो और कुछ दवाई उन्हें मिले, और ये देखा गया है कि 70% लोग को इन दवाइयों से ही ठीक हो जाता है,
0: बच्चा हो जाता है।
1: लेकिन अगर 2 साल हो गए और अभी तक आपको बच्चा नहीं ठहर पाया, जब आप बिना गर्भ निरोधक के प्रयास कर रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल भी करा लिया, और अब शादी के 2 साल हो गए या कोशिश करते 2 साल हो गए और बच्चे नहीं ठहर रहे, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझेंगे, और जब बीमारी पकड़ाएगी तभी सही इलाज हो पाएगा, और सही, और फिर तभी आपको संतान मिल पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इलाज होगा तभी ना, जब आपको क्या बीमारी है इस बात का पता चले, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भी आस्था के साथ ही जाना होगा। आपको हम बताते हैं डॉक्टर श्रद्धा का एक बार फिर से नंबर, और नंबर है 9162562266, 9162562266।

छह पैसे की भी समस्या नहीं। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी ने यहाँ ईएमआई पर चिकित्सा कराने की सुविधा दी है, और वो भी एक दो ईएमआई नहीं, एक दो इंस्टॉलमेंट नहीं, 24 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे सकते हैं। एक और जानकारी दे, इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर अगर आप जाते हैं श्रद्धा आईवीएफ जो भिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है, तो आपको पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला कंसल्टेशन फी, पहला परामर्श मुफ्त होगा। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है पहला, वो मुफ्त

0: जो भिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है, तो आपको पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला कंसल्टेशन फी, पहला परामर्श मुफ्त होगा। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है पहला, वो मुफ्त होगा। और अगर आप आगे की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वहां एडमिट होते हैं, इलाज कराते हैं, तो अटेंडेंट का रहना फ्री है। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा, ये निसंतानता कितने दिन, क्या सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन एक बेसिक सवाल कि क्या होता है, क्या क्यों होता है ये, क्या ये वंशानुगत भी होता है क्या?
1: बिल्कुल, निसंतानता के बहुत सारे कारण हैं। निसंतानता कभी जेनेटिक भी होता है,
0: हाँ।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसको ठीक किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से।
0: हाँ।
1: कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लाइफस्टाइल के साथ कुछ ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है
0: जी।
1: तो सबसे पहले जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब वो चीज जिसे सिर्फ हम लोग अपनी दिनचर्या में जो हम लोग बदलाव करें,
0: हाँ।
1: वही ठीक कर ले तो आपको जो निसंतानता का दिक्कत है वो ठीक हो सकता है। जैसे कि अगर कोई दंपति, जिस खासकर अगर औरत या पुरुष भी अगर मोटापा से जूझ रहे हैं, तो वो भी एक निसंतानता का कारण होता है
0: जी।
1: क्योंकि मोटापे में अपने आप में वो बहुत सारी बीमारी लाता है। कितने औरत में ये देखा गया है कि जो मोटापा से जूझ रही है उनमें अंडा बनने में दिक्कत होता है।
0: अच्छा।
1: जिसको हम लोग पीसीओडी या पीएमओएस कहते हैं। तो ऐसे दंपति में कहा जाता है अगर औरत सिर्फ अपना वजन कम कर ले तो उनको अंडा बनने की जो प्रक्रिया, उनके जो अंडादानी में जो अंडा है वो बनने की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी
0: जी, जी।
1: और उनका निसंतानता ठीक हो जाएगा।
0: हाँ, हाँ।
1: और भी काफी चीजें, जैसे कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं,
0: हाँ,
1: जैसे वैसे लोग जो
0: तनाव में,
1: हाँ, वैसे हाँ, लोग जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं और तनाव के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कारण है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो ये भी एक कारण है निसंतानता का। साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं,
0: अच्छे से हंसते,
1: बिल्कुल हंसते खेलते, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करें, बल्कि ये समझें कि ये जो बीमारी है वो दंपति का बीमारी है,
0: दोनों का
1: हाँ। ना ही सिर्फ पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है या औरत जिम्मेदार है
0: जी।
1: दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराएं, बल्कि दोनों एक मिल करके, एकजुट होकर के इस बीमारी को हराएं ताकि उन्हें बच्चा प्राप्त हो। पति पत्नी अच्छा समय बिताएं और नींद जरूर लें। कहा जाता है कि 8 घंटा का नींद बहुत जरूरी होता है, और नींद वो समय है जिस समय आपका बॉडी रिपेयर होता है, यानी कि आपका शरीर का जो भी स्ट्रेस लेवल है वो घटता है। तो आप अपना नींद ठीक से ले। कुछ लोगों का आदत होता है मोबाइल बहुत देखना, रात भर रील स्क्रॉल करना, उस आदत को कम करें। जो भी आप रील देखते हैं दिन में देखें, रात में नहीं देखें, क्योंकि रात में आपको पूरा सोना जरूरी होता है।
0: इसके अलावा आगे आप कुछ कहें, उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे एक बार फिर से डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266, 9162562266। ये तो हुआ कि हम सुधार कर सकते हैं अपने हैबिट्स में।
1: बिल्कुल।
0: कुछ ऐसी भी चीजें जो कि जिनको सुधारा नहीं जा सकता, या
1: सुधारा जा सकता है लेकिन
0: डॉक्टर की मदद,
1: विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से। निसंतानता के जो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरा होता है, वो होता है औरत के अंडादानी में या तो अंडा नहीं बन रहा है या बन के फूट नहीं रहा है। कारण पीसीओडी हो सकता है या उनका अंडा खत्म हो रहा हो। ये बहुत कॉमन है वैसे औरत में जहाँ शादी के बहुत सारे साल हो गए, वो 35-40 के और अग्रसर हो रही है, तो वैसे औरत में देखा गया है कि अंडा कम हो रहा है
0: जी।
1: और इंडियन स्टडी ये बताता है कि औरत अगर 30 साल से ज्यादा हो रही है
0: जी, जी।
1: उसी उम्र से औरत के अंडादानी में अंडा कम होने लगता है।
0: अच्छा।
1: तो जरूरी है जो अपना फैमिली प्लान करना चाहते हैं, सही समय पे अपना प्रेगनेंसी प्लान कर लें। और वैसे दंपति जो खासकर कामकाजी लोग हैं, उनके लिए आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी सुविधा आ गया है। खैर, ये तो एक चीज हुई। बाकी जो कारण है, हो सकता है औरत का नली जाम हो। नली जाम यानी कि नली वो जगह है जहाँ औरत का अंडा और शुक्राणु मिलता है
0: जी, जी।
1: अगर नली जाम होगा तो अंडा और शुक्राणु कभी नहीं मिल सकता है, बच्चे नहीं हो पाएंगे। या फिर कोई दूसरा कारण हो, जैसे इंडोमेट्रियोसिस हो, या बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो, रसौली हो, टीबी हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, ये भी

0: कारण होते निसंतता के।
1: डॉक्टर से मिलेंगे तब तो पता चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी है विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। उसी तरह पुरुष में भी देखा गया है कि पुरुष के शुक्राणु कम होते हैं, पुरुष के शुक्राणु का चाल कम होता है, किडनी में वेरिकोसील जैसे, या जैसे पहले कभी हर्निया का कोई सर्जरी हुआ है, ये सब भी कारण होते हैं जिसमें पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं वो घट जाते हैं। तो शुक्राणु भी अगर कम होंगे तब भी वैसे दंपति को अपने आप से बच्चा ठहरना मुश्किल होता है, और अब जरूरत होता है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और इलाज कराए।
1: इलाज कराएं। हम तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर के पास रहिए, निश्चिंत रहिए, कुछ भी समस्या हो आप डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर श्रद्धा एक बात, या बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि नॉर्मल जो कंसीव करती है महिलाएं और आईवीएफ में जो कंसीव कर करके और जब गर्भाशय में डाला जाता है बच्चा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आईवीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
0: नॉर्मल जो महिला कंसीव करती है उनमें ये होता है कि ऐसी औरत में भ्रूण अपने आप बन जाता है, भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा अपने आप बन जाता है, और वो भ्रूण 9 महीने तक रहता है औरत के गर्भ में और बच्चा डिलीवरी होता है। निसंतान दंपति जिनका खासकर शादी का 3-4 साल से ज्यादा हो गया हो और जिन्हें आईवीएफ की जरूरत हो, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे दंपति होते हैं चाहे कारण कुछ भी हो, पुरुष में कारण हो या औरत में कारण हो
1: जी।
0: लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि औरत में भ्रूण नहीं बन पाता है।
1: हाँ।
0: तो आईवीएफ में हम भ्रूण जो है अपने आईवीएफ लैब में बनाते हैं
1: जी।
0: यानी कि औरत को 10 दिन या 12 दिन इंजेक्शन देते हैं, उनसे अंडा निकालते हैं सुई के माध्यम से, पुरुष के शुक्राणु से मिला के अपने आईवीएफ लैब में बच्चा बनाते हैं। जब ये बन जाता है तो औरत के गर्भ में 5 दिन का बच्चा डाल दिया जाता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: यानी कि जो मेन प्रॉब्लम चाहे जो भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि उनमें भ्रूण नहीं बनता है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं हम लोग, भ्रूण बना के सीधा औरत में डाल देते हैं, और यही भ्रूण 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है, और जैसे बाकी लोग को डिलीवरी होता है वैसे ही सामान्यता इन औरतों में भी डिलीवरी होती है।
1: ये तो विज्ञान की मदद लेकर के और प्रोसेस सेम है, वो तो इसमें कहीं से कोई गलत
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: हाँ। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुकी है, खासकर वैसे निसंतान दंपति जो बहुत साल से निसंतानता से जूझ रहे हैं, उनको मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि विज्ञान की मदद लें, और विज्ञान ने आईवीएफ जैसे तकनीक दिए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है, और इसका सक्सेस रेट 60-70% होता है। निसंतान दंपति को अगर वो सही समय पे अपने डॉक्टर से मिलते हैं, इलाज कराते हैं, तो उनको बच्चा ठहर जाता है विज्ञान की मदद से।
1: विज्ञान की मदद लेनी चाहिए, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही कि आज हम और बातें कर सकें डॉक्टर श्रद्धा से। आप सबों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, परेशान ना हो, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, और कोई भी समस्या होना तो 916256226 916-2566 ये डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, इस पर बात कर ले। आईवीएफ बच्चा प्राप्त करने का एकदम बहुत आसान तरीका है। चलने से पहले एक बात आपको बता दें कि अब ईएमआई से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी 24 इंस्टॉलमेंट में पैसा देकर, इसलिए पैसे की भी अब कोई समस्या नहीं रही। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: हाँ, अखन अपना सब ई प्रायोजित कार्यक्रम ममता कांचल सुनै छलौं, ऐसे निसंतान दंपति सबके सहयोग भेटतनि। देखियौ प्रीति जी, अब कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत गुनगुनाइत मन के समय अब संपन्न होबा पर अछि। अब एहि दलान पर अपना सब खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सब किसान भाई सबके स्वागत करै छै, नमस्कार करै छै।
4: हाँ, किसान भाई सबके स्वागत अछि खेती गृहस्थी कार्यक्रम में।
3: हाँ, देखियौ अपन भारतक किसान जे छथि से खेती पथारी करैत खूब मेहनत से करै छथि। आ देखियौ प्रीति जी, भारतके कृषि प्रधान देश कहलो गेल छै, आ भारतक अर्थव्यवस्था जे छै प्राय खेती पथारी पर निर्भर करैत अछि, ई कही तऽ कोनो अतिशयोक्ति नहि। देखियौ अपन सब किसान भाई जे छथि से सब तरहक फसिल जेना अन्न, फल, फूल, तीमन, तरकारी के खेती पथारी करै छथि। एहि सब तरहक खेती पथारीमे खूब नीक जकाँ खेतक

0: माटिके जोति कोरिके खेतके तैयार करै छथि, नीक उन्नत किस्म बीयाके बाग करै छथि, नीक आ उपयुक्त खाद आ पानि सेहो दै छथिन, जाहिसँ नीक फसल हुनका खेतमे लहलहनि। मुदा फसलक गाछमे जँ कीटनाशी दवाक उपयोग नहि करता तऽ भऽ सकैत अछि जे फसल तैयार होइत ओहि फसलमे कीड़ा मकोड़ा लागि जाइ छै आ फसल जे हुनका जतेक मुनाफा हेबाक चाही जतेक लगता लगबै छै ओहिसँ कम होइ छै, किया तऽ कीड़ा मकोड़ा जे छै से फसलके नुकसान कऽ दै छै। लेकिन प्रीतिजी, फसलके पैदावारमे प्रतिकूल प्रभाव पड़ै एहिके लेल किसान भाइ लोकनि फसल गाछमे कीटनाशी दवाके प्रयोग तऽ करै छथि, ई नीक बात छै, मुदा कीटनाशी दवाके छिड़काव करैत समय हुनका किछु सुरक्षाके या बचावके सेहो सदिखन ध्यान राखऽ पड़तनि जे अपन सुरक्षा केना करता।
1: हाँ, जहन कीटनाशी दवाके अगर दवाईके अगर छिड़काव करै छी तऽ ओकर लेल किछु किछु सावधानी सेहो अपनाबऽ पड़ैत अछि, कियाकि जखन दवाई तैयार करै छी तऽ छिड़काव करैत समय हाथमे दस्ताना, फेर मुँहमे मास्क या रेस्पिरेटर, चश्मा, जूता और पूरा शरीर के ढोकऽ वाला कपड़ा पहिर ली। एकर अतिरिक्त छिड़काव के क्रम में खाना पीना जना कोनो एहन चीज जे अगर धूम्रपान ई सब तो नहीं करी, और दवाई के हाथ से मिलाब के लेल या फिर हाथ से छुअ से कहीं तब बची, मतलब दस्ताना पहिर के तखने ओकरा मिलाबी, या फिर कोनो डंटा ई सब एना लऽ कऽ तखन ओकरा ओहि घोल के मिला दियो, और छिड़काव केला के बाद हाथ अपन चेहरा शरीर के साबुन पानी से नीक जकाँ धोली और जे कपड़ा पहिरने रहै छी छिड़काव के काल में तो ओकरा बदल ली, और दवाई के धियापुता और पशु के पहुँच से दूर राखी, यानी कि सुरक्षित स्थान पर ओकरा राखि दी, और खाली कंटेनर जे दवाई वाला रहैया तो ओकरा या तो जरा दी या फिर फोड़ के, या फिर कहबक के तात्पर्य ई भेल जे ओकरा घरेलू उपयोग में ओहि डिब्बा के नहीं आनू, और लेबल पर देल जे भी निर्देश देल गेल रहैत अछि ओहि दवाई के डिब्बा पर तो ओकर पालन अवश्य करी, और दवाई कखनो इहो होइत अछि कि मिलाब काल में छिलक जाइत अछि या शरीरे पर खस पड़ैत अछि तो ओकरा गलतियों से ई नहीं जे अगर पड़ गेल तो मतलब धो ली, और तुरंत जे भी दवाई के जे डिब्बा पर जे भी लेवल पर जे देल प्राथमिक उपचार रहैत अछि जे निर्देश देल गेल अछि ओकर पालन करी, और संगे चिकित्सकीय सहायता अवश्य ली। तो ई तो भऽ गेल व्यक्तिगत पक्ष, मतलब केना सावधानी ली। एकर अतिरिक्त अगर फसल के पक्ष के गप करी तो कीटनाशी के जे प्रयोग अछि ओ कीट के नीक पहचान और ओकर आर्थिक क्षति स्तर यानी ETL के आधार पर करी, और केवल अनुशंसित दवाई या फिर मात्रा और फसल के लेल ही ओकरा प्रयोग करी। बेसी मात्रा में दवाई डालऽ सँ कीट नियंत्रण बेहतर नहीं होइत अछि, एहिसँ फसल के नुकसान और अवशेष के समस्या भऽ जाइत, कियाकि कखनो को लागत रहैत अछि ने कि बेसी दऽ देबै तऽ जल्दी कीड़ा मकोड़ा मरि जेतै, तऽ बेसी नहि जतेक ओकर देबऽ के जतेक ओकर मात्रा छै ओतबे दियो, और अलग अलग कीटनाशक के बिना जानकारी के आपस में नहीं मिलाबी, और तेज हवा, अत्यधिक गर्मी या फिर वर्षा या ओस के स्थिति में छिड़काव से बची
0: बचबाक चाही,
1: और फसल के अवस्था के अनुसारे सही नोजल और पानी के मात्रा के प्रयोग करी, और कटाई से पहले निर्धारित प्रतीक्षा अवधि जकरा वेटिंग पीरियड कहै छी ओकर पालन करी, संगे एकैटा रसायन के बार बार उपयोग नहीं करी, ऐसा कीट में प्रतिरोधकता विकसित भ जाइत अछि। और ई तो भ गेल, एकर अतिरिक्त अगर हम कखनो कोनो कीटनाशी दवाई के अगर करै छी तो एकर हमर पर्यावरण पर सेहो एकर असर पड़ै छै, तो ओहू पर ध्यान दे, क्योंकि कीटनाशी के नाला, तालाब, कुआं, नदी और आन जल स्रोत के पास छिड़कैत समय विशेष सावधानी राखी, और तेज हवा में छिड़काव नहीं करी जैसे दवाई आसपास के फसल आ पर्यावरण में पसरि जाइत अछि। मधुमाछी जे होइत अछि या फिर अन्य परागण करऽ वाला लाभकारी कीट के बचाव के लेल फूल आबह के समय छिड़काव से बची या फिर उचित समय पर करी, आवश्यकता से बेसी दवाई हम पहले कहलूँ कि ओकर नहीं करी, हाँ, और दवाई के बचल जे घोल अछि ओकरा जल स्रोत, खेतक नाली या खुलल स्थान पर नहीं फेंकी, और कीटनाशी के कारण माटि, पानि आ लाभकारी

0: जी पर हुआ वाला प्रभाव के ध्यान में रखकर समेकित कीट प्रबंधन के प्राथमिकता दी।
1: देखियो प्रीति जी, ये तो बड़ नीक गप कहलियन, लेकिन कीटनाशी दवा का जखन छिड़काव करे थे जे उपकरण से या पंप से करे छथि या कोनो स्प्रे मशीन से, तो स्प्रे मशीन या वो यंत्र के पहले सादा पानी दक जेंच लेबाक, क्योंकि कीटनाशी दवा मिला के आ पंप जब खराब भ गेले या उल्टे ओकर असर छिड़काव का जे छिड़के छथि तिनके दिस नै तो मुड़ल छै, तो उपकरण के पहले सादा पानी से जाँच कर लेबाक चाही। एहि तरह जे किसान भाई लोकन कीटनाशी के दवा के उपयोग करता तो फसल अपनो सुरक्षित रहते ना, फसलो निक जगह हेतै।
0: और फसल निक जगह हेतै तो आमदनी निक जगह,
1: आमदनी के जखने आमदनी निक हेतै तो मन प्रसन्न रहते हैं। आ प्रसन्न मन में गीतनाद सुने के सुहो मन हेतै, और सुनबे छै एकटा ई सुंदर संगीत।

0: अखन अपना सब शारदा सिन्हा सँ ई सुंदर सन झूमर सुनै छलहुँ, महल पर कागा बोले है रे। प्रीति जी, आब किसान लोकनि सब भाई सब जे खेती पथारी करै छथि, ओहिमे जे हुनका मध्यावती मौसम पूर्वानुमान के जे सूचना रहै छनि, तो ओहिसँ हुनका कृषि कार्य करैमे जे कखन अपन फसल के समेट के राखी, केना करी, तो मौसम के जे कखन वर्षा हैत, ई सब जे पहिने बुझल रहै छनि, तऽ हुनका ओहिसँ सहयोग भेटै छनि। तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से देल गेल मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वान अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में मेघ गर्जत, वज्रपात आ तेज हवा चले के सेहो संभावना छे। एहि संगे वैशाली, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा आ मुजफ्फरपुर जिला में 5 से 9 अगस्त के दौरान मेघ गर्जन एवं वज्रपात के संभावना सेहो रहै के संभावना अछि। आ जखने एहि सब जिला में पूर्वानुमान अवधि के दौरान मौसम जे परिस्थिति से जे छै वर्षा के सेहो बनि सकैत अछि।
1: एक क्रम में हल्लुक से मध्यम वर्षा के हेबाक अनुमान अछि। और जना अहाँ कहलिए आसपास के क्षेत्र में जना सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के किछ भाग में भारी वर्षा हेबाक सेहो संभावना अछि पूर्वानुमानित अवधि के क्रम में। अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि।
0: आ पूर्वान अवधि के दौरान जे भोर के जे सापेक्ष आर्द्रता के गप करब, तो भोर में 90% आ दुपहरिया में सापेक्ष आर्द्रता 60 से 65% रहे के संभावना सेहो छै। आ पूर्वान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वा आ दक्षिण दिशा के हवा बही के सेहो संभावना छै। एकर चालि जे रहत से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चले की बसात के संभावना अछि। आ किसान भाई लोकनि के किछ समसामयिक सुझाव सेहो छै, ओ कहियौ।
1: बुआई सॉरी धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में ब्यूटाक्लोर 3.0 लीटर आ या फिर प्रीटिलाक्लोर 1.5 लीटर अथवा पेडी मेथालीन 3 लीटर मिलाकर मौसम साफ रह के स्थिति में समान रूप से छिड़काव करें।
0: देखियो प्रीति जी, मिश्रीकंद जरा अपना सब केसोर कही छे, ई जे छे अखन बुआई का समय चल रहल है, तो एक खेती के लेल नीक जल निकासी जना उचरस जमीन जे छे तै भूमि पर रोपाई कऽ सकै छथि। एहि के लेल संशोधित बिया के जे छथि राजेंद्र मिश्रीकंद 1, राजेंद्र मिश्रीकंद 2, एहि तरहक अपना सब एरिया में ई मिश्रीकंद के आधार केसोर के अनुमान अथी जे छे बिया से नीक मानल गेल छे। अगस्त में जब बाग करता है तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बिया दे सकै छथि। आ ओते जे गाछ से गाछ के दूरी 30 से 15 सेंटीमीटर दूरी रखत। आ प्रति हेक्टेयर खाद के गप करब तो 200 क्विंटल गोबर के खाद, कंपोस्ट, 80 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 80 किलोग्राम पोटास जे छे से दे देबाक चाही। आ नेत्रजन के में जे छे से बेसी मात्रा जे छे पोटास आ फास्फोरस के मात्रा जे छे से बुआई के समय में से देबाक चाही। आ खरीफ प्याज के गप करब तो खरीफ प्याज के रोपाई अगस्त माह में पूरा कऽ लेबाक चाही। वर्षा जल के उपयोग कऽ खेती के तैयार करे आ अंतिम जुताई में 150 से 200 क्विंटल सरल गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर के दर से प्याज रोपे समय मिला देबाक चाही खेत में। आ पौधशाला के खतपतवार मुक्त रखे के लेल तेज धूप में बचाव के लिए 6 से 7 फीट ऊंचाई पर शेड नेट सेहो लगा देबाक चाही, जैसे

0: गाछके गाछ सुखायत नहि। आ आमके मे की कहल गेल यऽ?
1: आमके लेल जुलाई अगस्तमे आमके रोपण करी। कलमी गाछके लेल 10x10 मीटर आ बिज्जू गाछके लेल 12x12 मीटर दूरी राखी। सघन बागवानी हेतु 5x5 मीटर एवं अमरपाली किस्मके लेल 2.5x2.5 मीटर दूरी अपनाबी। पौधाके नियमित छटाई एवं प्रशिक्षण करी। और मशरूम जे अखन के मौसम में दुधिया एवं ऑयस्टर मशरूम के खेती करी। उत्पादन कक्ष यानी शेड के मरम्मत एवं सफाई कऽ कऽ आवश्यक तैयारी पूरा कऽ ली। आ उच्च गुणवत्ता वाला स्पॉन केवल प्रमाणित स्रोत या फिर विश्वसनीय प्रयोगशाला सँ ही प्राप्त करी।
0: देखियौ, केरा जे छै अपना सबके ओहिठाम कोनो भी पाबनि तिहार हैत, आब अखन देखियौ चौरचन हैत, छठि हैत, ओहिमे केराके खपत बड़ बेसी छै। तऽ केराके रोपाइके लेल स्वस्थ आ रोग मुक्त सर्कल जे छै ओकर गाछ से ओ पौधाके रोपाइ करबाक चाही। आ लम्बी किस्मके जे केराके गाछ छै से 20x20 मीटर तथा बौना किस्मके केराके गाछके 1.5 से 1.5 मीटर दूरीपर रोपक चाही। आ प्रत्येक गड्ढामे 5 किलो गोबरके खाद, 500 ग्राम अरण्डीके खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फोट, 100 ग्राम म्यूट्रेट ऑफ पोटास आ 10 ग्राम कार्बिफ्राइड मिलाकर ओहि खद्धामे दऽ कऽ तखन केराके गाछ रोपबाक चाही। एहि तरह जे किसान भाइ लोकनि खेती पथारी करता तऽ नीक उपजा हेतनि। आ नीक जखने नीक उपजा हेतनि तऽ नीक आमदनी हेतनि, आ नीक आमदनी हेतनि तऽ गीतनाद सुनैके सेहो मन करै छनि। तऽ की विचार?
1: फेरसँ एक बेर किसान भाइ सबके गीतनादके आनन्द दी और सुनी अखन
0: अरविन्द कुमार झाके स्वरमे।

0: बटोही रहि जा हमरे गाँव ई सुंदर सन बोलकर संग अरविंद कुमार झा के आवाज में अपना सब सुनै छलौं। आब खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय आब संपन्न होबा पर अछि। किसान भाई से आज्ञा लेल जाओ। नमस्कार प्रीति जी।
1: नमस्कार।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से है।

0: AIR-FID.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। पटना में कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा की। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। इस महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का

0: लक्ष्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: तिरंगा अभियान के तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कल पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी। इस तिरंगा यात्रा में मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। प्रदेश में इस अभियान के तहत हर प्रखंड को 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। इधर अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया। वहीं सुपौल जिले में तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा और तिरंगा रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में एसएसबी ने ग्रामीणों और बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली के बेस अस्पताल में रक्तदान शिविर के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने काकोरी षड्यंत्र में शामिल वीर सपूतों की देशभक्ति को याद करते हुए कहा कि काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम का अमिट अध्याय है, जिसने देशभक्ति और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वराज और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले इस अमर बलिदानियों को देश नमन करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह में कहा कि शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं हल करेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि परीक्षा में सुधार के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
2: दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे।
1: वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी।
3: मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति ने भी ईमान बेचा तो ये पूरे सरकार पे धब्बा लग, इसीलिए उसके लिए कड़े कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और उस कड़े कानून को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नजर रखने के लिए, परीक्षा सुधारों के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कमेटी बनाएंगे और पारदर्शी परीक्षाएं हमारी हो।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 नए आपराधिक कानून का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने पुडुचेरी में आयोजित समारोह में यह बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है, ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक

0: सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण के पीएम आवास योजना शहरी के तहत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सोनपुर के सर्वांगीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोनपुर क्षेत्र को भविष्य की उच्च जरूरतों के अनुरूप विकसित करने, ढांचागत सहूलियतों को मजबूत करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि सोनपुर को केवल पटना के विस्तार के रूप में सीमित न रखकर स्वतंत्र पहचान वाले एक आधुनिक, नियोजित, आर्थिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने समस्तीपुर के रोसड़ा में बनने वाले बाईपास का आज शिलान्यास किया। 85 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले इस बाईपास से सिंधिया घाट रेलवे फाटक और रोसड़ा बाजार को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खगड़िया, बेगूसराय से दरभंगा और समस्तीपुर की ओर जाने वाली भारी वाहनों को भी सुगम मार्ग मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले मंगलपुर पुल के पिलर संख्या 5 के पास से क्षतिग्रस्त स्पैन की मरम्मत का काम IIT और NIT पटना के इंजीनियरों की निगरानी में शुरू हो गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह 5 से 7 बजे तक पुल पर आवागमन बंद रहेगा। श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को लेकर आज सुबह से ही अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। शिवभक्त गंगा का पवित्र जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल और वाहनों से रवाना हो रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ घाट और पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। कांवरिया पथ और घाटों पर लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम भी मुस्तैद है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पटना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अंगदान के लिए जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंगदान से हम किसी व्यक्ति के जीवन में नए प्रकाश का संचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सारण जिले के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए दिखवारा, मांझी, परसा, अमनौर, एकमा,

0: गड़खा, इसुआपुर, जलालपुर, मशरक, नगरा और रिविलगंज सीएचसी का चयन किया है। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई है। विभाग के अनुसार गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ जिले के अवतारनगर, तरैया और अमनौर के थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। मधुबनी जिले के अरेज थाना क्षेत्र के हनुमान चौक नौटोली के समीप तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से तीन महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सारण के गरखा और नगरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने डकैती और पॉक्सो एक्ट में फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित उज्जवल दृष्टि योजना के तहत 1000 से अधिक मरीजों की जांच की गई। इनमें से 600 से अधिक मरीजों को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। पटना में कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की जाँच के लिए समिति के गठन की घोषणा की। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
8: पश्चिम चंपारण जिले में गंडक के तराई क्षेत्र और जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश से गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले दिनों गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद सहायक और पहाड़ी नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सावन शुरू होने के साथ जिले के मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वाल्मीकि नगर के जंगल में स्थित जटाशंकर मंदिर, रामनगर के नर्मदेश्वर मंदिर, बनकटवा के कोटेश्वर नाथ शिवालय, बेतिया के कालीबाग स्थित तिलेश्वर नाथ शिवालय, पियूनीबाग शिवालय और सागर पोखरा स्थित मनोकामना शिवालय में श्रद्धालु जला

0: चेक कर रहे हैं। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर गौनाहा प्रखंड के मंगुराहा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि बाघ जंगल के पारिस्थितिक संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले महीने जिले के 8 प्रखंडों में नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से रिमोट के माध्यम से इन महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग स्थित राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किए गए। मझौलिया, चनपटिया, योगापट्टी, बैरिया, ठकराहा, सिकटा, भीतहा और पिपरासी में ये महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। बगहा में 29.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड के 3 मंजिला अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया। वहीं पतलार में 5.75 करोड़ की लागत से 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। बगहा के विधायक राम सिंह ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों के साथ चिकित्सकों के रहने की भी व्यवस्था होगी। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के दौरान पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम ने बगहा स्थित पशु अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को तत्काल सुधार कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजने के निर्देश दिए। बाल हृदय योजना के तहत जिले में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 23 बच्चों को निःशुल्क जांच और उपचार के लिए पटना भेजा गया। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल के लिए रवाना किया। जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए दिशा की बैठक हुई। बेतिया समरणालय सभागार में लोकसभा सचेतक और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, मंत्री नंद किशोर राम, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जिले के विधायक और बड़ी अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। डॉक्टर जायसवाल ने जिले की कच्ची सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में शामिल करने के लिए अधिकारियों को 1 महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग के बैठक में जिले में 3 नए ग्रिड स्थापित करने की अनुशंसा की गई। बैठक में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री नंद किशोर राम, जिला पदाधिकारी तरुण ज्योत सिंह और जिले के विधायक मौजूद रहे। डॉक्टर जायसवाल ने किसानों से बिजली विभाग में आवेदन देकर विद्युत उपभोक्ता बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 1,78,000 विद्युत उपभोक्ता हैं और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बेतिया में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने 183 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा वितरित किया। कार्यक्रम में जिले में पिछले 100 दिनों में हुए विकास कार्यों पर आयोजित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिले की सैकड़ों आशा और आशा फैसिलेटरों ने समरणालय गेट के पास धरना दिया। बिहार राज्य आशा संघ और आशा फैसिलेटर संघ के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में बकाया भुगतान, ड्रेस और मोबाइल रिचार्ज की राशि में कटौती समेत 11 सूत्री मांगों को उठाया गया। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में नरकटियागंज में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को गिरफ्तार किया। आरोप है कि नल जल योजना के रख रखाव के भुगतान के लिए संवेदक से 28,000 रुपए की मांग की गई थी। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के शेखौना में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने विद्यार्थियों से आदर्श नागरिक बनने और देश, समाज, परिवार के सेवा करने का आह्वान किया। दत्तक ग्रहण संस्थान बेतिया में आवासित 5 माह की बालिका को जिला पदाधिकारी तरुण ज्योत सिंह ने दत्तक ग्रहण आदेश के माध्यम से पुणे के एक दंपति को कानूनी रूप से गोद दिया। संस्थान से अब तक 49 बच्चों को कानूनी रूप से गोद दिया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सड़क का यह गीत, अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाज़ में। बोल हैं समीर के और संगीत निर्देशन रॉबिन भट्ट का है।

0: अभी आप सुन रहे थे सरक फिल्म का यह गीत अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाज में।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है क्रीड़ा जगत, निर्माण एवं वाचन दीपक कुमार झा का है, प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद की है। श्रोताओं क्षमा करेंगे, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सरक का ही एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे सरक फिल्म का यह गीत। अनुराधा पौडवाल एवं बावला मेहता की आवाज़ में बोल थे समीर के, और संगीत निर्देशन रॉबिन भट्ट का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए। फिल्म का नाम है साल्ट ब्रिज। गायक कलाकार हैं श्रीकांत आचार्य, बोल हैं अभिजीत के, और संगीत निर्देशन भी अभिजीत का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे का यह गीत शान की आवाज में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है क्रीड़ा जगत कार्यक्रम। निर्माण एवं वाचन दीपक कुमार झा का है और प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद की है।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।

कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, आज के इस खेल कार्यक्रम में भी हमने बहुत कुछ लाया है। हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की, साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर सुनेंगे एक वार्ता। वार्ताकार होंगे संजय कुमार। साथ ही खेल से जुड़ी बहुत सारी बातों को हम साझा करेंगे। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का भारत दौरा, इस विषय पर आर प्रज्ञानंदा बने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियन, और इसके साथ साथ खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। श्रोताओं, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसे राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। यह ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 साल में आयोजित की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से उन देशों के एथलीट हिस्सा लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे।

0: कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य हैं। इसकी शुरुआत साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी, जिसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जब ब्रिटिश का उपनिवेशवाद समाप्त हुआ और ब्रिटेन के अधीन रहे देश आजाद हुए, तो आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता के आधार पर उन स्वतंत्र देशों के एक संगठन को राष्ट्रमंडल कहा गया। क्योंकि ये खेल इसी संगठन के सदस्य देशों के बीच आयोजित होते हैं, इसलिए साम्राज्यवादी शब्द ब्रिटिश को हटाकर इसे राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, अतः इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। 1930 से 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, 1970-74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया और 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। भारत ने पहली बार 1934 में इन खेलों में हिस्सा लिया था। भारत ने साल 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी की थी। श्रोताओं, आइए कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर एक वार्ता सुनते हैं। विषय है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन। वार्ताकार हैं संजय कुमार।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत का दमदार प्रदर्शन, मुक्केबाजी में नया इतिहास, नए सितारों का उदय और भविष्य की उम्मीदें। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम 2026 की, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि यह प्रदर्शन पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना में कितना महत्वपूर्ण और अलग हुआ, तथा आने वाले एशियाई खेलों और ओलंपिक के लिए इससे क्या संकेत मिलते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे अभियान की कहानी। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सफल समापन हो चुका है। इस बार भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में वे पूरे दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, इंग्लैंड 110 पदकों के साथ दूसरे और कनाडा 62 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पहली नजर में 39 पदक कम लग सकते हैं, लेकिन जब हम इन खेलों के स्वरूप को समझते हैं तब इस उपलब्धि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार प्रतियोगिता में भारत के कई पारंपरिक और सबसे मजबूत खेल कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग शामिल ही नहीं थे। इन्हीं खेलों से भारत को पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में बड़ी संख्या में पदक मिले थे। यदि तुलना करें तो 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए स्वर्णिम अध्याय रहे, जहां भारत ने 101 पदक जीतकर इतिहास रचा था। 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने 66 पदक जीते और 2022 के बर्मिंघम खेलों में 61 पदक अपने नाम किए। ऐसे में 2026 के 39 पदकों का मूल्य केवल संख्या से नहीं बल्कि परिस्थितियों और सीमित खेलों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस खेल की जिसने इस बार भारत की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण नींव रखी, वो है मुक्केबाजी। भारतीय मुक्केबाजों ने इस बार इतिहास रच दिया। भारत ने मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान है। सबसे खास बात यह रही है कि भारतीय मुक्केबाजों ने केवल पदक ही नहीं जीते बल्कि पूरा टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। महिला मुक्केबाजों ने जिस आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, उसने भारतीय मुक्केबाजी के उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर पेश कर दी। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और प्रिया घनघस ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एम्मा सू ग्रीन ट्री से हार गई और उन्हें

रजत पदक मिला, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत की सफलता को और मजबूत किया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय मुक्केबाजी अब केवल कुछ स्टार खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के पास युवा प्रतिभाओं की मजबूत फौज तैयार हो चुकी है। अब बात एथलेटिक्स की। इस बार भारतीय एथलेटिक्स के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे गुलबीर सिंह। उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे एक ही राष्ट्रमंडल खेल में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ में भारत की पहचान पहले बहुत मजबूत नहीं रही है। गुलबीर सिंह ने साबित किया कि भारतीय धावक अब विश्व स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। डेकाथलॉन में तेजस्वी शंकर ने कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर एक बार फिर अपनी निरंतरता साबित की। युवा खिलाड़ी यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाई। बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। भारतीय वेट लिफ्टरों ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इस खेल में एक स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम में अपनी खिताबी हैट्रिक पूरी की। उनकी निरंतर सफलता भारतीय खेल जगत के लिए प्रेरणा है। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि कई भारतीय वेटलिफ्टर अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक नहीं पहुंच सके। इसका अर्थ यह है कि खिलाड़ियों में क्षमता अभी और अधिक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी से निखारा जा सकता है। जूडो से जुड़ी बात करते हैं। इस बार जूडो ने भी भारतीय खेल इतिहास में नया अध्याय लिखा। अस्मिता डे इस खेल में भारत की पहली राष्ट्रमंडल चैंपियन बनी। वहीं हर्ष सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय जूडो को नई पहचान दिलाई। यह उपलब्धि बताती है कि भारत अब उन खेलों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां पहले हमारी मौजूदगी सीमित मानी जाती थी। ग्लासगो 2026 भारत के पैरा खिलाड़ियों के लिए भी ऐतिहासिक रहा। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर नया इतिहास रचा। झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत का पहला पदक दिलाया। पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में डबल पोडियम हासिल किया। लगभग 2 दशक बाद भारतीय पैरा एथलीटों ने एथलेटिक्स में ऐसी सफलता हासिल की जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया। यदि महिला और पुरुष खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तुलना करें तो भारतीय बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। महिला खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते, जबकि पुरुष खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 13 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 23 पदक अपने नाम किए। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय महिला खिलाड़ी अब केवल बराबरी नहीं कर रही बल्कि कई खेलों में नेतृत्व भी कर रही है। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत कुल 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा, लेकिन लॉन बॉल्स, जिम्नास्टिक, तैराकी और कुछ एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद से कम और निराशाजनक रहा। अब यदि पूरे अभियान का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत ने कम खेलों में भी अपनी गुणवत्ता का परिचय दिया है। हालांकि विशेषज्ञों यह भी मानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की प्रतिस्पर्धा में बड़ा अंतर होता है। कुछ स्पर्धाओं में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इस बार मौजूद

0: नहीं थे, इसलिए भारत को अभी तकनीक, फिटनेस, खेल विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुसार अनुभव पर और अधिक काम करना होगा। फिर भी यह प्रदर्शन कई सकारात्मक संकेत देता है। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड सफलता, जूडो में पहला स्वर्ण, एथलेटिक्स में नए इतिहास, पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन और महिला खिलाड़ियों का बढ़ता दबदबा यह साबित करता है कि भारतीय खेलों का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। अब नजर भविष्य पर डालते हैं। सितंबर में होने वाले एशियाई खेल और उसके बाद ओलंपिक भारत के लिए बड़ी परीक्षा होंगे। यदि भारतीय खिलाड़ी इसी आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में और मजबूत कदम बढ़ा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को मिली है। ऐसे में अगले 4 वर्षों में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अधिक अनुभव दिलाना बेहद जरूरी होगा। ग्लासगो 2026 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 603 हो गई है और भारत अब कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में चौथा सबसे सफल देश बन चुका है। यह उपलब्धि केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि उनके परिवारों, प्रशिक्षकों, सहयोगी स्टाफ और पूरे देश के विश्वास का भी सम्मान है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ने भारत को कई नए सितारे दिए हैं। इस प्रतियोगिता ने यह संदेश भी दिया है कि यदि सही दिशा, आधुनिक प्रशिक्षण और मजबूत खेल नीति के साथ आगे बढ़ा जाए तो भारत आने वाले वर्षों में विश्व खेल रंगमंच पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन, इस विषय पर यह वार्ता। वार्ताकार थे संजय कुमार। श्रोताओं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने होने वाले भारत दौरे के लिए 16 सदस्यीय अंडर 19 पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में भारतीय मूल के न्यू साउथ वेल्स के खिलाड़ी नील पटेल को भी शामिल किया गया है। यह टीम भारत के खिलाफ राजकोट और अहमदाबाद में 5 मैचों की मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेलेगी। न्यू साउथ वेल्स के रहने वाले नील पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए खिलाड़ियों में गिना जाता है। यह दौरा 4 सप्ताह तक चलेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ 3 50 ओवर के मैच और 2 4 दिवसीय मैच खेलेगी। ये मुकाबले 13 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 के बीच राजकोट और अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। इस टीम का चयन यूथ नेशनल सिलेक्शन पैनल ने किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया टीम के हेड कोच पूर्व क्रिकेटर टीम नील्सन होंगे। नील्सन फिलहाल डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 प्रोग्राम की देखरेख कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए यह बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा है कि भारत की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेलने से खिलाड़ियों की तकनीकी और मानसिक क्षमता का परीक्षण होगा। श्रोताओं, बात करते हैं ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के बारे में। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए ग्रैंड चेस टूर GST के सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। 20 साल के प्रज्ञानंदा ने पेनल्टीमेट दूसरे अंतिम राउंड में उज्बेकिस्तान के जावोहिर सिंदारोव के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर एक राउंड बाकी रहते हुए ही खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने 35 में से 23 अंक जुटाए और दूसरे स्थान पर रहे खिलाड़ी से 1.5 अंक आगे रहकर अपने करियर का पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीता। टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से ही लगातार दमदार प्रदर्शन किया। रैपिड और ब्लिट्ज दोनों फॉर्मेट में उन्होंने बढ़त बनाए रखी। आखिरी राउंड से पहले उनकी बढ़त इतनी मजबूत हो गई थी कि अंतिम मुकाबले का नतीजा उनके चैंपियन बनने पर कोई असर नहीं डाल सकता था। सोशल मीडिया की माने तो यह उनके करियर का पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब कहा जा रहा है। एक राउंड बाकी रहते ही उन्होंने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। प्रज्ञानंदा शानदार फॉर्म में है।

इससे पहले जून 2026 में उन्होंने नॉर्वे चेस का खिताब भी जीता था। ओस्लो में खेले गए टूर्नामेंट के अंतिम राउंड में उन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्होंने अंतिम दौर में लगातार 4 क्लासिकल मुकाबले जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। पूर्व में नॉर्वे चेस जीतने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई स्थित मुख्य सचिवालय में प्रज्ञानंदा को सम्मानित भी किया। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की ओर से उन्हें 50 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके साथ शतरंज की कुछ चालें भी चली थीं। मालूम हो कि तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाले आर प्रज्ञानंदा का जन्म 10 अगस्त 2005 को हुआ था। वे 2018 में 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उस समय वे भारत के सबसे युवा और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। उनकी बड़ी बहन आर वैशाली भी ग्रैंड मास्टर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। श्रोताओं, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है, जिसमें दुनिया के कई शीर्ष ग्रैंड मास्टर हिस्सा लेते हैं। इस खिताब के साथ प्रज्ञानंदा ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में एक और बड़ी सफलता अपने नाम की। और अब ज्ञान की बातें खेल जगत के अंतर्गत, आज हम खो खो खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। इस खेल में मैदान के दोनों ओर दो खंभों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक अनूठा स्वदेशी खेल है जो युवाओं में ओज और स्वस्थ संघर्षशील जोश भरने वाला है। यह खेल पीछा करने वाले और प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक तंदुरुस्ती, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। खो खो किसी भी तरह की सतह पर खेला जा सकता है। खो खो का जन्म स्थान पुणे कहा जा सकता है। यह खेल महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में अधिक खेला जाता है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रचार अब बढ़ गया है। यह खेल सरल है और इसमें कोई खतरा नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इस खेल को खेल सकते हैं। खो खो खेल में न किसी गेंद की आवश्यकता होती है न बल्ले की। इसके लिए केवल 111 फुट लंबे और 51 फुट चौड़े मैदान की आवश्यकता होती है। दोनों ओर 10-10 फुट स्थान छोड़कर 4-4 फुट ऊंचे लकड़ी के दो खंभे गाड़ दिए जाते हैं और इन खंभों के बीच की दूरी 8 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित कर दी जाती है कि दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध दिशाओं की ओर मुंह करके अपने अपने नियत स्थान पर बैठ जाते हैं। प्रत्येक दल को एक एक पारी के लिए 7-7 मिनट दिए जाते हैं और नियत समय में उस दल को अपनी पारी समाप्त करनी पड़ती है। दोनों दलों में से एक एक खिलाड़ी खड़ा होता है। पीछा करने वाले दल का खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी को पकड़ने के लिए सीटी बजाते ही दौड़ता है। विपक्षी दल का खिलाड़ी पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों का चक्कर लगाता है। जब पीछा करने वाला खिलाड़ी उस भागने वाले खिलाड़ी के निकट आ जाता है, तब वह अपने ही दल के खिलाड़ी के पीछे जाकर खो शब्द का उच्चारण करता है तो वह उठकर भागने लगता है और पीछा करने वाला खिलाड़ी पहले को छोड़कर दूसरे का पीछा करने लगता है। पहले इस खेल का कोई व्यवस्थित नियम न था। खेल की लोकप्रियता के साथ इसके नियम बनते बिगड़ते रहे। 1914 ईस्वी में पहली बार पूना के डक्कन जिमखाना ने अनेक मैदानी खेलों के नियम लिपिबद्ध किए और उनमें खो खो भी था। खो खो की पहली प्रतियोगिता पूना के जिमखाने में 1918 ईस्वी में हुई। फिर सन 1919 में बड़ौदा के जिमखाने में भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तब से समय समय पर इस खेल की अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है। यह 27x16 मीटर होता है। मैदान के अंत में दो मुक्त आयताकार क्षेत्र होते हैं। आयताकार की भुजा 16 मीटर और दूसरी भुजा 1.50 मीटर होती है। इन दोनों आयताकारों के मध्य में दो लकड़ी के स्तंभ होते हैं। केंद्रीय गली 24 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। प्रत्येक पारी में 9-9 मिनट छूने तथा दौड़ने का काम बारी बारी से होता है। प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती है, 2 पारियों छूने की और 2 पारियां दौड़ने की होती है। रनर खेलने के क्रमानुसार स्कोर के पास अपने नाम दर्ज कराएंगे। पारी के आरंभ में पहले 3 खिलाड़ी सीमा के अंदर होंगे। इन तीनों के आउट होने के पश्चात 3 और खिलाड़ी खो देने से पहले अंदर आ जाएंगे, जो इस अवधि में

प्रवेश न कर सकेंगे, उन्हें आउट घोषित किया जाता है। अपनी बाड़ी के बिना प्रविष्ट होने वाला खिलाड़ी भी आउट घोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया पारी के अंत तक जारी रहती है। तीसरे रनर को निकालने वाला सक्रिय धावक नए प्रविष्ट होने वाले रनर का पीछा नहीं करेगा, वह खो देता है। प्रत्येक टीम खेल के मैदान के केवल एक पक्ष से ही अपने रनर प्रविष्ट करेंगे। धावक तथा प्रत्येक रनर समय से पहले भी अपनी पारी समाप्त कर सकते हैं। केवल धावक या रनर टीम के कप्तान के अनुरोध पर ही अंपायर खेल रोककर पारी समाप्ति की घोषणा करता है। एक पारी के बाद 5 मिनट तथा 2 पारियों के बीच 9 मिनट का ब्रेक होता है। लीग प्रणाली में विजेता टीम को 2 अंक प्राप्त होते हैं। पराजित टीम को 0 अंक तथा बराबर रहने की दशा में प्रत्येक टीम को 1-1 अंक दिया जाता है। यदि लीग प्रणाली में लीग अंक बराबर हो तो टीम अथवा टीमें पर्चियों द्वारा पुनः मैच खेलती हैं। ऐसे मैच नॉकआउट प्रणाली के अंतर्गत खेले जाते हैं। यदि किसी कारणवश मैच पूरा नहीं होता है तो यह किसी अन्य समय खेला जाता है और पिछले अंक नहीं गिने जाते हैं, मैच शुरू से ही खेला जाता है। यदि किसी एक टीम के अंक दूसरी टीम से 12 या उससे अधिक हो जाएं तो पहली टीम दूसरी टीम को धावक के रूप में पीछा करने को कह सकती है। यदि दूसरी टीम इस बार अधिक अंक प्राप्त कर ले तो भी उसका धावक बनने का अधिकार बना रहता है। यदि हम इस मैच के अधिकारी की बात करें तो इसमें 2 अंपायर होते हैं, 1 रेफरी होते हैं, 1 टाइमकीपर और 1 स्कोरर होते हैं। भारत के खो खो की यदि हम मुख्य स्पर्धाएं की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय स्पर्धा, राष्ट्रीय कुमार स्पर्धा, राष्ट्रीय निम्न स्तरीय कुमार स्पर्धा, अंतर शाले माध्यमिक स्पर्धा, राष्ट्रीय महिला स्पर्धा और अंतर विद्यापीठ स्पर्धा है। भारत में खो खो के लिए भारतीय खो खो महासंघ जिम्मेदार है। ज्ञान की बातें खेल जगत के अंतर्गत आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे खो खो खेल के बारे में, और अब चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। विमेंस एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पिछले गुरुवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया है। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को होगी। पहला मुकाबला थाईलैंड और हांगकांग के बीच होगा। भारत पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है। यह विमेंस एशिया कप का 6ठा एडिशन होगा जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ साथ थाईलैंड, हांगकांग, चीन को रखा गया है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE और इंडोनेशिया शामिल है। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही आयोजित किए जाएंगे। विमेंस एशिया कप के T20 फॉर्मेट में अब तक 5 टूर्नामेंट खेले गए हैं। इनमें भारत ने सबसे ज्यादा 3 बार खिताब जीता है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने 1-1 बार ट्रॉफी अपने नाम की। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है। श्रोताओं, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद BCCI ने फिटनेस पैरामीटर्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का फैसला किया है। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 2 तरह के टेस्ट से गुजरना होता है। इनमें 1 ब्रोंको टेस्ट और दूसरा 2 किलोमीटर की दौड़ है। ब्रोंको टेस्ट के लिए पहले 6 मिनट का समय मिलता था, अब इसे 5 मिनट 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके ठीक बाद 2 किलोमीटर की दौड़ 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होती है। जानते हैं कि ब्रोंको टेस्ट क्या है। ब्रोंको टेस्ट मूल रूप से रग्बी से जुड़ा है। एक सेट में 20, 40 और 60 मीटर की अप डाउन स्प्रिंट करनी होती है। इस तरह के 5 सेट लगातार करने होते हैं, यही ब्रोंको टेस्ट है। पहले यह 6 मिनट में करना होता था। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर के नाम अब 522 T20 मैचों में 14,833 रन है, जबकि पोलार्ड ने 746 मैचों में 14,803 रन बनाए हैं। बटलर ने यह उपलब्धि द 100 लीग में मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स की ओर से खेलते हुए वेल्श फायर के खिलाफ हासिल की। उन्होंने 20 गेंदों में 51 रन की तेज पारी खेलकर पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया।

अमेरिका के यूजीन में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के पहले दिन की बात करें तो भारत के तीन खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव और टी धरलीधरन ने क्वालिफाई किया, जबकि महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। 19 साल के आशीष यादव ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो के ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में 69.87 मीटर का थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर की डेट तय कर दी है। 10 टीमों वाला यह टूर्नामेंट अगले साल 21 फरवरी से 23 मार्च तक खेला जाएगा। हालांकि इसकी मेजबानी किस देश में होगी इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदला गया है। आईसीसी ने जुलाई में 2027 वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट जारी किया था। इसके तहत क्वालिफायर जीतने वाली टीम 14 टीमों वाले वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप में सीधे पहुंचेगी। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें वर्ल्ड कप के पहले राउंड सुपर सीरीज में खेलेंगी। यहां शीर्ष पर रहने वाली एक टीम मेन स्टेज की 12 टीमों में जगह बनाएगी। 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन 4 अक्टूबर से 11 नवंबर तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 12 अलग अलग स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: अभी आप क्रीड़ा जगत सुन रहे थे। निर्माण एवं वाचन दीपक कुमार झा का था। प्रसारण प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा

0: पहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT, ISM, IIM रांची और XMRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है।

0: न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की

0: बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास।

0: आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai.
2: India finished at the 4th spot on the medals table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: संकल्प बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फहरिस्त के अफराद के लिए, 14,000 से ज्यादा दर्ज फहरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं। स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था। PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद।
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे जीजियांग और फुजान सूबे मुतासर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ये बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाक़े की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाक़े को एक संगीन वाक़या करार दिया है। ये वाक़या इस माह की 4 तारीख को पेश आया, जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क EOD 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाक़े जुनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत की तनसीब शुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 गीगावाट के हदफ से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हासिल करदा ये बड़ी कामयाबी 2030 के लिए 500 गीगावाट सलाहियत के हदफ का 60% ज्यादा है।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए फिल्म परख का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन सलिल चौधरी का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म धरती कह पुकार का यह गीत सुनिए। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए फिल्म आया सावन झूमके का यह गीत मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म किस्मत का यह गीत। सुनिए, अमीर भाई एवं अरुण कुमार की आवाज में।

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा।

0: अपना
1: क्यों?
0: अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके

0: अभी आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का यह गीत अमीर बाई एवं अरुण कुमार की आवाज में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 10 बजने ही वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसेटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
1: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
2: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता फॉलोड बाई अडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णु भट्ल कृष्णवेणी of the renowned Vishnu Bhatla sisters and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6. She was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashvani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
1: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: In tonight's broadcast, श्रीमती सात्विका मोहन is accompanied on violin by श्री ओ राजशेखर, on मृदंगम by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
1: Shrimati Satvika Mohan apne gayan ka aarambh Tyagraj ki ek kriti se kar rahi hain,

0: जो राग हमसा ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसा ध्वनि सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of त्यागराज स्वामी in the राग आनंद भैरवी set to आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिंहेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिंहेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was the तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जय भास्कर and on घटम by श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन concludes her vocal recital with a composition of Sri Kanakadasa in the Rag Sindhu Bhairavi set to Kanda Chaputal.

इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वन्यांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।

0: दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

0: काल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the fourth spot on the medal table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. Har